0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: कल चौदहवीं की रात थी, सब भर रहा चर्चा तेरा। कुछ ने कहा कि चांद है, कुछ ने कहा चेहरा तेरा। इब्ने इंशा की कलम और जगजीत जी की आवाज में हमने सुनी ये खूबसूरत गजल। और नए साल के इस नए से मिर्ची महफिल में आपका इस्तकबाल करता है आपका ताशी। हाँ जी, और चांद का इस्तेमाल तो आपने कई बार सुना होगा शायरी और कविताओं में, लेकिन आज आपको बताऊं चांद का एक पर्यायवाची, बोले तो सिनोनिम, जिसका इस्तेमाल करके भी कई सारे शेर हुए हैं, और वो लफ्ज है मेहताब। अब इसका इस्तेमाल आप देखें दो शेरों से। पहला अजहर इनायती साहब की कलम से, लिखते हैं कि हर एक रात को महताब देखने के लिए मैं जागता हूँ तेरा ख्वाब देखने के लिए। वाह जी वाह, हबीब जालिब के यहाँ भी बड़ी खूबसूरती से इस्तेमाल हुआ है चांद के सिनोनिम महताब का। गजल के दो शेर मुलायजा फरमाएं कि हमारी भी संभल जाएगी हालत, वो पहले अपनी जुल्फे तो संभालें, निकलने को है वो महताब घर से, सितारों से कहो नजरें झुका लें। आए हाय, अब चांद से डिराइव्ड एक और लफ्ज है चांदी, जिसके बड़े खूबसूरत इस्तेमाल के साथ आप सुने जफर गोरख पुरी साहब का लिखा अगला आइकॉनिक नगमा, चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल। पंकज उदास साहब की आवाज में सिर्फ मिर्ची महफिल पर आपका ताशी है आपके साथ। इट्स हॉट।

0: बाकी सब गंगा।
1: सुनिए मिर्ची महफिल का फुल एपिसोड गाना म्यूजिक ऐप पर, डाउनलोड नाउ।
2: हेलो,
3: हाय, ये से आपके फोन पे फ्री कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि अभी के अभी आपका बिल आधा हो जाए तो कृपया दो दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल घर पे आए तो एक दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपके बिल में कोई भी गलती ना हो तो कृपया नौ दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपको बिल की पूरी पुष्टि चाहिए, समरी चाहिए, तो कृपया नौ नौ दबाइए। अगर आप चाहते हैं कि जो आपने कॉल करी है सिर्फ उसी का बिल आए तो दबाइए तीन तीन। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि दूसरा पड़ोसी कोई कॉल कर रहा है और उसकी कॉल आपके बिल में ना आए तो दबाइए छः छः। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल आपके ही नंबर का आना चाहिए, किसी दूसरे का नहीं आए, तो दबाइए पाँच पाँच। धन्यवाद। अगर आपको बिल पेपर पे चाहिए, पेपर बिल चाहिए, तो दबाइए सात सात। धन्यवाद। अगर आप स्कीम लेना चाहते हैं और अडॉप्ट करना चाहते हैं इस स्कीम को अगले महीने से, तो दबाइए 3,07,739।
2: हेलो,
3: हाय, ये से फिर से आपके फोन पे कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपकी इस तरह की कॉल ना आए तो दबाइए 4198393।
4: मैं रेडियो मिर्ची से सर नवेद बोल रहा हूँ। आप क्या खेल खेले जा रहे हैं यार? अपने मोबाइल से कभी ये दबा रहे हैं, कभी वो दबा रहे हैं, आप थके नहीं हैं? आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा।
2: तो वही मैं सोच रहा था, मतलब
3: अगर आपको इस सबसे मजा आया हो तो कृपया दबाए 5,07,339। हो गया।
2: हाँ जी,
3: कुकड़ों को,
2: कुकड़ों को, कुकड़ों को।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
6: इट्स हॉट।

0: एनर्जी इट्स हॉट।
1: हाय ये दिल, ये पागल दिल मेरा, मोहसिन अली नकवी साहब की कलम और गुलाम अली साहब की आवाज में सुनी हमने ये खूबसूरत गजल सिर्फ मिर्ची महफिल पर। और अब वक्त है
2: मिर्ची महफिल पे रूबरू
1: कि आपका ताशी आपको रूबरू करवाए उर्दू के पहले सबसे बड़े शायर जिन्हें खुदाए सुखन मतलब शायरी का खुदा कहा जाता है। मैं बात कर रहा हूं नन अदर देन मीर तकी मीर साहब की। 1810 के लखनऊ में इनका जन्म हुआ और लफ्जो मानी के जादूगर बेमिसाल शायर मीर तकी मीर उर्दू गजल का वो प्रेत हैं कि जो उसकी जकड़ में आ जाता है जिंदगी भर वो उसके अधीन ही रहता है। बड़े आइकॉनिक शेर रहे हैं उनके जिनमें से कुछ आपके नजर कर रहा हूं। लिखते हैं कि उल्टी हो गई सब तदबीरें कुछ न दवा ने काम किया। तदबीरें मतलब टैक्टिक्स। उल्टी हो गई सब तदबीरें कुछ न दवा ने काम किया। देखा इस बीमारी ये दिल ने आखिर काम तमाम किया। एक और मेरा बड़ा पसंदीदा शेर है उनका कि होगा किसी दीवार के साये में पड़ा मीर। होगा किसी दीवार के साये में पड़ा मीर क्या रब्त मोहब्बत से उस आराम तलब को। वाह जी वाह, उनकी शायराना काबिलियत का इससे बढ़कर क्या सबूत हो सकता है कि जमाने के मिजाजों में बदलाव के बावजूद उनकी शायरी की महानता का सिक्का हर दौर में चलता रहा। खैर बहुत हुई बातचीत, ज्यादा वक्त जाया करे बगैर राजेश रेड्डी साहब की कलम और हरिहरन जी की आवाज में सुनते हैं अगली गजल हल्का सा एक नशा सा सिर्फ मिर्ची महफिल पर। आपका ताशी है आपके साथ इट्स हॉट।

0: सुनिए मिर्ची महफिल का फुल एपिसोड गाना म्यूजिक ऐप पर डाउनलोड नाउ।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

है गुलजार की वो गजल याद आती है मुझे कि दर्द हल्का है, सांस भारी है, जिए जाने की रस्म जारी है, आपके बाद हर घड़ी हमने आपके साथ ही गुजारी है। दर्द हल्का है, सांस भारी है, जिए जाने की रस्म जारी है। वाह जी वाह। और ये जो हल्का सा दर्द है ना, कुछ तो रिलेशन है इसका और रात का। जैसे जैसे रात और काली होती जाती है, ये दर्द और बढ़ता जाता है। अगला नगमा सुने मखदूम मोहिउद्दीन साहब की कलम, लता जी और तलत अजीज की आवाज में, फिर छिड़ी रात बात फूलों की। सिर्फ मिर्ची महफिल पर, आपका ताशी है आपके साथ। इट्स हॉट।

0: ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: नुसरत साहब की आइकॉनिक आवाज में हमने सुना ये जो हल्का हल्का सुरूर है, सिर्फ मिर्ची महफिल पर। और आपका ताशी है आपके साथ। और दर्द हल्का हल्का हो या सुरूर, दोनों ही हालतों में दर्दीले लोगों को बड़ा मजा आता।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: मिर्ची पाउस को साथ जीतू राज, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: हाय, माय नेम इज पीटर पार्कर।
3: ओके देन, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे आ गई है एंड फॉर गॉड्स सेक प्लीज थिएटर में जाकर ही देखो, इज व्हाट जीतू राज विल टेल यू, क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं, स्पेशली जब कैरेक्टर्स आपस में बात करते हैं तो उनकी विस्पर्स, उनका प्यार, उनका गुस्सा, वो थिएटर में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा। एंड फॉर गॉड्स सेक किसी से भी स्टोरी मत सुनो, डोंट टेक एनी स्पॉयलर्स। फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना सरप्राइज कर जाएंगी।
4: स्पाइडर्स हैव फ्री लाइफ साइकिल।
3: I just can't begin to tell you. I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में villain कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में एक पूरा का पूरा शहर suffocate होने लगता है? क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है? ये reason उस villain पर जाकर रुकता है। I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये expect करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batrano, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film, it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है। क्यों, क्या, कैसे, वो जाकर देखो। Also, there's a particular scene between John Bernthal, अर्थात Frank Castle, A.K.A. Punisher, and Tom Holland, अर्थात Peter Parker, जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा। Also, if you have kids around you, enjoy it fully, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं, तालियां बजाते हैं, and it's all required in Spider-Man Brand New Day. But I must give you a disclaimer. अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म, तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा। फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतू राज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है। ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माय रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतू राज, जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतू राज ने। वो क्या है? ओके, आई टोल्ड यू, इंस्टाग्राम मिर्ची जीतू राज। फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। बाय द वे, कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या Zendaya एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है। फॉर गॉड्स सेक ब्रो, अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो। दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, रेकमेंडेड बाय जीतू राज विद फोर मिर्चीज।
1: साथ जीतू राज, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए, हुजूर इस कदर भी ना इतरा के चलिए, खुले आम आंचल न लहरा के चलिए। बड़ी प्यारी सी रिक्वेस्ट और उससे भी उम्दा गजल हमने सुनी भूपिंदर और सुरेश वाडकर जी की आवाज में। और अब वक्त आ गया है
2: मिर्ची महफिल पे ताशी अनप्लग्ड
1: की। मिर्ची महफिल में आपका ताशी आपको सुनाए एक गजल जो उसके जहन में अटकी पड़ी है। बिल्कुल। और ये जो गजल है ये बहादुर शाह जफर साहब ने लिखी थी और इसको गाया है मेहंदी हसन साहब ने। एक छोटी सी कोशिश मेरी तरफ से, मेरी बड़ी पसंदीदा है, तो अगर कुछ भूल चूक हो माफ करिएगा। पेश खिदमत है सिर्फ आपके लिए।

इस कारवां को आगे बढ़ाते हुए अगला नगमा पेश है आपके लिए शफकत अमानत अली की आवाज में, फिर ले आया दिल। मिर्ची महफिल सुन रहे हैं आप, इट्स हॉट।

0: ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: फैयाज हाशमी साहब की कलम और फरीदा खानम जी की एवरग्रीन आवाज में सुनी हमने हम सब की पसंदीदा गजल आज जाने की जिद ना करो। मिर्ची महफिल पर आपका ताशी है आपके साथ और अभी तो इस सफर के दूसरे पड़ाव में ही है हम, अभी कहीं जाने का इरादा नहीं है मेरा। मुझे ना धीरे धीरे ये पता चला कि फेसबुक में वो इन रिलेशनशिप और सिंगल के ऑप्शन के साथ इट्स कॉम्प्लिकेटेड वाला ऑप्शन क्यों होता था। इंसान ऐसा जानवर है ना जो इतनी रेंज ऑफ इमोशंस को महसूस कर सकता है कि खुद उसे ना समझ आए वो क्या कर रहा है। दो शेर देखें जिनमें इश्क का कॉम्प्लिकेटेड नेचर साफ दिखाई देता है। आरजू लखनवी साहब लिखते हैं, दिल की जिद इसलिए रख ली थी कि आ जाए करार, कल ये कुछ और कहेगा मुझे मालूम ना था। ओए होए। और दूसरा मेरा बड़ा पसंदीदा शेर खुमार बाराबंकवी साहब की कलम से, ऐसा नहीं कि उनसे मोहब्बत नहीं रही, ऐसा नहीं कि उनसे मोहब्बत नहीं रही, जज्बात में वो पहली सी शिद्दत नहीं रही। उफ, इतना कॉम्प्लिकेटेड तो मैथ में डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं होता था। खैर अब खुमार साहब की बात छिड़ ही गई है तो उन्हीं की कलम से हरिहरन जी की आवाज में अगली गजल, वही फिर मुझे याद आने लगे हैं जिन्हें भूलने में जमाने लगे हैं। ओनली ऑन मिर्ची महफिल, आपका ताशी है आपके साथ, इट्स हॉट।

0: ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।
1: हिट हिट हिट हिट गाना,
0: हिट गाना, हिट गाना, हिट गाना।
2: Radio Mirchi, New York. It's hot.

0: एनर्जी इट्स हॉट।
1: मुजफ्फर वारसी की कलम और हरिहरन साहब की आवाज में हमने सुनी गजल, झूम ले हंस बोल ले प्यारी अगर है जिंदगी, सांस के बस एक झोंके का सफर है जिंदगी। और मिर्ची महफिल पर अब वक्त है
2: मिर्ची महफिल पे डायरी से
1: कि अपनी डायरी के कुछ सफ़े पलटूं और आपको सुनाऊं एक पुरानी याद। हमारी जो हिंदी टीचर थी ना, कविता मैम, वो बचपन में एक फ्रेज सिखाया करती थी कि जीवन क्षण भंगुर है, जिसका लिटरल ट्रांसलेशन हुआ लाइफ इज मोमेंट्री, ठीक है। और जिंदगी के सुख दुख, हंसी और आंसू, शोहरत और बदनामी, सब कुछ फेड हो जाएगा। ये बात कहीं ना कहीं जहन में घर कर गई और थोड़े बड़े हुए तो जफर इकबाल साहब को पढ़ा और उनका एक बड़ा ही बेहतरीन शेर मुझे याद आता है इसी बात पर। लिखते हैं कि शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस डाल पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। ओफो, मतलब इतना सटीक धारदार शेर लगता है ना मुझे ये। खैर, आए अगला नगमा सुनते हैं जावेद अख्तर साहब की कलम से, चित्रा और जगजीत जी की आवाज में, सिर्फ मिर्ची महफिल पर। आपका ताशी है आपके साथ, इट्स हॉट।

0: सुनिए मिर्ची महफिल का फुल एपिसोड गाना म्यूजिक ऐप पर डाउनलोड नाउ।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: जफर गोरखपुरी साहब की कलम और पंकज उदास जी की आवाज में हमने सुना नगमा, एक तरफ उसका घर एक तरफ मैं कदा, सिर्फ मिर्ची महफिल पर। और अब मौका है, दस्तूर है
2: मिर्ची महफिल पे किस्सा कॉर्नर। किस्सा कॉर्नर
1: कि आपका ताशी सुनाए आपको आज का किस्सा जो आ रहा है जिगर मुरादाबादी साहब की जानिब से। किस्से का नाम बंदों की खुशी। एक बार जिगर, शौकत थानवी और मजरूह सुल्तानपुरी दोपहर के वक्त कहीं काम के लिए बाहर निकले थे, तो इरादा किया गया कि नमाज अदा कर ली जाए। शौकत साहब एक काम के लिए चले गए, जिगर साहब मस्जिद के बजाय एक रेस्टोरेंट में जा घुसे। मजरूह ने कहा, जिगर साहब ये मस्जिद नहीं रेस्टोरेंट है। जिगर ने जवाब दिया, मुझे मालूम है, सोचा कि वक्त तंग है, अल्लाह को तो खुश कर नहीं सकता, उसके बंदों को ही खुश कर लूं, आइए। वाह जी वाह, काश हमारे दोस्तों में भी इतना सुहूर होता जिगर साहब जैसा कि बिना मांगे पार्टी दे देते, है कि नहीं। खैर मजाहिया बातों से आगे बढ़ते हैं लता जी की आवाज में रेंडर्ड एक खूबसूरत नगमे की ओर। ये दिल तुम बिन कहीं लगता नहीं, हम क्या करें, सिर्फ मिर्ची महफिल पर। आपका ताशी है आपके साथ, इट्स हॉट।

0: Radio Mitchy, New York. It's hot.
1: Mitchy Bioscope. Saad Jeetu Raj. Only on Mitchy. It's hot.
2: Hi. My name is Peter Parker.
3: Okay then, Spider-Man brand new day aa gayi hai. And for God's sake, please theater mein jaakar hi dekho is what Jeetu Raj will tell you. Kyunki is film mein kahi chhoti chhoti aisi cheeze hain. Especially jab characters aapas mein baat karte hain, to unki whispers, unka pyar, unka ghussa, wo theater mein jo maza deta hai, wo kahi bhi nahi dega. And for God's sake, kisi se bhi story mat suno. Don't take any spoilers. Film mein kahi aisi cheeze hain jo tere ko itna surprise kar jayengi.
4: Spiders have three life cycles.
3: I just can't begin to tell you. I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में villain कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में एक पूरा का पूरा शहर suffocate होने लगता है? क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है? ये reason उस villain पर जाकर रुकता है. I'm not going to tell you who it is. Also तेरे में से कई लोग ये expect करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batrano, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film it's a little different. In fact I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है. क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो. ऑल्सो देयर इज अ पर्टिकुलर सीन बिटवीन जॉन बर्नथॉल अर्थात फ्रैंक कैसल एके पनिशर एंड टॉम हॉलैंड अर्थात पीटर पार्कर, जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा. ऑल्सो इफ यू हैव किड्स अराउंड यू एंजॉय इट फुल्ली, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं, तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे. बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर, अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म, तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा. फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से Jeetu Raj टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है. ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माय रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची Jeetu Raj, जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं Jeetu Raj ने. वो क्या है? ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची Jeetu Raj. फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे. बाय द वे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या Zendaya एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है. फॉर गॉड्स सेक ब्रो, अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो. दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय Jeetu Raj विद फोर मिर्चीज.
1: साथ Jeetu Raj ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: वाह, अहमद फराज की कलम और मेहंदी हसन साहब की आवाज से सजी ये खूबसूरत गजल रंजिश ही सही हमने सुनी सिर्फ मिर्ची महफिल पर, और आपका ताशी है आपके साथ। और अब जब भी मैं ये गजल सुनता हूँ ना, मुझे लगता है लोग कितने अजीब होते हैं। रंजिश ही सही, दिल ही दुखाने के लिए आ फिर से मुझे छोड़ के जाने के लिए आ, मतलब दुख भी सहने को तैयार है। पीरजादा कासिम साहब की एक बड़ी रिलेटेबल गजल याद आती है मुझे, वो लिख गए कि गम से बहल रहे हैं आप बहुत अजीब हैं, दर्द में ढल रहे हैं आप बहुत अजीब हैं, अपने खिलाफ फैसला खुद ही लिखा है आपने, हाथ भी मल रहे हैं आप बहुत अजीब हैं। अरे यार, ये तो वही बात हो गई कि ब्लॉक करके फिर अनब्लॉक कर दिया। खैर जानी, ऐसे ही अजीब अगर आप भी हो ना, तो आइए साथ मिलकर सजाएं ये खूबसूरत महफिल सिर्फ मिर्ची पर अपने ताशी के साथ। इट्स हॉट।

0: एनर्जी इट्स हॉट।
1: ठुकराओ अब की प्यार करो, मैं नशे में हूँ। शाहिद कबीर साहब की कलम और जगजीत जी की आवाज से सजी ये उम्दा गजल हमने सुनी सिर्फ मिर्ची महफिल पर, और आपका ताशी है आपके साथ। और कोई जब किसी शख्स को छोड़ जाता है, हर इंसान अलग अलग अमाउंट ऑफ टाइम लेता है, अलग अलग वक्त लेता है उस सदमे से उबरने के लिए। लेकिन अगर एक बात मैंने पाई है वो ये है कि उबर सब जाते हैं। स्वप्निल तिवारी साहब का एक शेर जहन में आता है जो इस नए साल और बिछड़े यार दोनों मौजू पे फिट बैठता है। वो लिखते हैं कि और कम याद आओगी अगले बरस तुम, और कम याद आओगी अगले बरस तुम, अब के कम याद आई हो पिछले बरस से। वाह, मैं पता है लगभग भूल गया था इस शेर के बारे में, मगर उसकी याद आई तो साथ ही ये भी आ गया। खैर, राहत फतेह अली खान साहब की आवाज में ये अगला नगमा सुने आप। इट्स वेरी आइकॉनिक ऑब्वियसली। सानू एक पल चैन ना आवे, सिर्फ मिर्ची महफिल पर। आपका ताशी है आपके साथ। इट्स हॉट।

0: एनर्जी इट्स हॉट।
1: शहरयार की कलम और तलत साहब की आवाज में सुनी हमने खूबसूरत गजल जिंदगी जब भी तेरी बज्म में लाती है हमें, सिर्फ मिर्ची महफिल पर। और अब वक्त है
2: मिर्ची महफिल पे लव्स आजकल
1: कि आपको मुखातिब कराएं हमारे आज के लफ्ज से, रफ्ता, जिसका मानी होता है स्लोली या धीरे। अब तस्लीम फाजली साहब की लिखी और मेहदी हसन साहब की गाई मशहूर गजल का ही एग्जाम्पल ले लें। शेर है कि रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, मतलब धीरे धीरे वो मेरी हस्ती, मतलब बीइंग का सामान हो गए। रफ्ता रफ्ता वो मेरी हस्ती का सामा हो गए, पहले जा फिर जाने जा फिर जाने जाना हो गए। और अब एक और शेर देखें खुमार बाराबंकी साहब के जानिब से, लिखते हैं कि भूले हैं रफ्ता रफ्ता उन्हें मुद्दतों में हम, भूले हैं रफ्ता रफ्ता उन्हें मुद्दतों में हम, किस्तों में खुदकुशी का मजा हमसे पूछिए, आए हाय। तो ले जस्ट लाइक दैट आपके उर्दू लफ्जों के आर्सेनल में जुड़ गया है एक नया लफ्ज, रफ्ता, मानी स्लोली। ऐसे ही और लफ्जों को समझने जानने के लिए जुड़े रहें मिर्ची महफिल से। आपका ताशी है आपके साथ, इट्स हॉट।

0: सुनिए मिर्ची महफिल का फुल एपिसोड गाना म्यूजिक ऐप पर डाउनलोड नाउ।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: मिर्ची इट्स हॉट।
1: आनंद बख्शी जी की लिरिक्स और सुरेश वाडेकर साहब की आवाज में हमने सुना सनी मूवी से नगमा और क्या अहदे वफा होते हैं, और मिर्ची महफिल पर आपका ताशी है आपके साथ। और इश्क मेरे ख्याल से ना वो बीमारी है जिसमें शख्स जब पड़ता है तो उसका इलाज ढूंढने के बजाय और

अब तबीयत आप पर आई तो है। मुनव्वर राणा साहब के यहाँ भी इश्क को एक बीमारी की तरह ट्रीट किया गया है। वो लिखते हैं कि इश्क है तो इश्क का इजहार होना चाहिए, आपको चेहरे से भी बीमार होना चाहिए। उफ, अगली गजल में आप मुलाकात करेंगे एक बीमार से जो पूछ रहा है दूसरे से कि तुम भी बीमार हो कि नहीं। कैफी आजमी साहब की कलम और जगजीत जी की आवाज से सजी ये खूबसूरत गजल, झुकी झुकी सी नजर बेकरार है कि नहीं, दबा दबा सा सही दिल में प्यार है कि नहीं। सिर्फ मिर्ची महफिल पर आपका ताशी है आपके साथ।

0: साथ जीतू राज, only on Mirchi. It's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Okay then, Spider-Man brand new day आ गई है and for God's sake please theater में जाकर ही देखो is what जीतू राज will tell you क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं especially जब characters आपस में बात करते हैं तो उनकी whispers, उनका प्यार, उनका गुस्सा वो theater में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा and for God's sake किसी से भी story मत सुनो don't take any spoilers फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना surprise कर जाएंगी
3: spiders have three life cycles
2: I just can't begin to tell you I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में villain कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर suffocate होने लगता है? क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है? ये reason उस villain पर जाकर रुकता है. I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये expect करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batrano, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film, it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो ऑल्सो देयर इज अ पर्टिकुलर सीन बिटवीन जॉन बर्नथॉल अर्थात फ्रैंक कैसल एके पनिशर एंड टॉम हॉलैंड अर्थात पीटर पार्कर जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा ऑल्सो इफ यू हैव किड्स अराउंड यू एंजॉय इट फुल्ली क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतू राज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतू राज जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतू राज ने वो क्या है ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची जीतू राज फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बाय द वे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है फॉर गॉड सेक ब्रो अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतू राज विद फोर मिर्चीज
0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट

0: एनर्जी इट्स हॉट।
1: दिल जलाने की बात करते हो, आशियाने की बात करते हो। फरीदा खानम जी की आवाज में सुनी हमने ये खूबसूरत गजल। समय हो चला है मेरे जाने का, लेकिन ऑब्वियसली जाने से पहले
2: मिर्ची महफिल पे ताशी अनप्लग्ड।
1: मिर्ची महफिल पर आप हैं अपने ताशी के साथ, और ये मेरा ख्याल है कि सच्चाई सबसे ज्यादा उदास होती है। कुछ गजलें जो सबसे ज्यादा सच कह रही होती है ना, सबसे ज्यादा ट्रूथफुल साउंड करती हैं, वो ऐसे कचोट देती हैं अंदर से ना एकदम। ये गजल उनमें से एक है और न जाने क्यों मेरे जहन में अटकी हुई है। तो आज रात आपकी नजर है जगजीत सिंह जी की ये खूबसूरत गजल मिर्ची महफिल पर।

0: कोई जवाब है आपके पास?
1: मेरे पास तो नहीं है दोस्त, तो इसलिए मैं चुपचाप यहां से अपना सामान बटोर के चलने वाला हूँ। एक गजल के हवाले करके आपको छोड़ जाने वाला हूँ मैं। अगर आपको मुझसे कुछ बातचीत करनी हो तो आप आ सकते हैं मेरे इंस्टाग्राम मिर्ची ताशी MIRCHITASHI पर। स्टे ट्यून टू मिर्ची, मिर्ची महफिल सुन रहे थे आप। आपका ताशी था आपके साथ। इट्स हॉट।

0: मैं की करूं,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची बनाने वाला है हिट गाना।

0: देता है वो कहीं भी नहीं देगा। एंड फॉर गॉड से किसी से भी स्टोरी मत सुनो, डोंट टेक एनी स्पॉयलर्स। फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना सरप्राइज कर जाएंगी।
1: स्पाइडर्स हैव फ्री लाइफ साइकिल।
0: आई जस्ट कांट बिगिन टू टेल यू, आई टेल यू द बिगेस्ट थिंग। स्पाइडरमैन में विलन कौन है, यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है, क्यों स्पाइडरमैन अपने आप में घुटने लगता है, ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है। आई एम नॉट गोइंग टू टेल यू हु इट इज। ऑल्सो तेरे में से कई लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि बिकॉज इट्स स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे and Spider-Man rests on the shoulders of Ned arthat Jacob Batalon, also MJ arthat Zendaya and Peter Parker yani Tom Holland. In this film it's a little different. In fact I can go ahead and tell you ki ye film puri tarah se Tom Holland ke shoulders par rest karti hai. Kyun, kya, kaise, wo ja kar dekho. Also there's a particular scene between John Bernthal arthat Frank Castle aka Punisher and Tom Holland arthat Peter Parker jo theater se aane ke baad bahut der tak tere ko yaad rahega. Also if you have kids around you, enjoy it fully, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं, तालियां बजाते हैं, and it's all required in Spider-Man Brand New Day. But I must give you a disclaimer. अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म, तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा। फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतूराज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है। ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज, जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतूराज ने, वो क्या है। ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची जीतूराज। फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। बाय द वे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है। फॉर गॉड्स सेक ब्रो, अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो। दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतूराज विद फोर मिर्चीज।
2: जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: साथ जीतू राज, only on Mirchi. It's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Spider-Man brand new day आ गई है and for God's sake please theater में जाकर ही देखो is what Jeetu Raj will tell you क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं especially जब characters आपस में बात करते हैं तो उनकी whispers उनका प्यार उनका

Radio Mitchie, New York. It's hot.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियास नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन।

0: Purani Jeans Mumtaz Special with Chari only on Mirchi.
1: Purane zamane ki one of the most beautiful and most talented actress Mumtaz. मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। और सुनिए एक पॉडकास्ट में उन्होंने अपनी फैमिली के बारे में क्या शेयर किया था।
2: वेरी ऑर्थोडॉक्स फैमिली, दैट इज वन ऑफ द रीजन माय पेरेंट्स सेपरेटेड, बिकॉज व्हेन माय फादर केम फ्रॉम ईरान, माय मदर केम, माय मदर बिकेम ट्रू मॉडर्न एंड माय फादर वाज वेरी सिंपल पर्सन, ही हैड मनी, वो हिस्टोरिया होटल उनकी थी और ड्राई फ्रूट की बिजनेस थी उनकी। So he was well off, but he was very orthodox. Unko nahi pasand tha ki unki biwi modern ho. Wo na ittefaqi ho gaye. They were not getting on. And my mother was enjoying to drive car and jeans pehne lage. Wo to get on nahi hua. So my father said, no, I can't take this. Let's have a divorce. To divorce mein, to my mother said ki nahi, money nahi chahiye. Uske avaz mein mujhe meri betiyan de di. तो वैसे भी मेरे फादर को लड़के चाहिए थे, वो समझते थे लड़के होंगे तो अच्छा है, लड़कियां शादी करके चली जाए, ऑर्थोडॉक्स। तो मेरी मम्मी ने कहा कि दो लड़कियां हैं, आप दूसरी शादी करेंगे तो शायद आपको लड़का हो जाएगा, तो लड़के मैं ले लेती हूँ। तो माय फादर सेड ओके। तो माय मदर ब्रॉट मी अप, माय ग्रैंडमदर ब्रॉट मी अप, माय आंट ब्रॉट मी अप,
1: और इसीलिए मुमताज शायद बन गई एकदम बेबाक और बिंदास। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं

पुरानी जीन्स चारों के साथ, सिर्फ मिर्ची पर। पुरानी जीन्स विद चारों, ओनली ऑन

0: पुरानी जींस मुमताज स्पेशल विद चारू ओनली ऑन मिर्ची।
1: मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ, फिरोज खान एंड मुमताज जी। एक टाइम पे जब ये साथ में काम किया करते थे, इनके अफेयर के रूमर्स भी उड़ा करते थे। इस बारे में सुनिए एक रीसेंट पॉडकास्ट में मुमताज जी ने क्या शेयर किया था।
2: देखिए, फिरोज खान को तो पूरी दुनिया की औरतें प्यार करती थी, बट वी वर अ वेरी वेरी गुड फ्रेंड। मैं तो उनको जेबीएस वाडिया के जमाने से जानती हूँ, जब उनके खुद की एक एंग्लो इंडियन गर्लफ्रेंड थी जो बहुत ही खूबसूरत थी। और फिरोज खान और शमी कपूर के अलावा मुझे आज तक फिल्म लाइन में कोई खूबसूरत हीरो लगा नहीं। इवन टुडे आई थिंक ये दो ही पर्सनालिटी थी जो बहुत हैंडसम थी हमारी फिल्म लाइन। काफी लोग थे जो बहुत ही अच्छे इंसान थे, लेकिन एक फिजिकल अट्रैक्शन जो होती है ना, मुझे इन दोनों से लगती थी व्हेन आई वाज वर्किंग। बट इसका मतलब ये नहीं है कि जो आदमी आपको अट्रैक्टिव लगे उसके साथ अफेयर हो। मेरा फिरोज के साथ अफेयर कभी भी नहीं था, ऐसा कुछ हुआ नहीं। बट आई वॉज वेरी वेरी फॉन्ड ऑफ हिम एंड आई वॉन्ट लाई फिजिकली अट्रैक्टेड टू हिम। अफेयर वफेयर कुछ नहीं हुआ मेरा उनके साथ।
1: चलो, क्लैरिटी मिल गई, अच्छी बात है। पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर, ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
1: पुरानी
0: जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

0: Purani Jeans Mumtaz Special with Charu on your Mirchi.
1: लोग ऐसा कहते थे कि राजेश खन्ना मुमताज जी के बीच में भी रिलेशनशिप था। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन ये कैसा रिलेशनशिप था, सुनिए पॉडकास्ट में मुमताज जी ने क्या शेयर किया था।
2: लोगों का क्या है, मैं आपसे एक बात बताऊं, जो भी हीरो हीरोइन की केमिस्ट्री होती है ना, जब वो 8-10 फिल्में एक साथ करते हैं, सो दे नो ईच अदर सो वेल, दे बिकम ऑटोमेटिकली वेरी क्लोज, वो एक शाइनेस निकल जाती है, देखने से ऐसा महसूस होता है कि इनका कुछ चक्कर है, तो वो इंसान क्लोज हो जाता है, वो केमिस्ट्री जो हो जाती है, जिसकी वजह से जब एक दूसरे से बात करते हैं, हाथ गले में डालते हैं, कमर में डालते हैं, जैसे धक्का मारना हो, तो वो डरते नहीं है एक दूसरे से, नो फॉर्मेलिटीज, सो दे बिकम लाइक अ फ्रेंड। तो वो था मेरा पार्टनर के साथ, मैंने कितनी 10-15 पिक्चर लिखी और एक भी फ्लॉप नहीं हुई, हमारे सितारे मिलते होंगे शायद, अदरवाइज ऐसे कुछ नहीं है, अफेयर नहीं था मेरा। एंड वी वर नेबर्स, मेरा घर और उनका घर आजू बाजू में ही था, और अंजू तो पहले से उनके साथ थी। नो ही वॉज नेवर इन लव विद मी, ही वॉज विद अंजू व्हेन आई वाज वर्किंग।
1: सही बात है भाई, केमिस्ट्री सिर्फ रिलेशनशिप से थोड़ी ना होती है, अच्छी गहरी सच्ची दोस्ती से भी तो होती है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर। मिर्ची पर उसको साथ जीतू राज। Only on Mirchi. It's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Okay then, Spider-Man brand new day aa gayi hai and for God's sake please theater mein ja kar hi dekho is what Jeetu Raj will tell you kyunki is film mein kai chhoti chhoti aisi cheeze hain especially jab characters aapas mein baat karte hain to unki whispers unka pyar unka gussa wo theater mein jo maza deta hai wo kahin bhi nahi dega and for God's sake kisi se bhi story mat suno don't take any spoilers film mein kai aisi cheeze hain jo tere ko itna surprise kar jayengi
3: spiders have free life cycle
2: I just can't begin to tell you I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में villain कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर suffocate होने लगता है? क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है? ये reason उस villain पर जाकर रुकता है। I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये expect करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batalon, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film, it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो ऑल्सो देयर इज अ पर्टिकुलर सीन बिटवीन जॉन बर्नथॉल अर्थात फ्रैंक कैसल एके पनिशर एंड टॉम हॉलैंड अर्थात पीटर पार्कर जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा ऑल्सो इफ यू हैव किड्स अराउंड यू एंजॉय इट फुल्ली क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतूराज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई है जीतूराज ने वो क्या है ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची जीतूराज फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बाय द वे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है फॉर गॉड्स सेक ब्रो अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतूराज विद फोर मिर्चीज
0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट पुरानी जींस विद चारू ओनली ऑन

0: पुरानी जींस मुमताज स्पेशल विद चारू उंगलियों मिर्ची।
1: क्या ये बात सच है?
2: मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ। ये बात कि शशि कपूर साहब ने एक बार मुमताज जी के साथ काम करने से मना कर दिया था, सुनिए एक पॉडकास्ट में मुमताज जी ने क्या शेयर किया था।
3: Everybody refused with me. Dara Singh ki heroine thi, ab to mujhe nahi kaam karna. That time he took 2 lakhs to give him for signing amount. His Shashi ji said no, change Mumtaz. He said sorry. He walked out. Why only Shashi Kapoor bichara? Whole industry refused.
2: To kya ye actors jinhone Mumtaz ji ke saath kaam karne se mana kiya, inhone kabhi aake unko aisa bola ki sorry ya us time aisa ho gaya tha?
3: Nahi, ego hota na, mard logon ka ego bahut hota na. They are never wrong. They are always right. And that doesn't really matter. As far as they worked with me, मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने काम तो किया। अब वो खोदते बैठो तो सुरंग का एंड ही नहीं होता, चलता है। Goes on and on in life.
2: क्या बात है? इस बात से तो यही समझ में आता है कि सोच भी बड़ी रखनी चाहिए और दिल भी बड़ा रखना चाहिए। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। आप सुन रहे हैं

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन. इट्स हॉट.
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
2: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली.

0: Purani Jeans Mumtaz Special with Charu only on Mirchi.
1: Late 60s ki one of the most talked about love stories, Shammi Kapoor ji and Mumtaz ji. Mirchi sun rahe hain aap, Purani Jeans par main hu Charu aapke saath. Aur suniye ek podcast mein Mumtaz ji ne kya share kiya tha. कि कब उन्होंने शम्मी कपूर जी को पहली बार देखा था।
2: जब मैं दिल देखे देखो की शूटिंग पे गई थी मेरी बहन के साथ शूटिंग देखने के लिए, जब मैं 10 स्कूल से छुट्टी 10 11 की होंगी, मेरी बहन खुद 13 14 की थी, बहुत छोटी थी, तो मैं जाके जब सेट पर बैठी तो मैंने उनका गाना चल रहा था तो मैंने देखा, तो मुझे बहुत अच्छे लगे शम्मी जी। तो मैंने कहा मलका मेरे को इससे शादी करना है। तो मेरी बहन बोली पागल, उसकी शादी हो चुकी है, उनकी वाइफ का नाम है गीता बाली। बोली हो गई शादी? मैंने हाँ हो गई, मगर मुझे इसी टाइप के आदमी से शादी करना है। बोली ठीक है इंशाल्लाह, अगर तेरे नसीब में होगा हो जाएगा। तो मैं 10 साल की उम्र से उनको पसंद की थी, ऐसा नहीं कि अभी की थी।
1: ये कहानी आगे कैसे बढ़ी, क्या हुआ, सुनते हैं थोड़ी देर के बाद। राइट हियर पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर। पुरानी जीन्स विद चारों, ओनली ऑन

0: Purani Jeans Mumtaz Special with Chari, only on Mirchi.
1: मुमताज जी ने शम्मी कपूर जी को पहली बार दिल देके देखो फिल्म के सेट्स पर देखा था और पहली नजर में प्यार हो गया था। मिर्ची सुन रहे हैं आप, पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ। लेकिन तब सिर्फ मुमताज को हुआ था, वो भी बचपन वाला प्यार, क्योंकि तब वो सिर्फ शायद 11 साल की थी और उस फिल्म के सेट्स पर आई थी क्योंकि मुमताज जी की जो बहन थी वो भी उस फिल्म में एक रोल कर रही थी। इसके 10 साल बाद मुमताज जी को मौका मिला शम्मी जी के साथ ब्रह्मचारी फिल्म में काम करने का। सुनिए एक पॉडकास्ट में मुमताज जी ने क्या शेयर किया था।
2: जब मैं बड़ी हुई फिर मुझे ये पिक्चर मिली, उस वक्त गीता जी गुजर गए थे, गीता बाली जी गुजर गए, तो he liked me, I liked him. We were there with each other for 2-3 years, I would say at least 3 years. 3 साल के बाद उन्होंने मुझे कहा कि I love you and I want to marry you. तो मैंने कहा okay, I'm ready to marry you. Then उन्होंने कहा कि काम तुम नहीं कर सकती, और मैं इतनी ambitious थी, और वो शमी जी 17 साल कुछ बड़े थे मुझसे, और मेरी मम्मी बोलती थी बहुत बड़ी एज है और बहुत लड़कियां इधर उधर पीछे हैं, तुझे खुश नहीं रखेंगे वो। तो मैं शमी जी को बोलती थी लीव हर, आई एम गोइंग टू मैरी यू, मगर काम करूंगी। तो शमी जी ने बोला काम नहीं कर सकती, बोले हमारे कपूर फैमिली के अंदर बहू नहीं करती है फिल्मों में, और उस जमाने में नहीं करती थी। तो उन्होंने कहा यू कांट, तो मैंने कहा देन शमी जी ओन वर्क, बिकॉज आई लव माई जॉब, आई लव माई वर्क एंड आई वॉन्ट टू बी समथिंग इन माई लाइफ।
1: वेल, फिल्म इंडस्ट्री की वन ऑफ द मोस्ट हार्ट ब्रेकिंग लव स्टोरीज में से एक है मुमताज जी और शमी जी की लव स्टोरी, और मोस्ट आइकॉनिक सॉन्ग्स में से एक है इन दोनों पे पिक्चराइज्ड ये गाना। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जीन्स चारों के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: पुरानी जीन्स विद चारू, ओनली ऑन

0: पुराने जींस मुमताज स्पेशल विद चाचा मिर्ची।
1: मुमताज जी और शम्मी कपूर जी कुछ 3 साल तक एक रिलेशनशिप में थे। उसके बाद शम्मी जी ने मुमताज जी को प्रपोज भी किया, मुमताज जी ने हाँ भी की, लेकिन जब ये कंडीशन आई कपूर खानदान की तरफ से कि शादी के बाद वो काम नहीं कर सकती, तब मुमताज जी ने मना कर दिया, क्योंकि तब उनके करियर की शुरुआत ही हुई थी और वो काफी कुछ अचीव करना चाहती थी। लेकिन जो भी वजह रही हो, रिश्ता टूटता

0: died very young when I was doing Shivi Shantaram's picture. She died then, delivering one of my brothers. I was brought up by my aunt. My real mother was my aunt. So, auntie मुझे बहुत प्यार करते थे, माँ से ज्यादा प्यार करते थे और वो हमेशा मुझे देखते ही बोलते थे, क्या हुआ, तो खुश है ना? मैं यहाँ ना खुश हूँ, तू लग रही नहीं है. And मेरी sister थी, मेरी बहन was always like a rock, my aunt was like a rock. And then I had no time to think about one thing, I was so busy. 7 to 2, 2 to 10, 7 to 2, 2 to 10, till I got married. तो अभी बैठ के किसे गाने याद करूं, डायलॉग याद करूं कि क्या अभी क्या करूं? So I was okay. कितना भी इंसान प्यार करे, वो जख्म भर तो जाते ही है ना.
1: वो एक शेर था कि वक्त हर जख्म को भर देता है, कुछ भी कीजिए, याद रह जाती है हल्की सी चुभन की हद तक. पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू, आपके साथ. आप सुन रहे हैं मिर्ची.

0: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन मिर्ची ओनली ऑन मिर्ची।
1: अच्छा ये बात है तो तुम भी सुन लो, तैयार हो जाओ। जो जो सवाल मैं तुमसे करूंगा उसका जवाब सच-सच देना। डन
2: डन
1: डन। अच्छा तो ये बताओ बागों में बाहर है? मैंने पूछा बागों में बाहर है? गर्मियों की निहार है? तो तुमको मुझसे प्यार है?

0: है, आज सोमवार है।
1: साथ जीतू राज, only on Mirchi. It's hot.
2: Hi, my name is Peter Parker.
3: Okay then, Spider-Man brand new day aa gayi hai and for God's sake please theater mein jaakar hi dekho is what Jeetu Raj will tell you kyunki is film mein kahi chhoti chhoti aisi cheeze hain especially jab characters aapas mein baat karte hain to unki whispers unka pyar unka gussa wo theater mein jo maza deta hai wo kahi bhi nahi dega and for God's sake kisi se bhi story mat suno don't take any spoilers film mein kahi aisi cheeze hain jo tere ko itna surprise kar jayengi
4: spiders have free life cycle
3: I just can't begin to tell you I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में विलन कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है? क्यों स्पाइडरमैन अपने आप में घुटने लगता है? ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है। I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात जेकब बैटनो, also MJ अर्थात ज़ेंडाया and Peter Parker यानी टॉम हॉलैंड. In this film, it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो ऑल्सो देयर इज अ पर्टिकुलर सीन बिटवीन जॉन बर्नथॉल अर्थात फ्रैंक कैसल एके पनिशर एंड टॉम हॉलैंड अर्थात पीटर पार्कर जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा ऑल्सो इफ यू हैव किड्स अराउंड यू एंजॉय इट फुल्ली क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्म में नहीं देखी है तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतूराज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई है जीतूराज ने वो क्या है ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची जीतूराज फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बाय द वे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या ज़ेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है फॉर गॉड्स सेक ब्रो अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतूराज विद फोर मिर्चीज
1: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन

0: पुराने जींस मुमताज स्पेशल विद चारू ऑन योर मिर्ची।
1: मुमताज जी ने अपने करियर में दो बहुत बड़ी फिल्में रिजेक्ट की थी। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। वेल, एक रिजेक्ट की थी पैसे की वजह से और दूसरी रिजेक्ट की थी प्यार की वजह से, एक्चुअली जो प्यार पूरा ना हो पाया उसकी वजह से। ये फिल्में थी सीता और गीता और अंदाज। सुनिए पॉडकास्ट में उन्होंने इसके बारे में क्या कहा था।
2: देखिए, अभी 6.5 लाख में लेती थी उस जमाने में, अब 2 लाख में मैं कैसे करूँ। रमेश जी ने मुझे बोला 2 लाख, 1 लाख गीता का, 1 लाख सीता का। तो मैंने कहा नहीं, आई डोंट थिंक आई विल वर्क इन 2 लाख। गीता और सीता तो मैंने प्राइस के लिए रिफ्यूज की थी, और वो दूसरी पिक्चर जिसमें हेमा जी थी, वो गाना है ना दिल जिसे दो, अंदाज, बिकॉज शमी कपूर वाज द हीरो।
3: तो दैट इज द रीजन आई डिडंट वर्क, अदरवाइज इट वाज ब्यूटीफुल सब्जेक्ट, वेरी वेल रिटन, बट दैट इज द ओनली रीजन, देयर वाज नो अदर रीजन।
2: मुझे ये दो पिक्चर के बाद में लोगों को पता चल गया फिल्म इंडस्ट्री, क्योंकि मुमताज और शमी जी, मैं शमी जी तो बेचारे कभी मना नहीं किए, जो क्यों बोलो, मुमताज शमी जी के साथ काम नहीं करती, इसलिए मुझे ऑफर आए ही नहीं।
1: वेल, इन केस यू डोंट नो, तो मुमताज जी और शमी जी 3 साल तक एक रिलेशनशिप में थे। शमी जी ने शादी के लिए प्रपोज भी किया, लेकिन उनकी एक कंडीशन थी कि शादी के बाद वो काम नहीं कर सकती। ये शर्त मुमताज जी को मंजूर नहीं थी, तो उन्होंने मना कर दिया, और इसीलिए उनका रिलेशनशिप थोड़ा सा बिटर नोट पे एंड हुआ था। खैर, पुरानी जींस पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियास नंबर वन रेडियो स्टेशन. इट्स हॉट.
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.
2: पुरानी जीन्स विद चारू ओनली ऑन

0: पुरानी जींस मुमताज स्पेशल विद चारू ओनली ऑन मिर्ची।
1: बोल्ड बेबाक बिंदास मुमताज जी, मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जींस पर। मैं हूँ चारू आपके साथ। मुमताज जी पुराने जमाने की वन ऑफ दोज एक्ट्रेसेस थी जिन्होंने बिकिनी पहनने की बोल्डनेस दिखाई थी फिरोज खान की फिल्म अपराध में। पर क्या उसके बाद बाकी के और फिल्म मेकर्स प्रोड्यूसर्स ने उनको ऐसे इंसिस्ट नहीं किया कि उनकी फिल्म में भी वो बिकिनी पहने? सुनिए एक पॉडकास्ट में इसके बारे में उन्होंने क्या शेयर किया था।
2: मुझे वो प्रॉब्लम इसलिए नहीं आई क्योंकि दैट टाइम आई वाज वन ऑफ द टॉप मोस्ट एक्ट्रेस, सो आई कुड अफोर्ड टू से नो, मुझे नहीं पहनना। और मैंने फिरोज को प्रॉमिस भी किया था कि फिरोज मैं ये आपके लिए कर रही हूँ, इसके बाद मैं कभी बिकिनी नहीं पहनूंगी। फिरोज खान वाज अ ब्रिलियंट डायरेक्टर, व्हाट अ लेंस की आईज थी वो इंसान की। उन्होंने मुझे बोला कि मैं तुझे पेश करूंगा, अगर तुझे अच्छा नहीं लगेगा तो मैं काट दूंगा। मैंने बोला प्रॉमिस, ही सेड प्रॉमिस। मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था अपने फिगर में बिकॉज आई ऑलवेज हैड अ हैवी ईरानियन थाइस, सो आई हैड कॉम्प्लेक्स कि मैं मोटी लगूंगी बिकिनी में। तो उन्होंने मुझे रैशेज दिखाया, मैंने बोला नहीं फिरोज, आई एम हैप्पी, यू कैन कीप इट। तो दैट वाज द फर्स्ट एंड लास्ट, आई नेवर वोर बिकिनी। आए थे प्रोड्यूसर, आई सेड नो।
1: भाई बिकिनी पहनकर उस टाइम पे मुमताज जी ने शायद एक बहुत बोल्ड स्टेटमेंट दिया हो, लेकिन सच ये है कि ट्रेडिशनल कपड़ों में, साड़ी में भी वो उतनी हॉट, एक्चुअली उससे ज्यादा हॉट और ब्यूटीफुल लगती थी। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: पुरानी जींस मुमताज स्पेशल विद चारू उंगलियों मिर्ची।
1: पुरानी हिंदी फिल्मों में वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक फैशन स्टेटमेंट कौन सी ड्रेस ने बनाई थी? मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। भाई ऐसे तो देखिए बहुत सारी ड्रेसेस हैं, लेकिन वन ऑफ द फाइनेस्ट की हम बात करें तो वो है ब्रह्मचारी फिल्म में आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे गाने में जो मुमताज जी ने साड़ी पहनी थी ऑरेंज कलर की, और एक्चुअली जिस तरह से पहनी थी उसकी बात ही कुछ और है। वेल कॉस्ट्यूम डिजाइनर थी भानु अथैया, और एक पॉडकास्ट में सुनिए मुमताज जी ने इसके बारे में क्या कहा था।
2: आई थिंक लियो लोग का शेर जो है उनके ऑरेंज ही होते हैं फेवरेट, तो मेरा भी फेवरेट था, लेकिन भानु अथैया डिड हार्ड वर्क, शी इन्वेंटेड समथिंग वेरी डिफरेंट जो आज भी लोग कोशिश करते हैं कि पहने वैसे, तो सहरा उनको जाता है, मेरा तो सिर्फ कलर था, बट शी वाज द वन हु वर्क्ड हार्ड।
1: अच्छा एक और चीज जिसके लिए मुमताज जी जानी जाती हैं वो उनकी डांसिंग, तो क्या उनको ऐसे लिबर्टी मिलती थी कि वो इम्प्रोवाइज कर सकें, अपने स्टेप्स डाल पाएं?
2: हमारे जमाने में हमको वो सब मिलता भी नहीं था, इधर सीखो इधर करो, सीखो इधर करो, बिकॉज आई वाज सो बिजी। जो भी मास्टर ने सिखाया वो कर लिया हमने, बस जहाँ कैमरा रखते थे डायरेक्टर साहब के देखे कि यहाँ पर वी हैव टू डू दिस, सीख लेते थे और कर देते थे, दैट्स इट। हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं था, वी आर वेरी ओबीडियंट, करना पड़ता था हर चीज, कोशिश यही रहती थी कि जो भी करो अच्छा करो।
1: अच्छा उसे अच्छा नहीं उसे कमाल कहते हैं। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: Purani Jeans Mumtaz Special with Charu only on Mirchi.
1: आजकल तो जब फिल्मों की शूटिंग होती है तो स्टार्स बहुत कंफर्टेबल होते हैं। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। उनके मेकअप मैन, उनके हेयर ड्रेसर, उनके पर्सनल ट्रेनर सब उनके साथ रहता है। वैनिटी वैन में अच्छा खासा घर बसा हुआ होता है। लेकिन एक पॉडकास्ट में सुनिए मुमताज जी ने क्या शेयर किया था कि पहले के टाइम में जब ये फैसिलिटीज नहीं होती थी तब इनडोर और खास करके आउटडोर शूटिंग वगैरह में कैसे सब मैनेज होता था।
2: वैनिटीज नहीं थी लेकिन हमारा मेकअप मेरा परमानेंट था, हेयर ड्रेसर मेरी परमानेंट थी, गाड़ी मेरे पास अल्लाह के फजल से थी। दे यूज्ड टू कम इन द मॉर्निंग, दे मेक मी रेडी इन माय बंगलो एंड आई यूज्ड टू गो फॉर शूटिंग। हाँ, इतनी कंफर्ट नहीं थी। अगर आपको बाथरूम जाना हो जंगल में तो लड़कियों को ले जाना पड़ता है कि पर्दा करो तो मैं जाऊँ। कैसे जाएंगे, जय शिवी शंकर का देखिए ना, कहाँ जाऊँ मैं बाथरूम। बट देन आई टोल्ड माई ड्राइवर यू कम एंड देन माई हेयर ड्रेसर केम एंड वन ग्रुप डांसर। साड़ी लेके जाके दूर जाओ जाके फिर एक वो पकड़ रहे, वो पकड़ रहे अमंग द गर्ल्स। सो ऑल द थ्री गर्ल्स आई यूज्ड टू डू पीपी, देन आई यूज्ड टू से यू वांट टू गो, अरे यस यू वांट टू गो। फिर बाद में कौन उतना चल के आएगा। हमारा हाल था, अभी तो लोग बहुत कंफर्टेबल है। वेरी लकी आई वुड से टू हैव वैनिटी। हमारे यहाँ तो गर्मी में मरो, एयर कंडीशन कहाँ से मिलेगा तुमको आउटडोर में।
1: सही बात है। इसी बात पे जय जय शिव शंकर गाना सुन लेते हैं। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

0: I just can't begin to tell you. I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में villain कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में एक पूरा का पूरा शहर suffocate होने लगता है? क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है? ये reason उस villain पर जाकर रुकता है. I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये expect करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batalon, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film, it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है. क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो. Also, there's a particular scene between John Bernthal, अर्थात Frank Castle, A.K.A. Punisher, and Tom Holland, अर्थात Peter Parker, जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा. Also, if you have kids around you, enjoy it fully, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं, तालियां बजाते हैं, and it's all required in Spider-Man Brand New Day. But I must give you a disclaimer. अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म. तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा. फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतूराज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है. ओह आल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माय रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज, जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतूराज ने. वो क्या है? ओके, आई टोल्ड यू, इंस्टाग्राम मिर्ची जीतूराज. फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे. बाय द वे, कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है. फॉर गॉड्स सेक ब्रो, अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो. दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतूराज विद फोर मिर्चीज.
1: साथ जीतूराज, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.
2: हर दूसरा गाना सुपर हिट,
1: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Purani Jeans Mumtaz Special with Charu. Only on Mirchi.
1: भाई मुमताज जी ने अपने करियर की शुरुआत एज अ चाइल्ड एक्टर की। मिर्ची सुन रहे हैं आप पुरानी जीन्स पर, मैं हूँ चारू आपके साथ। फिर एज अ टीनेजर भी उन्होंने छोटे मोटे रोल्स किए, फिर एक्स्ट्रा कैरेक्टर रोल, साइड हीरोइंस, इस तरह के रोल भी किए। उसके बाद बहुत सारी एक्शन या स्टंट फिल्में जो बनती थी उनमें काम किया था, जिन्हें तब बी ग्रेड फिल्में कहा जाता था। और इसीलिए ए ग्रेड फिल्मों के बहुत सारे एक्टर्स उनके साथ काम करने से मना कर देते थे। सुनिए इस बारे में एक पॉडकास्ट में उन्होंने क्या शेयर किया था।
2: बिगिनिंग में तो मैं कुछ थी ही नहीं, मुझे सारे हीरोज ने रिफ्यूज किया था कि हम मुमताज के साथ काम नहीं कर सकते, ये फैंटेसी पिक्चर की हीरोइन है, हमारे स्टैंडर्ड की नहीं है, तो हम काम नहीं करेंगे, सिवाय एक दारा सिंह के, सब ने रिफ्यूज किया। उसके बाद में जब राजेश खन्ना ने मेरे साथ काम किया बंधन में, उसके बाद में तो मैं कोई हीरो छोड़ी ही नहीं, मैं सबके साथ काम किया।
1: और इसीलिए जब मुमताज जी की फिल्म में कोई नया एक्टर होता था तो वो कभी मना नहीं करती थी।
2: जब अमित जी इतने बड़े हीरो नहीं थे तो रलन जी ने कहा, मुमताज तुम इनके साथ काम करोगी? मैं बोली जरूर करूंगी, क्योंकि मुझे मालूम है जब मुझे काम चाहिए था और जब मुझे लोग रिफ्यूज करते थे मुझे कितनी तकलीफ होती थी। तो मैं बोली ऑफ कोर्स, ही इज हैंडसम लुकिंग मैन एंड ऑल दैट। तो मैंने अमिताभ सर के साथ बंदे हाथ भी की, मैंने कभी किसी हीरो के साथ काम करने के लिए रिफ्यूज नहीं किया। मैंने कितने नए नए के साथ भी की हूँ, आप देख लीजिए।
1: बहुत ही ऑसम इंस्पायरिंग टाइप की जर्नी रही है इनकी। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ चारू आपके साथ, आप सुन रहे हैं मिर्ची।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

चल चल चल चल चल चल तुझे बठाट दिखाए और बाट दिखाए ओए बंटे। पल पल पल पल पलट पलट जब कमर घुमाए और

रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।

0: Chiturach, only on Mirchi. It's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Oh, okay then, Spider-Man brand new day aa gayi hai. And for God's sake, please, theater mein jaakar hi dekho, is what Jituraj will tell you. Kyunki is film mein kahin chhoti-chhoti aisi cheeze hain, especially jab characters aapas mein baat karte hain, to unki whispers, unka pyaar, unka ghussa, wo theater mein jo maza deta hai, wo kahin bhi nahi dega. And for God's sake, kisi se bhi story mat suno, don't take any spoilers. Film mein kahin aisi cheeze hain jo tere ko itna surprise kar jayengi.
3: Spiders have three life cycles.
2: I just can't begin to tell you. I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में villain कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर suffocate होने लगता है? क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है? ये reason उस villain पर जाकर रुकता है. I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये expect करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batno, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film, it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है. क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो. Also, there's a particular scene between John Bernthal, अर्थात Frank Castle, A.K.A. Punisher, and Tom Holland, अर्थात Peter Parker, जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा. Also, if you have kids around you, enjoy it fully, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड के फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं, तालियां बजाते हैं, and it's all required in Spider-Man Brand New Day. But I must give you a disclaimer. अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म. तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा. फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतूराज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है. ओह, आल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माय रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज, जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतूराज ने. वो क्या है? ओके, आई टोल्ड यू, इंस्टाग्राम मिर्ची जीतूराज. फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे. बाय द वे, कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है. फॉर गॉड्स सेक ब्रो, अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो. दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, रेकमेंडेड बाय जीतूराज विद फोर मिर्चीज.
0: जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.

ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: साथ जीतू राज Only on Mirchi. It's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Okay then, Spider-Man brand new day aa gayi hai. And for God's sake, please theater mein jaakar hi dekho is what Jeetu Raj will tell you. Kyunki is film mein kahi chhoti chhoti aisi cheeze hain. Especially jab characters aapas mein baat karte hain, to unki whispers, unka pyar, unka ghussa, wo theater mein jo maza deta hai, wo kahi bhi nahi dega. And for God's sake, kisi se bhi story mat suno. Don't take any spoilers. Film mein kahi aisi cheeze hain jo tere ko itna surprise kar jayengi.
3: Spiders have three life cycles.
2: I just can't begin to tell you. I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में विलन कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है? क्यों स्पाइडरमैन अपने आप में घुटने लगता है? ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है. I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात जेकब बैटनो, also MJ अर्थात जेंडाया and Peter Parker यानी टॉम हॉलैंड. In this film, it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है. क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो. Also, there's a particular scene between John Bernthal, अर्थात फ्रैंक कैसल AKA पनिशा, and टॉम हॉलैंड, अर्थात पीटर पार्कर, जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा. Also, if you have kids around you, enjoy it fully, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं, तालियां बजाते हैं, and it's all required in Spider-Man Brand New Day. But I must give you a disclaimer. अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म. तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा. फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतूराज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है. ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज, जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतूराज ने. वो क्या है? ओके, आई टोल्ड यू, इंस्टाग्राम मिर्ची जीतूराज. फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे. बाय द वे, कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है. फॉर गॉड्स सेक ब्रो, अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो. दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतूराज विद फोर मिर्चीज.
0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

Con mula, mucho mejor paella. Con mula, con mula.

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: है सबकी, करें उसका ध्यान। देवराग के साथ सुबह सबसे पहले लें उसका नाम।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर 1 रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर 1 रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन। इट्स हॉट।

0: बिताते हैं कुछ वक्त एक आध्यात्मिक एहसास में, आस्था के उल्लास में, ईश्वर के पास में, देवराग के साथ।
1: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन, इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: इमोशनली स्ट्रॉन्ग कैसे बने, आइए इस बात को समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: तो आपने कहा उनको इमोशनली स्ट्रांग होना पड़ेगा। जब एक सामने वाला, मैंने ये डिसाइड कर लिया कि सामने वाला से मुझे बहुत इमोशन मिल रहा है, कहीं ना कहीं मैं अंधी हूँ उसके प्यार में और मुझे लग रहा है कि सारा प्यार तो यहाँ से मिल रहा है, अब मैं इमोशनली स्ट्रांग होने के लिए क्या करूँ?
4: प्यार लेना नहीं है ना, प्यार देना है। और अगर आपको प्यार देना है तो वो प्यार आपको अपने अंदर से, लव एक ऐसा इमोशन है, आई एम पीस एंड आई एम लव, मुझे वो चाहिए नहीं है। ये रियलाइजेशन
3: कि आई एम पीस आई एम लव,
4: आई एम पीस आई एम लव, एंड द मोमेंट आई स्टार्ट गिविंग आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू रिसीव। मुझे अगर आपसे प्यार से बात करनी है तो वो पहले इमोशन कहाँ से होकर के जाएंगे?
3: मेरे अंदर।
4: अगर मुझे गुस्सा करना है तो पहले मुझे उस अग्नि में जलना पड़ेगा। अगर मुझे किसी से प्यार से चलना है, सो आई विल रिसीव इट फर्स्ट एंड देन आई विल गिव इट टू यू, दैट इज ट्रू लव। ये तो क्या हो रहा होता है, बिजनेस हो रहा होता है,
3: ट्रांजैक्शन।
4: हाँ, इट इज नॉट इवन लव। आप ऐसे करेंगे तो मैं ऐसा करूंगा, आप ऐसा करेंगे तो मैं ऐसा करूंगा, सो इन अ वे आई एम एम्प्टी। और मुझे लगता है इफ आई डू इट अ सर्टेन वे, रिवॉर्ड में मुझे कुछ मिलेगा।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

पॉजिटिविटी कोई लोकेशन थोड़ी है कि मैप पे डाला और पहुंच गए। इट्स अ जर्नी। चलो इस जर्नी पे विद मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: कभी कभी लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर क्यों नहीं आ पाते, आइए इस पर बात करते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: तो आप कह रही कि सबसे पहले तो मुझे प्यार देना सीखना पड़ेगा, सिर्फ प्यार लेना नहीं सीखना पड़ेगा। और दूसरी चीज, जब मैं इसमें फंसी हुई हूँ, मुझे पता है कि कहीं ना कहीं अब मुझे रियलाइज हो गया, किसी ने मुझे बता दिया कि ये तुम्हारा एडवांटेज ले रहा है, तुमको कंट्रोल कर रहा है, तुम्हारी जिंदगी से तुमको सबको काट दिया, तो दूसरे केस में इमोशनली स्ट्रांग होने के लिए और क्या करूं?
4: पहले तो रियलाइज हुआ है कि नहीं?
3: जी हो गया।
4: एक होता है कि आसपास सबको रियलाइज हुआ है,
3: वो भी होता है कि हमें रियलाइज ही नहीं होता। कई लोग ऐसे होते हैं कि नहीं, यही है हमारे भगवान, हम ऐसे ही रहेंगे।
4: दैट इज द फर्स्ट थिंग, एवरीबॉडी अराउंड कैन सी। वो लोग तो देख पाते हैं कि ये उसके अंदर फंसा हुआ है, पर उनको वही कंफर्ट जोन लग रहा होता है। वो डिप्लीट भी हो रहे होते हैं, एक्सप्लॉइट भी हो रहे होते हैं, बर्नड आउट भी हो रहे होते हैं, सफर भी कर रहे होते हैं, देन ऑल्सो दे डोंट वांट टू गेट आउट ऑफ दैट टॉक्सिक रिलेशनशिप। क्योंकि समवेयर जैसे एडिक्शन होता है ना, आपको पता भी है कि शरीर का नुकसान कर रहा है, पर वही आपको हाई भी दे रहा होता है, तो आप अपना नुकसान भी करते जाते हैं फॉर दैट ब्रीफ मोमेंट ऑफ हाई। सो रिलेशनशिप में भी कई बार ऐसा होता है कि वो आपका फायदा भी उठा रहे हैं, बट देन स्टिल फॉर दैट लिटिल बिट ऑफ अप्रिसिएशन, दैट वन लाइन,
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

स्तवनं शिवस्य व्यासोक्तमष्टकमिदं पठिता मनुष्या विद्यां त्रियं विपुलसौख्यमनन्तकीर्तिं सम्प्राप्य देहविलये।

लगन घिरे बदरा, सगन लता पेड़ों से डगर डगर वन उपवन, छाया है अंधियारा। गगन घिरे बदरा, सघन लता पेड़ों से डगर डगर वन उपवन, छाया है अंधियारा। गगन घिरे बदरा, सघन लता पेड़ों से डगर डगर वन उपवन, छाया है अंधियारा। भीरु या शाम कनाई, ले जाओ इसको घर राधे, ले जाओ इसको घर राधे, ले जाओ इसको घर। नंदराय आदेश मान कर चली राधिके ले माधव को, यमुना तट लीला निकुंज में राधा माधव की यह लीला, राधा माधव की लीला सर्वोत्तम हो।

0: एनर्जी इट्स हॉट।
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते। टिल देन सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: रिलेशनशिप में हॉट एंड कोल्ड बिहेवियर क्या होता है, आइए इसे समझते हैं।
2: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया।
3: मैं पढ़ रहा था, एक साइकोथेरेपिस्ट हैं डॉक्टर सूजन समथिंग, वो कहती हैं कि ये जो है इसको हॉट एंड कोल्ड कहते हैं। इमोशनल मैनिपुलेशन में एक तरीका होता है हॉट एंड कोल्ड, कि सामने वाला मुझे बहुत प्यार से बात करता है तो दे आर वेरी हॉट उस समय, और फिर अगले ही क्षण में या अगले ही दिन बहुत कोल्ड हो जाते हैं, जैसे हम मैटर ही नहीं करते उनके लिए। तो हमारा जो ब्रेन है वो इसको ऐसे परसीव करता है, जैसे डोपामिन शॉट होता है जब हम कोई भी वीडियो देखते हैं एक्सेट्रा, तो हमारे ब्रेन में डोपामिन शॉट जाता है जब वो बहुत हॉट होते हैं हमारे साथ, बहुत प्यार से बात करते हैं। तो अब फिर जब वो कोल्ड होते हैं हमारा, हम वी गो थ्रू एन इमोशनल साइकिल जहां सडनली हम नीचे आते हैं, फिर सडनली डोपामिन शॉट, तो फिर हम ऊपर जाते हैं। अब ये ऊपर नीचे एडिक्शन की आदत हमको पड़ गई, और ब्रेन हमेशा वेट करता है कि अगला शॉट कब मिलेगा। और इसलिए आप जो कह रही हैं, कुछ लोग हैं जिनको रियलाइज ही नहीं होता, क्योंकि शायद रियलाइज हो भी जाए लेकिन अब उनको आदत पड़ गई है, डिपेंडेंसी है कि अब वो आएगा और मेरी जिंदगी में भरपूरता भरेगा और मैं पूरी हो जाऊंगी या पूरा हो जाऊंगा, तो वो इस टॉक्सिक रिलेशनशिप में फंस जाते हैं।
1: हाँ।
3: तो ऐसे केस में जहाँ पता ही नहीं चला, रियलाइज ही नहीं हो रहा, हम डिपेंडेंट हो गए, वो बाहर कैसे निकलें?
1: उनको अपने साथ एक रिश्ता जोड़ना पड़ेगा। बाहर रिश्ता बाद में जोड़ना चाहिए, पहला रिश्ता होता है अपने साथ
3: जी,
1: दूसरा रिश्ता होता है परमात्मा के साथ
3: जी,
1: फिर जब आप भर जाते हैं तो रिश्ता होता है औरों के साथ। दैट वे वो कोई आपको कंट्रोल नहीं कर सकता, बिकॉज अब वो रिश्ता है देने के लिए। अगर आप वो रिश्ता सीधा बाहर ही जा रहे हैं, ना आपका अपने साथ कोई रिश्ता है ना परमात्मा के साथ रिश्ता है, देन डेफिनेटली आपको कोई ना कोई एक्सप्लॉइट कर लेगा।
3: हाँ।
1: क्योंकि आप अंदर से खाली हैं, आपको वहां से मिलेगा तो वो आपका एडवांटेज भी तो उठाएंगे। सो शी नीड्स टू स्टेप बैक अ लिटिल एंड नीड्स टू स्पेंड सम टाइम विद हरसेल्फ। पहली चीज, टॉक टू हरसेल्फ, वैल्यू हरसेल्फ, अपने वर्थ को पहचाने,
3: ये बहुत जरूरी है। सेल्फ एस्टीम बहुत जरूरी है, अपने वर्थ को पहचाने, अपने आप को प्यार दें, अपने आप से बात करें, ये बहुत जरूरी है।
1: अपने प्रति काइंड और कंपैशनेट होना जरूरी है ऑल साइड्स। हम लोग वर्क इन प्रोग्रेस हैं, परफेक्ट नहीं है। कोई दिन गलती करते हैं तो भी अपने से प्यार करना
3: जी,
1: कोई दिन बहुत अचीव किया तो भी अपने से प्यार करना, अपने को पुट डाउन नहीं करना।

0: See, when I take care of myself, then I don't need you na to keep saying अच्छा हुआ बहुत अच्छा हुआ कोई बात नहीं. इतनी appreciation की भूख क्यों होती है?
1: हाँ, self worth ज़्यादा ज़रूरी है. दूसरों की हमें चाह की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए.
0: जो लोग बहुत critical in nature होते हैं ना, self criticism बहुत करते हैं, उनको प्यार बहुत चाहिए.
1: बिल्कुल बिल्कुल.
0: क्योंकि वो खुद से तो क्या कर रहे हैं, अपने को तो डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं, नफरत कर रहे हैं. कई लोग अपने प्रति एक तरह से ऐसा क्रिटिकल होना ठीक है कि यू रियलाइज एंड यू ट्रांसफॉर्म, पर एक क्रिटिसिज्म कैसा होता है कॉन्स्टेंटली, तुम ऐसे हो तुम ऐसे हो, तुमसे तो कोई काम हो नहीं सकता, अपने को ही गिराते रहेंगे.
1: हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा सही कह रही हैं आप और ऐसा होता भी है.
2: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: एनर्जी रिचार्ज मंत्र विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: एक सवाल आया सिस्टर श्रेया, कहते हैं कि ऐसा लगता है कि आप लोगों के पास हर सवाल का जवाब होता है। क्या आप ये बता सकते हैं कि इस कॉम्प्लेक्स दुनिया, मुश्किल सिचुएशंस और चैलेंजिंग लोगों के बीच स्ट्रेस फ्री लाइफ कैसे जी सकते हैं?
3: पहले तो जो वो कह रहे हैं कि लाइफ इतनी
2: स्ट्रेस भरी है, कॉम्प्लेक्स दुनिया है और मुश्किल सिचुएशंस हैं।
3: देखो, किसी को ये दुनिया बहुत ब्यूटीफुल लगती है,
2: बिल्कुल,
3: किसी को ये दुनिया बहुत कॉम्प्लेक्स लगती है, किसी को उसी चैलेंज के अंदर ग्रोथ दिखाई देती है, किसी को वही चीज प्रॉब्लम लगती है। तो मुझे लगता है ये थोड़ा देखने का नजरिया है।
2: बिल्कुल,
3: हमारी सबकी लाइफ थोड़ी सिमिलर सी है, माना उसके अंदर सुख भी है, दुख भी है, हार भी है, जीत भी है, चैलेंजेस भी है, अपॉर्चुनिटी भी है, सफलता भी है, हार भी है। लगभग सबकी लाइफ यही होती है, लेकिन वही लाइफ हर एक को अलग लगती है, क्योंकि हर एक के देखने का
2: तरीका
3: अलग अलग है। जो अंदर से भरा होता है उसको हर चीज के लिए ग्रेटफुल होता है, जो अंदर से खाली होता है वो हर चीज के लिए कंप्लेन और ब्लेम करता रहता है। तो अगर आप थोड़ा सा नजरिया बदलेंगे तो इतनी कॉम्प्लेक्स नहीं है, काफी ब्यूटीफुल है। और अगर स्ट्रेस है तो फिर अगेन स्ट्रेस पेन है, माना आप हर चीज को देख रहे हैं। जैसे वो एक कहानी सुनाते हैं कि माना एक राजा था और उसके साथ मंत्री था, तो वो शिकार के लिए गए। तो जैसे शिकार पर गए तो वो राजा से थोड़ी गलती हुई और वो उसी का ही अंगूठा कट गया। जब वो चला रहा था तो उसी का ही अंगूठा कट गया। तो जो मंत्री था वो बहुत ही जैसे कहें वाइज था, तो उसने कहा कल्याण है, कल्याण है, इसमें भी कल्याण है, बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ। तो ये सुनकर के राजा को तो बहुत गुस्सा आ गया कि मेरा अंगूठा कट गया और मेरा ही मंत्री कह रहा है कि बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ, इसमें कल्याण है। तो उसने गुस्से में कहा इसको जेल में डाल दो। तो जैसे उसने कहा उसको जेल में डाल दो, तो भी उसने कहा अच्छा है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, इसमें भी कुछ कल्याण है। तो राजा को और गुस्सा आया। खैर, वो कुछ दिनों के बाद वापस शिकार पर गया और अब जो उसके सेनापति थे वो पीछे रह गए। वो अकेले ही जंगलों में काफी आगे चला गया, भटक गया। वहां पर कोई दूसरा भी राजा आया हुआ था किसी राज्य का। उसको किसी ने कहा था, जो कहानी में सुनाते हैं कि किसी गुरु ने कहा था, आपके घर में जब संतान होगी तो आपको बलि चढ़ानी है। तो वो शिकार के लिए आए हुए थे किसी की बलि चढ़ाने के लिए और इनको ये राजा मिल गया। तो उन्होंने कहा जानवर से बलि चढ़ाने से तो अच्छा है, मनुष्य की बलि महाबली हो जाएंगी। तो बंदी बना लिया इस राजा को, लेकिन जैसे ही देखा कि अंगूठा कटा हुआ है तो कहा कि नहीं, इनकी बलि नहीं चढ़ा सकते क्योंकि खंडित है। बलि उसी की चढ़ सकती है जो पूरा
2: पूर्ण है,
3: पूर्ण होना चाहिए। तो राजा को एकदम वो बात याद आई,
2: कल्याण,
3: अच्छा कल्याण है, कल्याण है, बहुत अच्छा है। तो फिर उसको लगा, उसको अंदर में लगा कि मंत्री ने ठीक कहा था। पर उसको ये बात समझ में नहीं आई कि मैंने जब उसको जेल में भेजा
2: तब क्यों कहा
3: उसने इसमें भी कल्याण है। तो कहा उसको बुला करके लाओ, उसको पूछा, सारी कहानी उसको सुनाई, कहा तुमने जो कहा कल्याण है, नहीं तो आज तो मैं मर जाता। तो फिर मंत्री ने हंस करके कहा, देखो आपका अंगूठा कटा था, आपको तो छोड़ देते, मैं मंत्री आपके साथ होता, सेनापति तो पीछे है, अब वो आपको छोड़ते और उनको बलि के लिए कोई चाहिए था तो अगला मैं ही होता, इसलिए भगवान ने पहले ही मुझे जेल में
2: बहुत बढ़िया
3: डाल दिया जिससे मैं भी बच गया। नाउ दी स्टोरीज जो हम भक्ति में सुनते थे, उसका क्या भाव होता था कि आपके जीवन में कोई भी सीन है, आप अपने को उस समय याद दिलाओ इसमें कुछ बेनिफिट है।
2: सही बात।
3: अगर बाहर बेनिफिट नहीं भी दिख रहा ना, तो अंदर कोई बेनिफिट होगा। आपकी हिम्मत बढ़ेगी, आप भगवान के समीप आएंगे, आपकी आंतरिक शक्ति बढ़ेगी, यू विल ग्रो एज अ पर्सन। इसलिए किसी भी सीन को देखकर जो वो कह रहे हैं दुनिया बहुत कॉम्प्लेक्स है, दुनिया एक्यूरेट है, और आप हर सीन से एक्सेप्ट करें, उसमें बेनिफिट समाया है, उससे सीख करके आगे बढ़े, तो आपको बहुत ब्यूटीफुल दुनिया लगेगी।
2: ब्यूटीफुल।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: एक सवाल आया सिस्टर, लिखते हैं कि हेलो विशाल एंड सिस्टर श्रेया, अगर मेरे साथ कुछ बुरा हो तो मैं उसके गुस्से में रहती हूँ या रिवेंज मोड में रहती हूँ, और इसके कारण कभी कभी मैं किसी इनोसेंट पर्सन को हर्ट कर देती हूँ, नॉट इंटेंशनली, कोलैटरल डैमेज हो जाता है, फिर मुझे बहुत बुरा लगता है और फिर मुझे फील होता है कि मैं क्यों ही रिवेंज मोड में थी, इसका कोई पॉइंट ही नहीं था, कैसे इस चीज को ठीक करूं?
3: जो हम होते हैं वही तो हम देंगे ना। अगर आप दुखी हैं तो आप दुखी देंगे। हर्ट पीपल जो हम कई बार बात करते हैं, तो जब भी हमारे साथ जीवन में बुरा होता है तो उस बुरे से सीखने की कोशिश करनी चाहिए।
2: सही बात है।
3: कुछ भी हमारे साथ हुआ, जब हम उससे सीख लेते हैं तो वो सुखदाई बन जाती है। वो कितनी भी खराब सीन होती है, वो हमें कोई ना कोई पाठ पढ़ा करके चली जाती है, पर हम सीखते नहीं है, हम उसके दर्द में चले जाते हैं, उस विशेष साइकिल में चले जाते हैं। अब आप दर्द में है, एक मदर भी है, फिर वो अपने बच्चे को कुछ कह देंगे या उसके ऊपर हाथ उठ जाएगा, फिर गिल्ट होगा और फिर ये संस्कार बढ़ने लग जाता है। इसीलिए लोगों के संपर्क में तभी आए जब आपका मन ठीक है।
2: हाँ।
3: अगर आपका मन ठीक नहीं है तो थोड़ा सा समय निकाल करके अपने साथ बैठे। जैसे जब कोई ठीक नहीं होता तो उसके साथ बैठते हैं ना, उसको कहते हैं क्या हुआ, क्या बात है, उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं, उसको जाने दो, लेट गो, बातों को पकड़ो नहीं, बोल दिया, कौन सी बड़ी बात है।
2: तो अपने साथ भी यही करना है।
3: करना ही है, अपने को तो ठीक करना ही पड़ेगा ना। अपने को ठीक करके फिर आप किसी के संपर्क में आए, नहीं तो भूले हो जाते हैं, और जो आपने कहा कोलैटरल डैमेज, फिर वो रिश्ता खराब हो जाता है।
2: एक एम्ब्रोस बियर्स हैं, बहुत अच्छे ऑथर हैं, बहुत एक आध उन्होंने बहुत कमाल की कहानियां भी लिखी हैं। उनकी बहुत अच्छी कोट है जो मुझे पसंद है, वो कहते हैं कि स्पीक व्हेन यू आर एंग्री एंड यू विल मेक द बेस्ट स्पीच एवर दैट यू विल रिग्रेट ऑल योर लाइफ। बहुत खूबसूरत बात लिखते हैं।
3: जब भी गुस्सा आता है ना, थोड़ा समय के लिए किनारा करना चाहिए।
2: बिल्कुल।
3: अगर हो सके तो उस दिन नहीं बोलना चाहिए, मतलब ये बात अगर सब समझे आ गया आपको। एक होता है करना ही नहीं है, पर अब आपको आ गया मतलब आपके मन में बहुत नेगेटिव चल रहा है। अगर आपने बोला तो आप हर्ट ही करेंगे, आपका वाइब्रेशन किसी को हर्ट करेगा, उस बोल के अंदर सॉफ्टनेस और जेंटलनेस नहीं होती।
2: सही बात।
3: आप किसी को काम भी कहेंगे ना करने के लिए, तो उसके अंदर भी रोब होगा, अथॉरिटी होगी, करवाहट होगी। तो अच्छा है एक दिन थोड़ा सा अगर आप साइलेंट रहेंगे, आप ठंडे हो जाए, फिर जो बात कहनी है कहें, तो कम से कम आप काफी डैमेज से बच जाएंगे।
2: बहुत बढ़िया।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Mirch Morning, only on Mirchi. It's hot.
1: Positivity कोई location थोड़ी है कि map पे डाला और पहुंच गए. It's a journey. चलो इस journey पे with Mirchi Recharge Mornings. सुबह 6 से 8. Only on Mirchi. It's hot.

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: एक सवाल बड़ा प्यारा आया है सिस्टर श्रेया। कहते हैं कि बच्चों को कितने साल के होने पर मेडिटेशन सिखाना ठीक होगा?
3: बच्चे एक ऐसे होते हैं कि गर्भ से उनके ऊपर प्रभाव पड़ना शुरू हो जाता है।
2: हाँ, अभिमन्यु की कहानी सुनी है।
3: अभिमन्यु की कहानी है कि वो चक्रव्यूह का ज्ञान उसमें कैसे घुसना, उसने गर्भ में ही ले लिया। मतलब वो कहानी ये बताती है कि वैसे भी कई लोग बहुत ध्यान देते हैं प्रेगनेंसी के समय, उतने समय पर वो चूज करते हैं। ऐसा नहीं है कोई मजबूरी है, वो चूज करेंगे अच्छी किताबें पढ़ना, सत्संग करना, भागवत पढ़ना, बहुत कुछ चूज करते हैं कि उस चीज का इम्पैक्ट पड़ता है सोल के ऊपर। आप क्या सोच रहे हैं, आप क्या फील कर रहे हैं, लेकिन वो तो इन्फ्लुएंस हो गया। उसके बाद आजकल आप देखेंगे कई बार छोटे छोटे बच्चे होंगे घर में, पेरेंट्स योगा कर रहे हैं, फिजिकल योगा वो भी साथ में बैठकर कर रहे होते हैं, पेरेंट्स वॉक कर रहे हैं, बच्चे भी करना शुरू कर देते हैं। सो जितने यंग है उतना अच्छा है। बैठना तो शुरू करें, भगवान को याद करना तो शुरू करें। शायद उनको विधि समझ में नहीं आएंगे,
2: पर
3: उसकी इम्पोर्टेंस समझ में आएगी।
2: सही बात है।
3: फिर जितना जितना उनको 8 साल के होते हैं तो विधि भी समझ में आ जाएंगे। मैं समझती हूँ शायद 8 ईयर्स ओल्ड होंगे तो उनको विधि भी समझ में आएंगे, और इसलिए जितना जल्दी हो सके उतना अच्छा है। पर उनको स्पिरिचुअल स्थान पर जाने की आदत होनी चाहिए, घर में अच्छी अच्छी बातें सुनने की आदत होनी चाहिए। फॉर्मेटिव ईयर्स में उनकी बुद्धि डेवलप हो रही होती है तो संस्कार बहुत ईजी बन जाते हैं।
2: क्या बात है।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: It's hot.
1: हेल्दी माइंड के लिए अगर कोई जिम होता तो चले जाते. Till then, सुनो मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची. It's hot.

0: Energy Recharge Mantra with Vishal Setia and Brahma Kumari, Sister Shreya. Only on Mirchi. It's hot.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं मिर्ची रिचार्ज मंत्रा मेरे यानी विशाल सेठिया के साथ, और मेरे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर श्रेया। आइए, अब वक्त है आपके सवाल लेने का। उम्मीद है आपको इनसे सही दिशा मिलेगी।
2: सिस्टर श्राजीत सेनगुप्ता हैं, आसनसोल से लिखते हैं कि कुछ टाइम पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया था, पर अब मैं ठीक हूँ। प्रॉब्लम ये है कि कुछ ही लोग मेरे से बात करते हैं, बाकी लोग मेरे साथ घुलते मिलते नहीं हैं क्योंकि मैं अनएम्प्लॉयड हूँ। मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि वो लोग मुझ पे भरोसा करें। प्लीज एडवाइस करें कि मैं क्या करूँ।
3: हम बहुत ज्यादा ये जो सोचते हैं ना, ये ऐसा करे,
2: वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता।
3: वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। हमारा जीवन का बहुत समय इसमें वेस्ट हो रहा है कि दूसरों को हमारे साथ कैसे होना चाहिए। दूसरे हमारे साथ वैसे ही होते हैं जैसे हम होते हैं टू सम एक्सटेंट, और जैसे उनके संस्कार होते हैं। सो इंस्टेड ऑफ थिंकिंग कि वो मेरे पर भरोसा करें, आप कर्म ऐसे करें कि वो भरोसा करना शुरू कर दें।
2: और जो लोग आपसे इस वक्त बात कर रहे हैं उनके बारे में सोचें, क्योंकि वो आपके लिए सपोर्ट सिस्टम बन के खड़े हुए हैं। तो बजाय इनके जो नहीं है उनके बारे में सोच के आप इनसे मैत्रिता का भाव बढ़ाएं, और शायद इसके इन्हीं के कारण आपकी जिंदगी आगे बढ़ेगी।
3: भरोसा अपने कर्मों से जीतना होता है। बैठे हैं हम और कह नहीं, आप मेरे पर भरोसा करो। ये चीजें बोलने की नहीं होती, आप मुझे ट्रस्ट करो, आप मेरे पर फेथ रखो। आप देखिए ये चीजें डेवलप हो जाती हैं।
2: सही बात।
3: जैसा हमारा कर्म है, व्यवहार है, सोच है, हमें कहना थोड़ी ना पड़ता। सामने वाला कहते हैं इनको तो मैं 100% ट्रस्ट कर सकता हूँ, ऊपर तो मैं पूरा भरोसा कर सकता हूँ, इन्हें तो मुझे देखने की भी जरूरत नहीं है, इनके ऊपर तो मैं सारा छोड़ सकता हूँ। तो ये क्या है, आपके कर्मों से आपने सामने वाले का फेथ, ट्रस्ट और भरोसा
2: जीत लिया।
3: तो आप ये कहने की जगह कि वो मेरे पर भरोसा करें, आप अपने पर मेहनत करना शुरू करें, धीरे धीरे सब आप पर भरोसा करेंगे।
2: शायद वो श्रजित ये कहना चाहते हैं कि क्योंकि मैं अनएम्प्लॉयड हूँ इस वक्त, फेयर वेदर फ्रेंड्स है वो सारे छोड़ के मुझे चले गए।
3: पर ये ओके है ना। तो क्या हो गया, कभी कभी ऐसा होता भी है कि अगर हम थोड़े समय के लिए अनएम्प्लॉयड हैं या किसी डिफिकल्ट समय से गुजर रहे हैं, तो कई बार लोग साथ छोड़ भी देते हैं। इट इज ओके, मैं कहती हूँ उनके बारे में सोचने की जगह।
2: सही बात है,
3: ये लाइफ में हो जाता है कई बार। तो हम ये देखें कि हमें क्या करना है, तो फिर जो हमारे अपने होंगे वो लौट कर आ जाएंगे।
0: मिर्ची रिचार्ज मंत्रा विद विशाल सेठिया एंड ब्रह्मा कुमारी सिस्टर श्रेया, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

टाइप सी केबल के साथ फोन तो चार्ज कर लोगे, खुद को कैसे चार्ज करोगे? मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

कैसे हो के जवाब में ठीक हूँ कह देने से कोई ठीक नहीं हो जाता। ठीक हूँ से मस्त हूँ कहने के लिए सुनिए मिर्ची रिचार्ज मॉर्निंग्स सुबह 6 से 8 ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में एंड वेलकम टू मिर्ची मॉर्निंग्स। यहाँ पर कम्यूट थोड़ा सा छोटा लगता है, कॉफी थोड़ी सी ज्यादा स्ट्रांग लगती है और होम सिकनेस बिल्कुल नहीं लगती है। अब वेदर यू आर ड्राइविंग टू योर वर्क या फिर घर पर बैठकर तुम अपने ऑफिस के काम कर रहे हो या फिर अभी तक ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी करना शुरू नहीं किया है या फिर अभी उठे ही नहीं हो, जो कुछ भी कर रहे हो अगले कुछ घंटों तक मिलेगा तुमको यहाँ पर मस्त मिर्चीदार बैंगर म्यूजिक, फन स्टोरीज, थोड़ा सा गॉसिप, अराउंड द वर्ल्ड की अपडेट्स एंड ऑफ कोर्स मैं बोले तो प्रिसिला की कंपनी। तो चलो वॉल्यूम को थोड़ा सा बढ़ा लो, स्माइल को थोड़ा सा चढ़ा लो और अब शो शुरू करते हैं जिसका नाम है मिर्ची मॉर्निंग्स। कनेक्ट विथ मी इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

इस गाने को गाया है और कंपोज किया है विशाल मिश्रा ने और लिरिक्स लिखे हैं राजशेखर ने। फिल्म टॉक्सिक से सुनते रहिए तबाही, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग, मेरा नाम है प्रिसिला और टाइम हो चुका है क्विक टाइम ट्रैवल का। बिकॉज ऑन दिस डे सालों पहले क्या हुआ था ये पता करना भी तो जरूरी है। सबसे पहले चलते हैं 1492 में, जब क्रिस्टोफर कोलंबस स्पेन से तीन शिप्स लेकर निकले थे, सांता मरिया, पिंटा एंड निनिया। वैसे तो वो एशिया ढूंढने निकले थे लेकिन कैरेबियन पहुंच गए, मतलब ये हिस्ट्री का पहला गूगल मैप्स पे गलत टर्न ले लिया वाला मोमेंट रहा होगा। 1914 में जर्मनी ने फ्रांस के अगेंस्ट वॉर डिक्लेयर किया एंड वर्ल्ड वॉर वन ऑफिशियली शुरू हो गया। फास्ट फॉरवर्ड टू 1949, बास्केटबॉल लवर्स, दिस वन्स फॉर यू, BAA और NBL मर्ज हुए और जन्म हुआ NBA का। 1958 में न्यूक्लियर सबमरीन USS Nautilus ने हिस्ट्री क्रिएट की, पहली बार नॉर्थ पोल के नीचे अंडर वाटर ट्रैवल कंप्लीट करके। और 1960 में निजायर बिकेम इंडिपेंडेंट फ्रॉम फ्रांस। तो देखा, एक ही दिन में कितनी अलग अलग कहानियां हुई थी। अगर तुम्हें भी कुछ ऐसा पता है तो मुझे बताओ। मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। और अभी के लिए चुपके बैठो, मिर्ची दर बैंगर्स कमिंग अप राइट योर वे, स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हाय माय नेम इज पीटर पार्कर।
2: ओके देन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे आ गई है एंड फॉर गॉड सेक प्लीज थिएटर में जाकर ही देखो इज व्हाट जीतू राज विल टेल यू, क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं, स्पेशली जब कैरेक्टर्स आपस में बात करते हैं तो उनकी विस्पर्स, उनका प्यार, उनका गुस्सा, वो थिएटर में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा। एंड फॉर गॉड सेक किसी से भी स्टोरी मत सुनो, डोंट टेक एनी स्पॉयलर्स। फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना सरप्राइज कर जाएंगी।
3: स्पाइडर्स हैव थ्री लाइफ साइकिल।
2: आई जस्ट कांट बिगिन टू टेल यू। I'll tell you the biggest thing, Spider-Man में विलन कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है, क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है? ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है। I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jake Batno, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland, in this film it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है। क्यों, क्या, कैसे, वो जाकर देखो। Also, there's a particular scene between John Bernthal, अर्थात Frank Castle, A.K.A. Punisher, and Tom Holland, अर्थात Peter Parker, जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा। Also, if you have kids around you, enjoy it fully, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं, तालियां बजाते हैं, and it's all required in Spider-Man Brand New Day. But I must give you a disclaimer. अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म, तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा। फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतू राज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है। ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतू राज, जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतू राज ने। वो क्या है? ओके आई टोल्ड यू, इंस्टाग्राम मिर्ची जीतू राज। फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। बाय द वे, कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या Zendaya एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है। फॉर गॉड सेक ब्रो, अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो। दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतू राज विद फोर मिर्चीज।
0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, और चलो देखते हैं कि आज का मौसम क्या मूड बना रहा है। अभी फिलहाल टेम्परेचर है 78 डिग्री फारेनहाइट और स्काई जो है वो मोस्टली क्लाउडी है, लेकिन हवा जो है मस्त चल रही है, इसीलिए एक्चुअली फील हो रहा है 75 डिग्री फारेनहाइट के आसपास। मतलब आज एसी फ्री में ऑन है, तुम्हारा पावर बिल नहीं आने वाला है। आज का हाई जाएगा 82 डिग्री फारेनहाइट तक और लो रहेगा 71 डिग्री फारेनहाइट तक, एंड फील होगा 69 से लेकर 80 डिग्री फारेनहाइट के बीच में। तो कभी कभी फिल्टर लगाकर आता है जस्ट लाइक एनी वन ऑफ अस। और हाँ, अराउंड 2:30 बजे के आसपास यानी 2:30 PM पर बारिश के चांसेस स्ट्रॉन्ग है। अगले 24 आवर्स में लगभग 7 मिलीमीटर्स की बरसात एक्सपेक्टेड है। लास्ट 24 आवर्स में 3 मिलीमीटर्स की बरसात ऑलरेडी हो चुकी है। तो आज क्लाउड्स ने ओवरटाइम करने का अप्रूवल दे दिया है, तो अपना अम्ब्रेला साथ में कैरी करना, और साथ में कैरी करना अपना SPF 50+++ एंड कीप योरसेल्फ हाइड्रेटेड, यानी कि ढेर सारा पानी पीना है, एंड ऑफकोर्स करो साथ में मिर्ची का एटीट्यूड। मिर्चीदार बनाएंगे तुम्हारे दिन को और ज्यादा। अभी आगे बढ़ते हैं मिर्चीदार गानों की तरफ। कनेक्ट करो मुझसे, मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क इट्स हॉट।

जिसके भी बस की हो आके पकड़ ले, इनसे गेम क्रैक की नहीं हो रहा ना, हिट कोई ट्रैक की नहीं हो रहा ना, यहाँ फिर मैंने सीन चेंज किया और कुछ लोगों का कमबैक की नहीं हो रहा। बादशाह है नाम मेरी जान, प्यार से मुझको वो बैडी बोलती है, गेम में लॉन्डो का बापू बेबी, एक तू ही थोड़ी है जो मुझे डैडी बोलती है।

0: रूडो बॉय बन जाता हूँ।
1: yeah.
0: उड़ती हैं खबरें लेता ना स्ट्रेस।
1: no.
0: गेम का कार्ट ऑन टू द नेक्स्ट।
1: oh.
0: प्लेन है प्राइवेट लाइफ है ब्लेस।
1: yeah.
0: मुट्ठी में गेम मेरे घंटे पे प्रेस। बैड बॉय शाह कैसे तुझे तेरे बस का लगा, न मुझे ऐसे मस का लगा। रही ना किसी काम धाम की जब से लड़की को चस्का लगा।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: हे देयर, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में। दिस इज मिर्ची मॉर्निंग्स और अब टाइम है सबसे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स का ग्रैंड फिनाले ग्लासगो में हो चुका है और स्टेज पर इंडिया का फुल ऑन कल्चरल स्वैग देखने को मिला है। एक्ट्रेस मनुषी चिल्लर ने वंदे मातरम पर परफॉर्मेंस दी, सिंगर शंकर महादेवन और उनके बेटों ने भी ऑडियंस को म्यूजिकल ट्रीट दिया और सबसे खास बात यह है कि ऑफिशियल बैटन अब अहमदाबाद के पास है क्योंकि कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 की होस्टिंग इंडिया करने वाला है। वैसे मेडल टैली में ऑस्ट्रेलिया टॉप पर रहा, इंग्लैंड सेकेंड पर, कनाडा थर्ड पर और इंडिया ने 13 गोल्ड के साथ 39 मेडल्स जीतकर फोर्थ प्लेस पर फिनिश किया है। नंबर टू पर कनाडा के कैलगरी में इंडियन स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट और हंगर स्ट्राइक पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोग्राम्स में एडमिशन इस अंडरस्टैंडिंग के साथ लिया था कि उन्हें पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट यानी कि PGWP मिलेगा। अब परमिट एलिजिबिलिटी को लेकर कंफ्यूजन और रिजेक्शन के बाद वो अथॉरिटी से क्लैरिटी और रेजोल्यूशन की डिमांड कर रहे हैं। सिचुएशन डिवेलपिंग है और सबकी नजर अपडेट्स पर बनी हुई है। एंड फाइनली रिपोर्ट्स के मुताबिक फुटबॉल सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो एंड होर्हिना रोड्रिगेज इस सैटरडे मदीरा में शादी के बंधन में बंध सकते हैं। एक डिकेड पुरानी लव स्टोरी और अब फाइनली शादी की हेडलाइंस। मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में। स्टे कनेक्टेड विद मी इंस्टाग्राम और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Milci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabbana. Burga, burga. La vieta la burga. Milci, burga.
2: Hello.
3: Hi. से आपके फोन पे फ्री कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि अभी के अभी आपका बिल आधा हो जाए तो कृपया दो दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल घर पे आए तो एक दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपके बिल में कोई भी गलती ना हो तो कृपया नौ दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपको बिल की पूरी पुष्टि चाहिए, समरी चाहिए, तो कृपया नौ नौ दबाइए। अगर आप चाहते हैं कि जो आपने कॉल करी है सिर्फ उसी का बिल आए तो दबाइए तीन तीन। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि दूसरा पड़ोसी कोई कॉल कर रहा है और उसकी कॉल आपके बिल में ना आए तो दबाइए छः छः। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल आपके ही नंबर का आना चाहिए, किसी दूसरे का नहीं आए, तो दबाइए पाँच पाँच। धन्यवाद। अगर आपको बिल पेपर पे चाहिए, पेपर बिल चाहिए, तो दबाइए सात सात। धन्यवाद। अगर आप स्कीम लेना चाहते हैं और अडॉप्ट करना चाहते हैं इस स्कीम को अगले महीने से, तो दबाइए 3,07,739।
2: हेलो।
3: हाय, ये फिर से आपके फोन पे कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपकी इस तरह की कॉल ना आए तो दबाइए 4198 3983।
4: मैं रेडियो मिर्ची से सर नवेद बोल रहा हूँ। आप क्या खेल खेले जा रहे हैं यार? अपने मोबाइल से कभी ये दबा रहे हैं, कभी वो दबा रहे हैं। आप थके नहीं हैं? आप रेडियो मिर्ची पे हैं? आपका
2: तो वही मैं सुधरा था, मतलब।
3: अगर आपको इस सबसे मजा आया हो तो कृपया दबाए 5,07,339। हो गया।
2: हाँ जी।
3: कुकड़ों को
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग गाइज, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, और आज दिल गार्डन गार्डन कर देने वाली स्पोर्ट्स अपडेट लेकर आई हूँ तुम्हारे लिए। टीम इंडिया ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में टोटल 39 मेडल्स जीतकर एक जबरदस्त कैंपेन कंप्लीट किया है, और हमारे T20I कैप्टन श्रेयस अय्यर ने पूरी इंडियन कंटिंजेंट को सलूट करते हुए कहा है कि दिस इज इंडियन स्पोर्ट्स at its finest। उन्होंने स्पेशली हमारे बॉक्सर्स की तारीफ की है जिन्होंने ग्लासगो में गोल्ड जीत कर तिरंगे का मान और भी ऊंचा कर दिया है। सच बोलूं तो यार, तुम फॉरेन कंट्री के किसी भी कोने में हो या फिर ऑफिस पार्किंग लॉट से चाय या कॉफी पीते हुए मुझे सुन रहे हो, जब इंडिया जीतता है ना तो एक सेकेंड के लिए सबको लगता है यार ये मेडल थोड़ा सा मेरा भी है, है ना? और अब सेलिब्रेशन की बात निकली ही है तो स्पार्कलिंग अपडेट भी सुन लो। तनिष्क प्रेजेंट्स फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स अब है 25% ऑफ ऑन डायमंड वैल्यू एंड मेकिंग चार्जेस, और तुम्हारे पास अगर 18 कैरेट्स या उससे ऊपर का पुराना गोल्ड रखा है तो उसे लेकर आओ, एक्सचेंज कराओ 0% डिडक्शन पर, एंड ऑफ कोर्स टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाइड है। बस ये याद रखना कि मेडल जीतना जितना मुश्किल है उतना मुश्किल नहीं है अच्छा डायमंड ढूंढना, क्योंकि वो तनिष्क पर अवेलेबल है। अभी फिलहाल अवेलेबल है तुम्हारे लिए मिर्चीदार बैंगर्स, कमिंग अप राइट योर वे ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। मुझसे कनेक्ट करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, एंड व्हाट्सएप पर नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: चम्मा चम चम।
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: आज अगर तुम्हारा हैप्पी वाला बर्थडे है तो सबसे पहले काम करो, एज को काउंट मत करो, ब्लेसिंग्स को काउंट करो, और केक का साइज जो भी है दिल का साइज बड़ा होना चाहिए। गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में मिर्ची मॉर्निंग्स की तरफ से। तुम्हें आज हैप्पी वाला बर्थडे है, सेलिब्रेट करने वाले तुम तो हो ही, लेकिन तुम्हारे साथ कुछ तुम्हारी तरह के रॉक स्टार्स और भी है। उनके नाम क्या है, लेट्स फाइंड आउट। सबसे पहले वीव गॉट मार्था स्टूअर्ट, एंड देन वीव गॉट लेजेंडरी एक्टर मार्टिन शीन, साथ में मेटालिका के पावर हाउस फ्रंट मैन जेम्स हेटफील्ड, हिप हॉप आइकॉन डीजे स्पिंडरेला और लॉस्ट एंड एंटमैन फेम एक्ट्रेस एवेंजेलिन लिली। मतलब अगर आज तुम्हारा भी हैप्पी बर्थडे है ना, तो गेस्ट लिस्ट ऑलरेडी काफी इम्प्रेसिव हो गई है, बस केक कटने का इंतजार है। पिक्चर्स तो मुझे भी भेज सकते हो मेरे हैंडल पर, जो कि है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS, ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स। और अब बर्थडे गिफ्ट की बात चल रही है, तो मैं तुम्हें याद दिला दूं, आरके जूल्स लेकर आए हैं तुम्हारे लिए स्पार्कलिंग सरप्राइज। शॉप करो उनके एक्सक्विजिट कलेक्शन में जाकर स्टनिंग ज्वेलरी, एंड यू कुड गेट अ फ्री $250 का गिफ्ट कार्ड। आरके जूल्स, बेस्ट क्वालिटी बेस्ट प्राइस। और अगर तुम अपने शाउट आउट भेजना चाहते हो तो मुझे DM करो, मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, एंड व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। फिलहाल मिर्ची दर बैंगर्स का टाइम है, स्टे ट्यून एंड स्टे हॉट।

0: साथ जीतू राज only on Mirchi. It's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Okay then, Spider-Man brand new day aa gayi hai and for God's sake please theater mein jaakar hi dekho is what Jeeturaj will tell you kyunki is film mein kai choti choti aisi cheeze hain especially jab characters aapas mein baat karte hain to unki whispers unka pyar unka gussa wo theater mein jo maza deta hai wo kahin bhi nahi dega and for God's sake kisi se bhi story mat suno don't take any spoilers film mein kai aisi cheeze hain jo tere ko itna surprise kar jayengi
3: spiders have three life cycles
2: I just can't begin to tell you I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में villain कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर suffocate होने लगता है? क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है? ये reason उस villain पर जाकर रुकता है. I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये expect करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batno, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film, it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो ऑल्सो देयर इज अ पर्टिकुलर सीन बिटवीन जॉन बर्नथॉल अर्थात फ्रैंक कैसल एके पनिशर एंड टॉम हॉलैंड अर्थात पीटर पार्कर जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा ऑल्सो इफ यू हैव किड्स अराउंड यू एंजॉय इट फुल्ली क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतूराज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतूराज ने वो क्या है ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची जीतूराज फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बाय द वे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है फॉर गॉड सेक ब्रो अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतूराज विद फोर मिर्चीज
0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: हे देयर, मैं हूँ प्रिसिला, तुम्हारे साथ में। सुन रहे हो तुम मिर्ची मॉर्निंग्स और अब सुनने वाले हो गोल्ड का रेट अपडेट।
2: राजोस विशेस एवरीवन हैप्पी एंड हेल्दी मॉर्निंग। गोल्ड रीडिंग एट $4,050, $4,050 पर ट्रे हाउस के साथ आज सुबह गोल्ड के प्राइस ट्रेड कर रहे हैं। 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी, 18 कैरेट कलरलेस डायमंड ज्वेलरी, नेचुरल विद लाइफ टाइम वारंटीज एंड सर्टिफिकेशन, एंड GI सर्टिफाइड नेचुरल डायमंड, एनी शेप्स, एनी कलर, एनी साइज। राज ज्वेल्स के साथ गोल्ड एंड डायमंड में इन्वेस्ट करें और हमारी स्पेशल फाइनेंसिंग ऑप्शन जिसके अंदर 0% इंटरेस्ट पे, 0 डाउन पेमेंट में आज एक भी पैसा नहीं देना है। अप्रूव होने पे राज ज्वेल्स के साथ गोल्ड का प्राइस लॉक करें, 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी घर लेके जाएं और 9 इंस्टॉलमेंट्स में पैसे दें बिना किसी इंटरेस्ट, बिना किसी हिडन फी के। आइए RajJewels.com के साथ गोल्ड में इन्वेस्ट करें। थैंक यू, हैप्पी मॉर्निंग टू ऑल।
1: एंड देयर यू हैव इट, गोल्ड का लेटेस्ट रेट अपडेट एक्सक्लूसिवली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स विद मी प्रिसिला। कनेक्ट करो मुझसे इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 Mirchi, that's 9033 6472 44. Stay tuned and stay hot.

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट
1: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला ओनली ऑन रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: गुड मॉर्निंग, मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, और टाइम हो गया है मिर्ची आवर का 3 का, ओनली ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स। सबसे पहली खबर, रिपोर्ट्स के हिसाब से व्हाट्सएप कुछ यूजर्स को अपनी डेट ऑफ बर्थ प्रोफाइल में ऐड करने का प्रॉम्प्ट दिखा रहा है इन इंडिया। मैसेज में लिखा है कि इंडिया के अपकमिंग लॉज के चलते एज इन्फॉर्मेशन मांगी जा सकती है। अभी तक व्हाट्सएप ने ऑफिशियल कन्फर्मेशन नहीं दिया है कि ये फीचर सबके लिए रोल आउट होगा या एग्जैक्टली कैसे काम करेगा। नंबर 2 पर, स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे ने इंडिया में ओपनिंग वीकेंड पर जबरदस्त कलेक्शन किया है। रिपोर्ट्स के हिसाब से फिल्म ने रेकॉर्ड ब्रेक ओपनिंग वीकेंड बिजनेस किया है एंड टॉम हॉलैंड का वेब स्लिंगर फिर से बॉक्स ऑफिस पर छा गया है। मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, मुझसे कनेक्ट करो इंस्टा और एक्स पर, मेरा हैंडल है मिर्ची प्रिस, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: Energy. Escabana, escabana, sacabana. Rabana. Burga, burga. Na vida, la burga.
1: Mirchi, burga. हेलो हेलो विनीत जी।
2: हाँ जी
1: विनीत जी नमस्कार, जनता बैंड से बोल रहा हूँ सर। क्या हाल चाल है, शादी की तैयारियाँ चल रही हैं?
2: सही हाँ, हाँ मैं तो चल रही है।
1: हाँ तो मैं आपसे ये पूछ रहा था, बारात कितने बजे निकलेगी यहाँ से जो आदमी भेजने बैंड के लिए?
2: 7:30 बजे तक।
1: सर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ गई हमारे, जो वो आपने बुक किया था ना बैंड वाले, वो बंदे कम रह गए हैं। वो बंदे राजस्थान से आने थे, वो वहाँ पे रह गए हैं
2: 9:30-10 बजे तक। ये बताओ ना बचा जाएगा?
1: सर आप चिंता ना करें, आप घोड़ी पे चढ़ेंगे, हम बैंड वाले एक है मेरे पास, वो भेज रहा हूँ सर, वही वो सब संभाल लेगा, आप फिक्र ना करें।
2: पागल हो गए हो क्या? क्या बजाएगा अकेला वो?
1: मैं आपके वही, एक सेकंड रुकिए सर। हेलो मिस्टर थॉमस। सर ये मिस्टर थॉमस को आए हैं, ये बजाते हैं और ये ना ये अच्छा अच्छा सुनाएंगे आपको, आप चिंता ना करें। और सर ये स्पेशली मैं आपको इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं ले रहे, ये बाहर से आए सर। सर आप बात करना चाहेंगे मिस्टर थॉमस से?
2: मैं क्या बात करूं यार अकेला क्या बजाएगा?
1: नहीं वही मैं आपको बता रहा हूँ सर, आप मिस्टर थॉमस का एक चीज सुन लीजिए, मैं आपको कह रहा हूँ आप घोड़ी पे चढ़ेंगे आपको मजा आ जाएगा। मिस्टर थॉमस ये जरा सर के विनीत जी की शादी है, इनको बता दीजिए क्या। ये सुनिए ये देखिए।
2: हेलो
1: हाँ विनीत जी मजा आया? ये मिस्टर थॉमस ये
2: क्या बजा रहा है ये सुना आपने?
1: सर आप समझ नहीं पा रहे हैं, ये स्पेशल बजा रहा है सर। मैं आप तो चिंता ऐसे कर रहे हैं, आपकी शादी मेरी शादी है सर, आप इस बात को समझो। घोड़ी कितने बजे चढ़ रहे हैं सर?
2: मैं घोड़ी तो चढ़ी जाऊंगा यार।
1: अच्छा सर मैं मेरी बात सुनिए, जब आप घोड़ी चढ़ेंगे ना मिस्टर थॉमस, घोड़ी चढ़ने वाले चढ़ाएंगे।
2: हेलो हेलो
1: हाँ मेरे को पूरी उम्मीद है सर, कैसा लगा आपको?
2: ये बारात का बजा रहा है, किसी के श्राद्ध का बजा रहा है ये?
1: विनीत मैं आपको ये बता रहा था, ये मिस्टर थॉमस ना पहले ये आपका ये नहीं होता है, ये कॉफिन ले जाने वाला काम करते थे, इनका काम मेरी बात सुनिए, अभी पहले कॉफिन वाला करते थे, आप बारात ज्वाइन कर लिए सर।
2: अरे कॉफिन
3: विनीत मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो मुबारक हो, आपकी शादी होने वाली है, मैं भी आऊंगा और आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपके साथ मजाक किया है, आपका मुर्गा बन गया है सर, आप बुरा मत मानिए।
2: अच्छा भैया
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

0: Mirchi Mornings with Priscilla. It's hot.
1: Good morning. मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में and welcome to राशि जोन का पहला पार्ट.
2: मिर्ची राशि जोन.
1: It is Animesh Rashi. दिमाग में जो crazy ideas आ रहे हैं उन्हें ignore मत करो. उन्हीं में next big opportunity छुपी हो सकती है. Lucky color for you is crimson. Lucky number is 17. Taurus यानी कि वृषभ राशि. आज honesty ही तुम्हारा super power है. सच बोलना थोड़ा सा awkward लग सकता है लेकिन बाद में I told you so बोलने का मौका भी मिलेगा. Lucky color for you is forest green. Lucky number is 26. Gemini यानी मिथुन राशि. अगर कोई दोस्त एडवाइस दे तो पहले सुन लो ना यार, आई रोल बाद में कर लेना. हो सकता है वो बात काम की हो. लकी color for you is sky blue. Lucky number is 5. Cancer yani kark rashi. Cancer yani kark rashi. Money matters ko postpone mat karo. Bills Harry Potter ki tarah disappear nahi hote beta. Aaj action lo aur tumhe kal iska reaction milega. Lucky color for you is silver. Lucky number is 32. Leo yani ki sinha rashi. Superhero banna acha hai lekin aaj help mangna aur bhi acha hoga. Teamwork ka asli power yahi move hai. Lucky color for you is gold. Lucky number is 9. Virgo यानी कन्या राशि. आज कुछ ऐसा होगा जो लॉजिक को चैलेंज करेगा. हर चीज का एक्सप्लेनेशन जरूरी नहीं होता है, बस ऑब्जर्व करो. लकी कलर इज लैवेंडर. लकी नंबर इज 14. आगे की राशियां लेकर आती हूँ थोड़ी सी देर में ऑन मिर्ची मॉर्निंग्स. तब तक के लिए तुम एंजॉय करो मिर्ची तार बैंगर्स एंड गो एंड चेक आउट माय सोशल्स. मिर्ची प्रिस इज माय हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स. स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट.

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: मैं हूँ प्रिसिला तुम्हारे साथ में, और चलो कंप्लीट करते हैं हमारा राशि जोन। पार्ट टू इज आउट हियर।
2: मिर्ची राशि जोन।
1: लीब्रा यानी कि तुला राशि, इस वीक पीस मोड में होने वाले हो, तब तक किसी भी आर्ग्यूमेंट को आईपीएल ऑक्शन मत बना लेना। लकी कलर इज पीच, लकी नंबर इज 21। स्कॉर्पियो यानी कि वृश्चिक राशि, जो फील कर रहे हो वो फेस पर लिखा हुआ है, तो पोलाइटली ऑनेस्ट रहो और सॉल्यूशंस भी दो। लकी कलर इज बर्गंडी, लकी नंबर इज 8। सैजिटेरियस यानी कि धनु राशि, सबको एक्सप्लेन करना जरूरी नहीं होता है, कभी कभी रिजल्ट्स ही बेस्ट रिप्लाई होते हैं। लकी कलर इज टर्कोइज, लकी नंबर इज 30। कैप्रिकॉर्न यानी मकर राशि, आज थोड़ा सा लो प्रोफाइल रहना स्मार्ट रहेगा, हर इन्फॉर्मेशन शेयर करना जरूरी नहीं होता है। ऑफिस गॉसिप एफएम मत बनो। लकी कलर इज चारकोल ग्रे, लकी नंबर इज 11। अक्वेरियस यानी कुंभ राशि, एक दोस्त आज तुम्हें प्लेजेंटली सरप्राइज कर सकता है, ओपन माइंड रखो और हार्ट को भी ओपन रखो। लाइफ के बेस्ट प्लॉट ट्विस्ट स्क्रिप्टेड नहीं होते हैं। लकी कलर इज अक्वा, लकी नंबर इज 24। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, पाइसीज यानी कि मीन राशि, टू डू लिस्ट का पहला काम सुबह सुबह निपटा लो, मोमेंटम मिल गया है तो आज तुम अनस्टॉपेबल हो। लकी कलर इज कोरल, लकी नंबर इज 6। एंड दैट्स इट फॉर राशि जोन पार्ट टू। मैं हूं प्रिसिला तुम्हारे साथ में, मुझे फॉलो करना मत भूलना। मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम ऑन इंस्टाग्राम एंड एक्स, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033 मिर्ची, दैट्स 9033 6472 4। Stay tuned and stay hot.

0: साथ जीतूराज Only on Mirchi, it's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Okay then, Spider-Man brand new day आ गई है and for God's sake, please theater में जाकर ही देखो is what जीतूराज will tell you क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी-छोटी ऐसी चीजें हैं especially जब characters आपस में बात करते हैं तो उनकी whispers, उनका प्यार, उनका गुस्सा वो theater में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा and for God's sake, किसी से भी story मत सुनो don't take any spoilers फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना surprise कर जाएंगी
3: Spiders have free life cycle.
2: I just can't begin to tell you. I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में villain कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर suffocate होने लगता है? क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है? ये reason उस villain पर जाकर रुकता है. I'm not going to tell you who it is. Also तेरे में से कई लोग ये expect करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests

0: on the shoulders of Ned arthat Jacob Batrano, also MJ arthat Zendaya, and Peter Parker yani Tom Holland. In this film, it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you ki ye film puri tarah se Tom Holland ke shoulders par rest karti hai. Kyun, kya, kaise, wo jaakar dekho. Also, there's a particular scene between John Bernthal arthat Frank Castle aka Punisher and Tom Holland arthat Peter Parker jo theater se aane ke baad bahut der tak tere ko yaad rahega. Also, if you have kids around you, enjoy it fully, kyunki kai baar bacche Bollywood ke film ki tarah seetiyan maarte hain, taaliyan bajate hain, and it's all required in Spider-Man Brand New Day. But I must give you a disclaimer. Agar tune Spider-Man ke franchise ki pehli film mein nahi dekhi hain, to please YouTube par jaakar kahin par us film ke pure recap jo hain wo video dekho, and then see the film. Tere ko kuch extra maza aayega. For now, Spider-Man ki wajah se Jeetu Raj Tom Holland ka kuch extra fan ho gaya hai. Oh, also, don't forget to catch my review on Instagram at Mirchi Jeetu Raj, jahan par kuch extra baatein batayi hain Jeetu Raj ne. Wo kya hai? Okay, I told you, Instagram, Mirchi Jeetu Raj. For now, Spider-Man Brand New Day. By the way, कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है. फॉर गॉड सेक ब्रो, अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो. दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतू राज विद फोर मिर्चीज.
1: जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची. इट्स हॉट.

0: मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला, इट्स हॉट।
1: बस यार आज का मिर्ची मॉर्निंग्स चाय की तरह, कॉफी की तरह, ब्रेकफास्ट की तरह खत्म हो गया है। बातों को यहीं पर फुल स्टॉप देने के पहले एक लास्ट बात बताकर जाती हूँ। हमारे

इंडिया के ओपनर अभिषेक शर्मा ने पंजाब इंटर डिस्ट्रिक्ट वन डे टूर्नामेंट में बोलिंग अटैक को लिटरली साइट सीइंग पर भेज दिया था। सिर्फ 91 बॉल्स में 233 रन्स, उसमें से 25 सिक्सेस एंड 15 वर फोर्स। मतलब बॉलर को भी बस एक ही चीज क्लियरली दिख रही होगी, बॉल बाउंड्री के बाहर जाती हुई। और सिर्फ बैटिंग ही नहीं, भाई ने दो विकेट्स भी लिए हैं। टोटल ऑलराउंडर परफॉर्मेंस है ये तो। अमृतसर ने 533 रन्स बना दिए और मैच 220 रन्स से जीत लिया। अब इसको कहते हैं मंडे का मोटिवेशन, वो भी क्रिकेट एडिशन। अब चलो ये मोटिवेशन तो तुम रख लो, मेरी तरफ से एक चैलेंज भी रखो। ऑफिस में आज अगर इतनी ही एनर्जी से काम कर लिया, चलो मेरी तरफ से एक चैलेंज लो, ऑफिस में अगर इतनी ही एनर्जी से काम कर लिया जितनी एनर्जी से अभिषेक ने बैटिंग में कर दिखाया है, तो शाम की चाय एक्स्ट्रा टेस्टी लगने वाली है। तो आज ट्राई जरूर करना। एंड थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, मेरे साथ मॉर्निंग स्पेंड करने के लिए। अगर शो का कोई मोमेंट तुम्हारे फेस पर स्माइल लेकर आया है तो मुझे पक्का से फॉलो करना। मिर्ची प्रिस इज माई हैंडल नेम, दैट इज MIRCHIPRIS। व्हाट्सएप का नंबर है 9033647244। स्टे ट्यून्ड एंड स्टे हॉट।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशिया नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: अच्छा, पहली मुलाकात कैसी होती है? ऐसी ही तो होती है, थोड़ी नर्वसनेस, थोड़ा एक्साइटमेंट।
1: पुरानी जीन्स
0: पे हाय, दिस इज मी श्रेया। पहली मुलाकात है तुम्हारी और मेरी, बट आई प्रॉमिस कि ये लंबी चलने वाली है, क्योंकि हम दोनों का एक कॉमन इंटरेस्ट है और वो है उस जमाने के गाने। तो उस जमाने के गानों के साथ उस जमाने की बातें भी मिलेंगी, लेकिन हाँ, इस जमाने की श्रेया के साथ। अच्छा, जब तुम पहली बार किसी से मिलते हो, पहली बार कोई इंटरव्यू देते हो, पहली बार कोई कंपटीशन क्रैक करते हो, या जिंदगी में पहली बार जब जो जो होता है ना, वो बहुत ही खास हो जाता है। तो अभी कुछ गाने सुन करके वापस आओ। आज मैं बताऊंगी जब पहली बार बड़े बड़े रेट्रो स्टार्स ने, उस जमाने के एक्टर्स ने कैमरा जब फेस किया तो उनके साथ क्या हुआ। जैसे कि जब अमित जी ने ये अभी नहीं, ये गानों के उस पार। सो कम राइट बैक ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।
1: मिर्ची
2: इसका बना उसका बना सबका बना मुर्गा मुर्गा नफीस वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: हाय, ये से आपके फोन पे फ्री कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि अभी के अभी आपका बिल आधा हो जाए तो कृपया दो दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल घर पे आए तो एक दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपके बिल में कोई भी गलती ना हो तो कृपया नौ दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपको बिल की पूरी पुष्टि चाहिए, समरी चाहिए, तो कृपया नौ नौ दबाइए। अगर आप चाहते हैं कि जो आपने कॉल करी है सिर्फ उसी का बिल आए तो दबाइए तीन तीन। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि दूसरा पड़ोसी कोई कॉल कर रहा है और उसकी कॉल आपके बिल में ना आए तो दबाइए छः छः। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल आपके ही नंबर का आना चाहिए, किसी दूसरे का नहीं आए, तो दबाइए पाँच पाँच। धन्यवाद। अगर आपको बिल पेपर पे चाहिए, पेपर बिल चाहिए, तो दबाइए सात सात। धन्यवाद। अगर आप स्कीम लेना चाहते हैं और अडॉप्ट करना चाहते हैं इस स्कीम को अगले महीने से, तो दबाइए 3,07,739।
3: हेलो
4: हाय, ये फिर से आपके फोन पे कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपकी इस तरह की कॉल ना आए तो दबाइए 4,19,83,93।
5: मैं रेडियो मिर्ची से सर नवेद बोल रहा हूँ। आप क्या खेल खेले जा रहे हैं यार अपने मोबाइल से, कभी ये दबा रहे हैं कभी वो दबा रहे हैं, आप थके नहीं हैं? आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपका मुर्गा।
3: तो वही मैं सोच रहा था, मतलब मिर्ची सारी लगा।
4: अगर आपको इस सबसे मजा आया हो तो कृपया दबाए 5,07,339,39। हो गया।
3: हाँ जी।
4: कुकड़ों को।
6: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

पुरानी जीन्स पर आप श्रेया के साथ और ये आज मेरी और आपकी पहली मुलाकात है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ ऐसे बड़े बड़े एक्टर्स की पहली फिल्मों की बात की जाए जब दे फेस द कैमरा फॉर द फर्स्ट टाइम। आपको पता है इनको अपनी पहली मूवी के लिए सिर्फ 5,000 रुपए मिले थे। तो क्योंकि आज मेरी और आपकी पहली मुलाकात है, मैंने सोचा कि क्यों ना वो दिग्गज एक्टर्स के बारे में बात करें जिन्होंने जब पहली बार कैमरा फेस किया तो उनके साथ क्या क्या हुआ। पता है अमित जी को उनकी पहली फिल्म के लिए 5,000 रुपए मिले थे और वो भी काफी नेगोशिएशन के बाद विद टीनू आनंद। अमिताभ बच्चन जी की पहली फिल्म थी सात हिंदुस्तानी, इसके लिए उन्हें पूरे 5,000 रुपए मिले और साथ में एक कॉन्ट्रैक्ट भी साइन किया गया, मूवी चाहे साल भर में बने या 5 साल में बने और उस 5 साल के अंदर चाहे अमित जी जितने बड़े भी सुपरस्टार बन जाएं, पर सात हिंदुस्तानी के लिए उन्हें सिर्फ 5,000 रुपए मिलेंगे। अच्छा, अपने धर्मपाल जी की पहली कौन सी फिल्म थी? नहीं पता तो मैं बताऊंगी ना। वापस आओ गाने सुन करके। आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स विद मी श्रेया।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला। ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।

only on Radio Mercy New York. It's hot. आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

0: धर्म पाजी के साथ पता है इस फिल्म में कोई भी काम नहीं करना चाहता था, क्योंकि तब तक कोई उन्हें जानता ही नहीं था।
1: और क्योंकि आज मैं आपसे पहली बार मिल रही हूँ ना, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उन फिल्मों की बात करें जिनसे पहली बार बड़े बड़े एक्टर्स ने, दिग्गज एक्टर्स ने अपने करियर की शुरुआत की थी। सो धर्म पाजी की पहली फिल्म थी दिल भी तेरा हम भी तेरे। 1960 में ये फिल्म आई थी और उनके ऑपोजिट इस फिल्म में थी यस्टरडेज की एक्ट्रेस कुमकुम जी। तो धर्म पाजी ने उस टाइम पे मीडिया में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में, क्योंकि तब प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बहुत होती थी, इंटरव्यू में ये बोला था दैट ही विल ऑलवेज बी वेरी थैंकफुल टू कुमकुम जी, क्योंकि उस टाइम पे ना और कोई एक्ट्रेस उनके साथ काम ही नहीं करना चाहती थी। धर्म पाजी एक न्यू फेस थे और जितनी पॉपुलर एक्ट्रेसेस थी वो किसी न्यू कमर के साथ काम करने में थोड़ा सा हिचकिचाती थी। तो ऐसे हुई थी धर्म पाजी की शुरुआत। अच्छा, और अपनी इस डेब्यू फिल्म के लिए धर्म पाजी को कितने सारे रुपए या फिर कितने से रुपए मिले, ये अभी बताऊंगी। कम राइट बैक ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

कथित था लिए रंग सब सखा संग मन में उमंग गतित मंग था खेलत भुज मेलत लपट झपट राधा ललिता चंदा बलि दियो बोर रंग घोर सर बोर बनवारी मैं हारी जा जारी मैं हारी जा जारी।

0: सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर मिर्ची साथ जीतू राज only on Mirchi. It's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Okay then, Spider-Man brand new day aa gayi hai and for God's sake please theater mein jaakar hi dekho is what Jeetu Raj will tell you kyunki is film mein kai chhoti chhoti aisi cheeze hain especially jab characters aapas mein baat karte hain to unki whispers unka pyar unka gussa wo theater mein jo maza deta hai wo kahin bhi nahi dega and for God's sake kisi se bhi story mat suno don't take any spoilers film mein kai aisi cheeze hain jo tere ko itna surprise kar jayengi
3: spiders have free life cycle
2: I just can't begin to tell you I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में villain कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर suffocate होने लगता है? क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है? ये reason उस villain पर जाकर रुकता है। I'm not going to tell you who it is. Also तेरे में से कई लोग ये expect करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batrano, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film it's a little different. In fact I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो ऑल्सो देयर इज अ पर्टिकुलर सीन बिटवीन जॉन बर्नथॉल अर्थात फ्रैंक कैसल एके पनिशर एंड टॉम हॉलैंड अर्थात पीटर पार्कर जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा ऑल्सो इफ यू हैव किड्स अराउंड यू एंजॉय इट फुल्ली क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतूराज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई है जीतूराज ने वो क्या है ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची जीतूराज फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बाय द वे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है फॉर गॉड्स सेक ब्रो अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतूराज विद फोर मिर्चीज
0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर

सत्रह सत्रह सत्रह और तीनों का मिलाकर के 51। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया। आज आपसे पहली बार मिल रही हूँ तो मैंने सोचा कि हमारे जो दिग्गज बॉलीवुड सेलिब्रिटीज है ना हिंदी सिनेमा के, उनकी भी पहली पहली फिल्मों की बात करूँ। अभी मैं आपको थोड़ी देर पहले बता रही थी कि धर्म पाजी की पहली फिल्म थी दिल भी तेरा हम भी तेरे। आपको पता है कि इस फिल्म के लिए उन्हें कितने रुपए मिले थे? वेल, ओनली रुपीज 51, 51 रुपए। और ये भी किसी एक बंदे ने नहीं दिया था, इस फिल्म के तीन प्रोड्यूसर्स थे और उन तीनों ने मिलके 17 17 17 रुपए कंट्रीब्यूट करके धर्मपाजी की फीस निकाली थी। ऐसा धर्मेंद्र जी ने खुद एक रियलिटी शो में हाल ही में बताया था। सोचो 51 रुपीज, दैट्स इट। पुरानी जीन्स पर काका यानी राजेश खन्ना की डेब्यू फिल्म के बारे में बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है, बताऊंगी। वापस आओ श्रेया के साथ।

0: सारे शराबी। क्या हो राजा?
1: गली में आजा।
2: होली होली
3: भांग की गोली, ओ नखरे वाली।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

इस फिल्म की वजह से जतिन खन्ना बने राजेश खन्ना। पुरानी जीन्स पर हाय, मेरा नाम है श्रेया और क्योंकि आज मेरी और आपकी पहली मुलाकात है ना, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आज उन मूवीज की बात की जाए जिससे अपना डेब्यू यानी पहली बार कैमरा फेस किया था हमारे दिग्गज रेट्रो स्टार्स ने। तो ये फिल्म थी जिससे जतिन खन्ना हमें आज राजेश खन्ना और प्यार से उन्हें काका कहते थे सब इन दी इंडस्ट्री, काका मिले थे। इस फिल्म का नाम है आखिरी खत जिससे अपना डेब्यू किया था राजेश खन्ना जी ने। अच्छा, अब उन्होंने अपना ये नाम क्यों बदला, इसके पीछे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रीजन था। वो क्या था इतनी आसानी से नहीं बताऊंगी, थोड़ा सा ना ऐसे आपको सस्पेंस में छोड़ने में मुझे बहुत मजा आता है। तो गाने सुन करके वापस आओ पूरी कहानी ऑफ दिस नेम चेंज मेरे यानी श्रेया के साथ, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: बता दूं?
1: हाँ।
0: वो यहीं पर
1: यहीं है?
0: कौन? ऐसे नहीं बताऊंगा, तुम लोग एक दायरे में खड़े हो जाओ, जिसके कंधे पे रुमाल रख दो बस समझ जाओ।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सबका बाना मुर्गा मुर्गा नवीद वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो
4: विनीत जी।
3: हाँ जी
4: विनीत जी नमस्कार, जनता बैंड से बोल रहा हूँ सर। क्या हाल चाल है, शादी की तैयारियाँ चल रही हैं?
3: सही हाँ
4: हाँ मैं
3: तो चल रही है।
4: हाँ तो मैं आपसे ये पूछ रहा था बारात कितने बजे निकलेगी यहाँ से जो आदमी भेजने बैंड के लिए?
3: 7:30 बजे तक।
4: सर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ गई हमारे, जो वो आपने बुक किया था ना बैंड वाले, वो बंदे कम रह गए हैं। वो बंदे राजस्थान से आने थे वो वहाँ पे रह गए हैं।
3: 9:30-10 बजे तक ये बताओ ना बचा जाएगा।
4: सर आप चिंता ना करें, आप घोड़ी पे चढ़ेंगे, हम बैंड वाले एक है मेरे पास, वो भेज रहा हूँ सर, वही वो सब संभाल लेगा, आप फिक्र ना करें।
3: पागल हो गए हो क्या, क्या बजाएगा अकेला वो?
4: मैं आपके वही, एक सेकंड रुकिए सर। हेलो मिस्टर थॉमस। सर ये मिस्टर थॉमस को आए हैं, ये बजाते हैं और ये नहीं, ये अच्छा अच्छा सुनाएंगे आपको, आप चिंता ना करें। और सर ये स्पेशली मैं आपको इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं ले रहे, ये बाहर से आए हैं सर। सर आप बात करना चाहेंगे मिस्टर थॉमस से?
3: मैं क्या बात करूं यार अकेला क्या बजाएगा?
4: नहीं वही मैं आपको बता रहा हूँ सर, आप मिस्टर थॉमस का एक चीज सुन लीजिए, मैं आपको कह रहा हूँ आप घोड़ी पे चढ़ेंगे आपको मजा आ जाएगा। मिस्टर थॉमस ये जरा सर के विनीत जी की शादी है इनको बता दीजिए, ये सुनिए ये देखिए। हाँ विनीत जी मजा आया, ये मिस्टर थॉमस ये
3: क्या बजा रहे हैं सुना आपने?
4: सर आप समझ नहीं पा रहे हैं, ये स्पेशल बजा रहा है सर। मैं आप तो चिंता ऐसे कर रहे हैं, आपकी शादी मेरी शादी है सर, आप इस बात को समझो। घोड़ी कितने बजे चल रहे हैं सर?
3: मैं घोड़ी तो चढ़ी जाऊंगा यार।
4: अच्छा सर मेरी बात सुनिए, जब आप घोड़ी चलेंगे मिस्टर थॉमस घोड़ी चलने वाले चलाएंगे।
3: हेलो हेलो
4: हाँ मेरे को पूरी उम्मीद है सर, कैसा लगा आपको?
3: ये बारात का बजा रहा है, किसी के श्राद्ध का बजा रहा है ये?
4: विनीत जी मैं आपको ये बता रहा था, ये मिस्टर थॉमस ना पहले ये आपका ये नहीं होता है, ये कॉफिन ले जाने वाला काम करते थे इनका काम। मेरी बात सुनिए, अभी पहले कॉफिन वाला करते थे, आप बारात ज्वाइन कर लिए सर।
3: अरे कॉफिन
5: विनीत, मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो मुबारक हो, आपकी शादी होने वाली है, मैं भी आऊंगा और आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपके साथ मजाक किया है, आपका मुर्गा बन गया सर, आप बुरा मन मानिए।
3: अच्छा भैया
6: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

हाँ तो मैं बता रही थी कि कैसे जतिन खन्ना राजेश खन्ना बन गए अपनी डेब्यू फिल्म से, यानी आखिरी खत से। सो एक्चुअली हुआ ये कि जब राजेश खन्ना लॉन्च होने वाले थे इसी फिल्म से, उसके कुछ महीने पहले एक और जतिन खन्ना नाम के हीरो ने अपना डेब्यू किया था विद द फिल्म कॉल्ड जब जब फूल खिले। अब ये वाले जतिन खन्ना को लगा कि भाई सेम नाम तो नहीं हो सकता, इंडस्ट्री में सब कंफ्यूज हो जाएंगे, तो उन्होंने अपना एक स्क्रीन नेम रखा। वो स्क्रीन नेम था राजेश। लेकिन वो सिर्फ राजेश के नाम से फेमस नहीं हुए, प्यार से तो इंडस्ट्री में क्या करते। देव साहब का डेब्यू कौन सी फिल्म से हुआ था? ये एक ऐसी फिल्म थी जिससे एक वादा भी आया। ये पूरी कहानी बस कुछ गानों के उस पार। पुरानी जींस पर, मेरा नाम है श्रेया।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: only on Radio Mirchi, New York. It's hot.
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर.

सो देव साहब की इस डेब्यू फिल्म से एक दोस्ती की शुरुआत हुई थी, दोस्ती बिटवीन हिम एंड गुरुदत्त साहब। हाय, मेरा नाम है श्रेया और पुरानी जींस पे आप मुझे पहली बार सुन रहे हो, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पहली मुलाकात को थोड़ा और खास बनाए, कुछ ऐसी फिल्मों की बात करें जिससे हमारे रेट्रो स्टार्स ने अपना डेब्यू किया था। तो फिर इस लिस्ट में देव साहब का नाम तो आएगा ही। देव साहब की पहली फिल्म का नाम था हम एक हैं। देव साहब कैमरे के उस पार और कैमरे के इस पार असिस्टेंट डायरेक्टर की भूमिका में थे गुरुदत्त साहब। दोनों के बीच में दोस्ती हुई। ये दोस्ती एक वादा भी लेकर के आई जिसको बहुत सच्चाई के साथ देव साहब ने निभाया। ये वादा क्या था आपको तो पता ही है, इतनी जल्दी मैं कुछ नहीं बताती हूँ। तो उस जमाने के कुछ हैंडपिक गाने हैं, उनको सुन करके वापस आओ, फिर पूरी कहानी। आई प्रोमिस। यू आर लिस्निंग टू पुरानी जीन्स, दिस इज मी श्रेया।

0: कभी तो हंसाए।
1: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क, इट्स हॉट।
1: साथ जीतू राज, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
2: हाय, माय नेम इज पीटर पार्कर।
3: Okay then, Spider-Man Brand New Day आ गई है, एंड फॉर गॉड्स सेक प्लीज थिएटर में जाकर ही देखो, इज व्हाट जीतूराज विल टेल यू, क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं, स्पेशली जब कैरेक्टर्स आपस में बात करते हैं तो उनकी विस्पर्स, उनका प्यार, उनका गुस्सा, वो थिएटर में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा। एंड फॉर गॉड्स सेक किसी से भी स्टोरी मत सुनो, डोंट टेक एनी स्पॉयलर्स। फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना सरप्राइज कर जाएंगी।
4: Spiders have three life cycles.
3: I just can't begin to tell you. I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में विलन कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है? क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है? ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है। I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये expect करेंगे कि because it's Spider-Man Brand New Day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batlow, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film, it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है। क्यों, क्या, कैसे, वो जाकर देखो। Also, there's a particular scene between John Bernthal, अर्थात Frank Castle, A.K.A. Punisher, and Tom Holland, अर्थात Peter Parker, जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा। Also, if you have kids around you, enjoy it fully, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं, तालियां बजाते हैं, and it's all required in Spider-Man Brand New Day. But I must give you a disclaimer. अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो, एंड देन सी द फिल्म, तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा। फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतूराज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है। ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज, जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई है जीतूराज ने, वो क्या है। ओके, आई टोल्ड यू, इंस्टाग्राम मिर्ची जीतूराज। फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। बाय द वे, कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या Zendaya एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है। फॉर गॉड्स सेक ब्रो, अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो। दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, रिकमेंडेड बाय जीतूराज विद फोर मिर्चीज।
1: साथ जीतूराज, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
5: आप सुन रहे हैं पुरानी जींस, श्रेया के साथ, सिर्फ मिर्ची पर।

देव साहब की पहली फिल्म से ही एक ऐसी दोस्ती की शुरुआत हुई जो उनके आखिरी समय तक चली। मैं आपसे पहली बार मिल रही हूँ तो मैंने सोचा कि क्यों ना उन फिल्मों की बातें की जाए जिससे हमारे उस जमाने के दिग्गज स्टार्स ने अपनी शुरुआत की। अब अगर देव आनंद जी की बात करें तो उनकी डेब्यू फिल्म थी हम एक हैं। अब इस फिल्म के असिस्टेंट डायरेक्टर थे गुरुदत्त साहब। दोनों के बीच में दोस्ती होती है और साथ में एक वादा आता है। वादा ये कि अगर कभी देव साहब आगे चल करके बड़े एक्टर बने और उन्होंने अपना खुद का प्रोडक्शन हाउस खोला तो उसके अंडर जो फिल्में बनेंगी उसको डायरेक्ट करने वाले होंगे गुरुदत्त साहब और एक्टिंग करने वाले देव साहब। ये वादा आगे चल करके देव साहब ने निभाया भी। जब उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस खोला ना नवकेतन फिल्म्स, उसके अंडर फिल्म बनी 1951 में बाजी। इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले उनके दोस्त गुरुदत्त साहब बने। इंडस्ट्री में ऐसी भी दोस्ती होती थी। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ श्रेया। वापस आओ, अभी तो बहुत सारी बातें बाकी है।

0: रेडियो मिर्ची न्यूयॉर्क साउथ एशियाज नंबर वन रेडियो स्टेशन इट्स हॉट।
1: पुरानी जीन्स मिर्ची श्रेया के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
2: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

शमी कपूर साहब मधुबाला जी की खूबसूरती से इस कदर इम्प्रेस थे कि वो बार बार अपने डायलॉग्स ही भूल जाते थे। और क्योंकि मैं आज आपको पहली बार मिल रही हूँ ना, तो मैंने सोचा कि क्यों ना उन फिल्मों की बात की जाए जिससे पहली बार कैमरा फेस किया हमारे बड़े बड़े दिग्गज स्टार्स ने। तो शमी साहब की पहली साइंड फिल्म जो थी ना, वो थी जीवन ज्योति। लेकिन रेल का डिब्बा वो फिल्म थी जिससे पहली बार उन्होंने कैमरा फेस किया था, क्योंकि उस फिल्म की शूटिंग जीवन ज्योति से पहले शुरू हो गई। अब रेल का डिब्बा में ना वो ऑपोजिट मधुबाला थे, और मधुबाला जी की खूबसूरती के बारे में अगर मैं कुछ कह दूं तो भाई, तो वो क्या कहते हैं कि दिए को रोशनी दिखाने जैसा कुछ हो जाएगा। शमी साहब वो सो स्मिटन बाय मधुबाला जी इज ब्यूटी कि वो बार बार अपने डायलॉग्स ही भूल जाते थे। फिर मधुबाला जी उनके पास जाती थी, उनको कंफर्टेबल करती थी, दोस्ती की कुछ लाइनें बोलती थी, तब जा करके रेल का डिब्बा शूट हो पाए। वैसे मैं कभी कभी सोचती हूँ कि कहीं अगर मधुबाला जी आंखों के सामने दिख जाती तो क्या हाल होता ना आपका और मेरा। पुरानी जींस पर मैं हूँ श्रेया।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर
1: मिर्ची
2: इसका बाना उसका बाना सबका बाना मुर्गा मुर्गा नवीन वाला मुर्गा मिर्ची मुर्गा।
3: हेलो हाँ जी बोलिए।
4: क्या बोलूँ जी, आप बोलिए।
3: आप बोलिए ना।
4: कॉल आपने किया, आप बोलिए।
3: कॉल मैंने किया है। हेलो।
4: अरे बोलो भाई, कॉल तुमने किया, बोलो क्या हुआ।
3: अरे आपका दिमाग तो खराब नहीं हुआ यार, मैं यहाँ सो रहा हूँ, आपने मुझे कॉल कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि कॉल तूने किया है यार। आपने नंबर मेरा डायल किया है, मेरे घर बेल बजी है यार।
4: तुम्हारे यहाँ बेल बजी तो मेरे यहाँ हो जाएगा। अरे फोन मैंने नहीं किया यार,
3: फोन आपने यहाँ बेल बजी यार, मेरे यहाँ भी बेल बजी है।
4: नींद में है क्या?
3: मैं नींद में ही था, आपने डिस्टर्ब कर दिया। मैं देख रहा हूँ नंबर,
4: क्या बेल मेरे यहाँ बजी है।
3: आ जाते उठ के, मैं तो फोन काट रहा हूँ, फोन रखी तरह। हेलो। हाँ बताइए।
4: मेरी जेब में फोन रखा होगा, वो बटन दब रहा होगा बार बार।
3: बात करनी है तो बात कर लीजिए, आप दो बार फोन कर चुके हैं, आप कह नहीं रहे हैं कि यार बात करनी है। आप बताइए मुझे प्लीज, क्या काम है।
4: हेलो।
3: फिर कोई यार, आपका दिमाग तो खराब नहीं है यार, मैं आपसे प्यार से बात करने जा रहा हूँ तो आप उसका नजायज फायदा उठा रहे हैं।
4: जी मैं आपको परेशान नहीं कर रहा, मैं खुद यहाँ पे परेशान हूँ, मैं गाड़ी चला रहा हूँ इस टाइम, मैं फोन नहीं कर रहा।
3: तो आप गाड़ी चलाइए, नहीं आप अपनी गाड़ी चलाइए, आप अपना काम करिए, फोन मत करिए मुझे कम से कम यार, फोन मत करिएगा बस यहाँ पे।
4: फोन नहीं कर रहा
3: मैं, देखिए बदतमीजी से बात मत करिए आप, समझ गए। मैं यहाँ से रैप चाटा मार दूंगा, बता रहा हूँ मैं यहाँ से। है ना, मेरे चप्पल लेके आ, ये मेरे हाथ में चप्पल है, मैं बता रहा हूँ। मैं
4: चप्पल
3: पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते, मैं सो रहा हूँ यहाँ पे, फोन क्यों
4: आराम कर दिया तुम
3: जीना यहाँ से। इस बार अगर कर दिया ना तो बता रहा हूँ दांत तोड़ दूंगा। चप्पल चप्पल है मेरे हाथ में।
4: फोन आ रहा है, मेरी आएगा फोन, जो तेरे बस में हो वो तू करना चाहे तो तू कर ले।
3: देखिए जो मेरे बस में था वो मैं कर चुका हूँ, मेरी बात सुनिए। तो अभिषेक, मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ, तुम रेडियो मिर्ची पे हो, तुम्हारी आवाज़ें सारी बाहर आ रही हैं, तुम मुर्गा बन गए हो। ये सारी कॉल्स मैंने करी थी।
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट,
2: इट्स पटाक।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

एज राइटर्स जब इनकी पहली फिल्म थी उसके लिए सिर्फ 5,000 रुपए मिले थे। पुरानी जीन्स पर हाय, मैं हूँ श्रेया, आज आपसे पहली बार मिल रही हूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इंडियन सिनेमा के कुछ लेजेंडरी स्टार्स की पहली पहली फिल्म, पहली पहली राइटिंग, पहली पहली कहानियां, इनके बारे में बात करूँ। सलीम जावेद, इनकी एक बहुत ही खूबसूरत सी सीरीज आई है विच इज ऑन नेटफ्लिक्स, जिसका नाम है द एंग्री यंग मैन। इस सीरीज में सलीम खान और जावेद अख्तर साहब दोनों ने बताया कि कैसे उनके पीक टाइम पे, जब उनकी सारी लिखी हुई फिल्म्स हिट हो रही थी, फिर चाहे वो शोले हो, जंजीर हो, हाथी मेरे साथी हो एंड सो मेनी ऑफ देम, दीवार हो, तब उन्हें फिल्म के एक्टर से ज्यादा यानी अमिताभ बच्चन जी और राजेश खन्ना जी से ज्यादा पैसे मिलते थे। 21 लाख रुपए वे बैक इन 70s और 80s। लेकिन जब उन्होंने अपनी पहली कहानी लिखी वो एक भूत की कहानी थी, इट वॉज अ गोस्ट स्टोरी, और उसके लिए इन दोनों को 5,000 रुपए मिले थे, यानी 2,500 जावेद साहब के और 2,500 सलीम साहब के। वहां से 21 लाख तक का सफर विद इन अ मैटर ऑफ फ्यू इयर्स काफी क्विक और थ्रिलिंग था। पुरानी जीन्स पर मेरा नाम है श्रेया, जल्दी से गाने सुन करके वापस आओ। और किसके डेब्यू की कहानी बताऊंगी ये तो अभी नहीं, गानों के बाद।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर,
1: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
2: तेरा क्या होगा कालिया?
3: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
2: अब मिर्ची खा।
4: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

शादी की पहली रात का ये गिफ्ट था। पुरानी जीन्स पर उस जमाने की बातें, उस जमाने के गाने और इस जमाने की श्रेया के साथ आज पहली बार मिल रही हूँ आपको, तो आई थॉट कि क्यों ना कुछ लेजेंडरी स्टार्स की पहली पहले चेक्स, पहले पहले सैलरीज के बारे में बात करूँ। तो मैंने सबके बारे में बताया, अब मैं उनके बारे में बताने वाली हूँ जिनकी ये पहली सैलरी नहीं थी लेकिन शादी की पहली रात। शादी की पहली रात खूबसूरत मीना कुमारी और उनके शौहर कमाल अमरोही साहब। कमाल अमरोही ने उनको शादी की रात कहा कि मैं तुम्हें एक ऐसा तोहफा देना चाहता हूँ जिससे पूरी दुनिया तुम्हें याद रखेगी, और वो तोहफा तुम्हारी खूबसूरती पे बनी एक फिल्म होगी। ये फिल्म बनने में 14 साल लग गए लेकिन कमाल अमरोही ने अपना वादा निभाया। उन्होंने मीना कुमारी पे बनाई पाकीज़ा, जिसे हर कोई आज भी याद करता है। पुरानी जीन्स पर मैं हूँ श्रेया, गाने सुन करके कम बैक राइट हियर।

0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर। मिर्ची
1: पर उसको साथ जीतू राज only on मिर्ची it's hot।
2: Hi, my name is Peter Parker।
3: Okay then, Spider-Man brand new day आ गई है and for God's sake please theater में जाकर ही देखो is what जीतू राज will tell you, क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं, especially जब characters आपस में बात करते हैं तो उनकी whispers, उनका प्यार, उनका गुस्सा, वो theater में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा। and for God's sake किसी से भी story मत सुनो, don't take any spoilers। फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना सरप्राइज कर जाएंगी।
4: Spiders have three life cycles।
3: I just can't begin to tell you। I'll tell you the biggest thing, Spider-Man में विलन कौन है, यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है, क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है, ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है। I'm not going to tell you who it is। Also, तेरे में से कई लोग ये expect करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batalon, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland, in this film it's a little different। In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है, क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो। ऑल्सो देयर इज अ पर्टिकुलर सीन बिटवीन जॉन बर्नथॉल अर्थात फ्रैंक कैसल एके पनिशर एंड टॉम हॉलैंड अर्थात पीटर पार्कर, जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा। ऑल्सो इफ यू हैव किड्स अराउंड यू एंजॉय इट फुल्ली, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं, तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर, अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो हैं वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म, तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा। फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतू राज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है। ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतू राज, जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतू राज ने, वो क्या है। ओके, आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची जीतू राज। फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, बाय द वे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है। फॉर गॉड सेक ब्रो, अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो। दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतू राज विद फोर मिर्चीज।
0: आप सुन रहे हैं पुरानी जीन्स श्रेया के साथ सिर्फ मिर्ची पर।

0: पुरानी जीन्स, यू वर लिस्निंग टू श्रेया और अब जाने का टाइम हो गया है। मैंने सोचा है कि जब भी मैं जाऊंगी ना तुम्हें अपने साथ लेके जाऊंगी, तो चलो मेरी गाड़ी में बैठो एंड लेट्स हिट द हाईवे। सो इस हाईवे पे हम एक खास गाना कुछ खास लोगों के लिए सुनते हुए जाएंगे। तो ये हाईवे हिट उन लोगों के लिए है जो किसी से जब फर्स्ट टाइम मिलते हैं ना तो ऑर्गेनिकली कुछ वाइब आती है, एक स्पेशल बॉन्ड बनता है, बिना कहे भी कुछ इमोशंस एक्सचेंज हो जाते हैं और फिर जब वो जाने लगते हैं ना तो आपका दिल कहता है
1: बेकरार करके हमें यूं न जाइए, आपको हमारी कसम लौट आए।
0: तो ये गाना आपके लिए, और कसम देने की जरूरत नहीं है, मैं कल लौट आऊंगी। फेसबुक और इंस्टा पे मुझे ढूंढ सकते हो, आरजे श्रेया विद लव, दैट्स माय हैंडल। तो कल मिलते हैं फिर से, ओनली ऑन पुरानी जीन्स।

0: Less like a comeback and more like an unfinished story.
1: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ.
0: मैं अपनी जिंदगी की बात नहीं कर रही यार, बट आई एम टॉकिंग अबाउट एन आर्टिस्ट जिसको हम सब ने बहुत सराहा है. मुस्तफा जाहिद इनका नाम है और इन्होंने कई सुपरहिट नंबर्स दिए हैं इन द हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, इंक्लूडिंग सम अल्टीमेट इमरान हाशमी सॉन्ग्स लाइक तेरा मेरा रिश्ता पुराना. सो बेसिकली इनका ना एक नया गाना है जो एक्चुअल में नया नहीं है. सो द बैक स्टोरी इज कि ये गाना ओरिजिनली लिखा गया था आवारापन के लिए, जिसको डायरेक्ट किया था मोहित सूरी ने. लेकिन उस टाइम डिसाइड किया गया कि नहीं, आवारापन नहीं, आवारापन 2 में ये गाना इंक्लूड किया जाएगा. लेकिन फिर आवारापन 2 काफी डिले होती गई एंड दिस सॉन्ग बिकेम अ फॉरगॉटन चैप्टर. और अब जब अगस्त में आवारापन 2 रिलीज होने वाली है, उसके एल्बम से 2 गाने भी आ चुके हैं जो इन जनरल ऑडियंस को कुछ खास पसंद नहीं आ पाए, तो इसी मौके पे चौका मारते हुए मुस्तफा जाहिद ने अपना ये गाना रिलीज किया. नाम है इसका ये मेरी जिंदगी, जिसमें उनकी सोलफुल आवाज वापस लेकर आई है द लॉस्ट इमोशन, रिमाइंडिंग व्हाई हिज मेलैंकोलिक सॉन्ग्स वंस डिफाइंड एन एंटायर एरा. और कसम से जब आप ये गाना सुनेंगे तो आपको लगेगा कि यार, आवारापन 2 के एल्बम में इसी इंसान को लेकर आओ ना. द नेम इज ये मेरी जिंदगी. सुनने के बाद अपने ओपिनियंस मिर्ची श्रुति से जरूर शेयर करना इंस्टा और फेसबुक पे. टिल देन स्टे ट्यून्ड टू मिर्ची, इट्स हॉट.

0: Mirci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Yabana. Burka, burka. La vizba la burka. Mirci, burka.
2: Hello?
3: Hi. से आपके फोन पे फ्री कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि अभी के अभी आपका बिल आधा हो जाए तो कृपया दो दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल घर पे आए तो एक दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपके बिल में कोई भी गलती ना हो तो कृपया नौ दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपको बिल की पूरी पुष्टि चाहिए, समरी चाहिए, तो कृपया नौ नौ दबाइए। अगर आप चाहते हैं कि जो आपने कॉल करी है सिर्फ उसी का बिल आए तो दबाइए तीन तीन। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि दूसरा पड़ोसी कोई कॉल कर रहा है और उसकी कॉल आपके बिल में ना आए तो दबाइए छः छः। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल आपके ही नंबर का आना चाहिए, किसी दूसरे का नहीं आए, तो दबाइए पाँच पाँच। धन्यवाद। अगर आपको बिल पेपर पे चाहिए, पेपर बिल चाहिए, तो दबाइए सात सात। धन्यवाद। अगर आप स्कीम लेना चाहते हैं और अडॉप्ट करना चाहते हैं इस स्कीम को अगले महीने से, तो दबाइए 3,07,739।
2: हेलो।
3: हाय, ये फिर से आपके फोन पे कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपकी इस तरह की कॉल ना आए तो दबाइए 4198-9839।
4: मैं रेडियो मिर्ची से सर नवेद बोल रहा हूँ। आप क्या खेल खेले जा रहे हैं यार? अपने मोबाइल से कभी ये दबा रहे हैं, कभी वो दबा रहे हैं। आप थके नहीं हैं? आप रेडियो मिर्ची पे हैं? आपका
2: वही मैं सुधरा था, मतलब लगा।
3: अगर आपको इस सबसे मजा आया हो तो कृपया दबाए 5,07,339। हो गया।
2: हाँ जी।
3: कुकड़ू को
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इंफॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माय फ्रेंड, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। सोचा सूरज बड़जात्या की फिल्म है और उसके म्यूजिक में हिमेश रेशमिया अपना कमाल दिखा रहे हैं और ये हो रहा है फॉर दिस अपकमिंग हाईली एंटिसिपेटेड मूवी। नाम है जिसका ये प्रेम मोल लिया और इस मूवी में लीड रोल्स निभाते नजर आ रहे हैं शर्वरी वाघ एंड आयुष्मान खुराना। वैसे ये पेयरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम स्क्रीन पे नजर आने वाली है एंड जिस हिसाब के एक्टर्स हैं ये, आई एम वे टू एक्साइटेड फॉर द 27th ऑफ नवंबर जब ये फिल्म थिएटर्स में आएगी। 7 करोड़ तो अब छी लग रहा है क्योंकि 75 करोड़ लगाए हैं टी सीरीज ने रामायण के दोनों पार्ट्स के म्यूजिक राइट्स खरीदने के लिए। वेल, दिस इज एन एडवांस डील जिसके बारे में बाकी की डीट्स पता चलते ही आपको जरूर बताऊंगी। वैसे रामायण फिल्म का ट्रेलर आया है, आपने नहीं देखा देन यू आर डेफिनेटली मिसिंग आउट ऑन रियली अमेजिंग स्टफ। अक्षय कुमार की अपकमिंग अनटाइटल्ड फिल्म की बात करना चाहती हूँ जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं अनीस बाजमी। वेल, इस मूवी में एक गाना है जिसमें अदनान सामी ने अपनी आवाज दी है और इस चीज की अनाउंसमेंट उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे फिल्म के डायरेक्टर साहब और म्यूजिक कंपोजर आनंद राज आनंद के साथ एक फोटो डाल के की। बाकी मूवी में अक्षय कुमार के अलावा विद्या बालन, राशि खन्ना, विजय राज और सुदेश लहरी जैसे एक्टर्स भी नजर आएंगे, विच इज सेट टू हिट द थिएटर्स ऑन द 4th ऑफ दिसंबर। सो यू बेटर मार्क योर कैलेंडर्स फॉर दिस वन एज वेल। मिर्ची पे मैं हूं श्रुति, आपके साथ स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: खेलो मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: अब इससे पहले कि आपके दिमाग के घोड़े इधर उधर दौड़े, लेट मी क्लैरिफाई, मैं तो मिर्ची फिल्मची गेम की बात कर रही हूँ यार, उसको खेलने में जो आपको आजकल मजे आ रहे हैं, बस उस मजे की शुरुआत करते हैं। सो द ड्रिल इज कि आपको मेरे डीएम में जाके इंस्टा पे अपना नंबर भेजना होता है, देन आई गिव यू अ कॉल एंड उसके बाद इस गेम की शुरुआत होती है। आज हमारे साथ सबसे पहले टेलीफोन लाइन पे है सामिया। तो सामिया, अपने बारे में कुछ बताएंगी, आप कहाँ से हैं, क्या करती हैं?
3: मैं गुवाहाटी से हूँ और मैं जॉब करती हूँ, वर्क फ्रॉम होम ही करती हूँ फिलहाल तो।
0: ओके, तो आप गुवाहाटी में सुनती है मुझे?
3: हाँ।
0: चलिए फिर गेम की शुरुआत करें, तैयार हैं आप?
3: हाँ।
0: बॉलीवुड की फिल्म जिसमें टफी है,
3: हम साथ, हम आपके हैं कौन,
0: हम आपके हैं कौन में दूल्हे की साली कौन है?
3: माधुरी दीक्षित।
0: क्या बात है, माधुरी दीक्षित किस फिल्म में चक धूम धूम करती है?
3: दिल तो पागल है।
0: दिल तो पागल है में डांस ट्रूप की लीड डांसर कौन है?

0: हैं
1: जिसमें काजल देख नहीं पाती शायद।
0: हाँ हाँ हाँ सही है,
1: फना फना फना।
0: बहुत अच्छे। फना में विजुअली इम्पेयर्ड लवर कौन है?
1: काजल।
0: काजोल किस फिल्म में ऑब्सेसिव लवर एंड

0: साथ जीतू राज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: हाय माय नेम इज पीटर पार्कर।
2: ओके देन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे आ गई है एंड फॉर गॉड्स सेक प्लीज थिएटर में जाकर ही देखो इज व्हाट जीतू राज विल टेल यू, क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं, स्पेशली जब कैरेक्टर्स आपस में बात करते हैं तो उनकी विस्पर्स, उनका प्यार, उनका गुस्सा, वो थिएटर में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा। एंड फॉर गॉड्स सेक किसी से भी स्टोरी मत सुनो, डोंट टेक एनी स्पॉयलर्स। फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना सरप्राइज कर जाएंगी।
3: स्पाइडर्स हैव फ्री लाइफ साइकिल।
2: आई जस्ट कांट बिगिन टू टेल यू। I'll tell you the biggest thing, Spider-Man में विलन कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है, क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है? ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है। I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batchelor, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland, in this film it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है। क्यों, क्या, कैसे, वो जाकर देखो। Also, there's a particular scene between John Bernthal, अर्थात Frank Castle, A.K.A. Punisher, and Tom Holland, अर्थात Peter Parker, जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा। Also, if you have kids around you, enjoy it fully, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं, तालियां बजाते हैं, and it's all required in Spider-Man Brand New Day. But I must give you a disclaimer. अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म, तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा। फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतूराज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज, जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई है जीतूराज ने, वो क्या है। ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची जीतूराज। फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। बाय द वे, कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या Zendaya एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है। फॉर गॉड्स सेक ब्रो, अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो। दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतूराज विद फोर मिर्चीज।
0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: हर दूसरा गाना सुपर हिट, ओनली ऑन रेडियो मिर्ची इट्स हॉट।

0: खेलो मगर प्यार से।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: अरे अरे, मैं तो मिर्ची फिल्म ची गेम की बात कर रही हूँ। आपका नॉटी माइंड कहाँ भाग रहा है? चलिए चलिए, उसको वापस बुलाइए। सो आज के गेम की शुरुआत हुई है साम्या के साथ, और वो अटक गई एक पॉइंट पे, जिसके आगे का गेम कंटिन्यू करने के लिए हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे है अर्जुन, हु इज अ पायलट बाय द वे। तो यात्री अपने कुर्सी की पेटी बांध लें, क्योंकि ये मिर्ची फिल्म ची गेम एक अलग ही उड़ान भरने वाली है। तो अर्जुन जी, क्या तैयार हैं आप?
3: जरूर, चलिए ट्राई करेंगे जरूर।
0: ओके, गुप्त में दुनिया हसीनों का मेला, मेले में किसका दिल अकेला?
3: बॉबी देओल।
0: बहुत बढ़िया, बॉबी देओल किस फिल्म में सर पे जाम रख के जमल कुड़ू करते हैं?
3: एनिमल।
0: एनिमल में हिक्की के कलर की लग्जरी गाड़ी किसको मिलती है?
3: तृप्ति डिमरी।
0: तृप्ति डिमरी के शादी की सीडी किस फिल्म में चोरी हो जाती है?
3: विक्की विद्या का वो वाला वीडियो।
0: विक्की विद्या का वो वाला वीडियो में विक्की कौन है?
3: राजकुमार राव।
0: राजकुमार राव को चुड़ैल से प्यार किस फिल्म में होता है? स्त्री में रुद्रा भैया कौन है?
3: रुद्रा भैया है पंकज।
0: पंकज त्रिपाठी को किस फिल्म में भगवान खुद हेल्प करने आते हैं?
3: OMG 2। ओ माई गॉड 2।
0: यस, OMG 2 में शिवजी कौन बने हैं?
3: अक्षय कुमार।
0: गुरु गुलाब खत्री किस फिल्म में?
3: आवारा पागल दीवाना
0: में भूलने की बीमारी किसको है?
3: परेश रावल को।

0: Milci.
1: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. La virtua la burga. Milci, burga.
2: हेलो विनीत जी।
3: हाँ जी
2: विनीत जी नमस्कार, जनता बैंड से बोल रहा हूँ सर, क्या हाल चाल है? शादी की तैयारियाँ चल रही हैं?
3: सही हाँ, मैं तो चल रही है।
2: हाँ तो मैं आपसे ये पूछ रहा था, बारात कितने बजे निकलेगी यहाँ से जो आदमी भेजने बैंड के लिए?
3: 7:30 बजे तक।
2: सर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ गई हमारे, जो वो आपने बुक किया था ना बैंड वाले, वो बंदे कम रह गए हैं, वो बंदे राजस्थान से आने थे वो वहाँ पे रह गए हैं।
3: 9:30-10 बजे तक ये बताओ ना बचा जाएगा।
2: सर आप चिंता ना करें, आप घोड़ी पे चढ़ेंगे, हम बैंड वाले एक है मेरे पास, वो भेज रहा हूँ सर, वही वो सब संभाल लेगा, आप फिक्र ना करें।
3: पागल हो गए हो क्या? क्या बजाएगा अकेला वो?
2: मैं आपके वही, एक सेकंड रुकिए सर। हेलो मिस्टर थॉमस। सर ये मिस्टर थॉमस को आए हैं, ये बजाते हैं और ये नहीं, ये अच्छा अच्छा सुनाएंगे आपको, आप चिंता ना करें। और सर ये स्पेशली मैं आपको इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं ले रहे, ये बाहर से आए हैं सर। सर आप बात करना चाहेंगे मिस्टर थॉमस से?
3: मैं क्या बात करूं यार अकेला क्या बजाएगा?
2: नहीं वही मैं आपको बता रहा हूँ सर, आप मिस्टर थॉमस का एक चीज सुन लीजिए, मैं आपको कह रहा हूँ आप घोड़ी पे चलेंगे आपको मजा आ जाएगा। मिस्टर थॉमस ये जरा सर के विनीत जी की शादी है, इनको बता दीजिए क्या। ये सुनिए, ये देखिए। हाँ विनीत जी मजा आया? ये मिस्टर थॉमस ये
3: क्या बजा रहे हैं, ये सुना आपने?
2: सर आप समझ नहीं पा रहे हैं, ये स्पेशल बजा रहा है सर, मैं आप तो चिंता ऐसे कर रहे हैं, आपकी शादी मेरी शादी है सर, आप इस बात को समझो। घोड़ी कितने बजे चल रहे हैं सर?
3: मैं घोड़ी तो चढ़ी जाऊंगा यार।
2: अच्छा सर मेरी बात सुनिए, जब आप घोड़ी चलेंगे ना मिस्टर थॉमस, घोड़ी चलने वाला चलाएंगे?
3: हेलो हेलो।
2: हाँ मेरे को पूरी उम्मीद है सर, कैसा लगा आपको?
3: ये बारात का बजा रहा है, किसी के श्राद्ध का बजा रहा है ये है?
2: विनीत जी मैं आपको ये बता रहा था, ये मिस्टर थॉमस ना पहले ये आपका ये नहीं होता है, ये कॉफिन ले जाने वाला काम करते थे, इनका काम मेरी बात सुनिए, अभी पहले कॉफिन वाला करते थे, आप बारात ज्वाइन कर लिए सर। हाँ
3: अरे कॉफिन ऑफिन कर, यहाँ क्यों लेके आए तुम?
4: विनीत मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ, सबसे पहले तो मुबारक हो, आपकी शादी होने वाली है, मैं भी आऊंगा, और आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपके साथ मजाक किया है, आपका मुर्गा बन गया है सर, आप बुरा मत मानिए।
3: अच्छा भैया
5: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
6: तेरा क्या होगा कालिया?
7: सरदार मैंने आपका नमक खाया सरदार,
6: अब मिर्ची खा।
5: रेडियो मिर्ची इट्स हॉट।

0: फन और फनी में काफी डिफरेंस होता है।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: और बाबू मोशा आए आज पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू। मैं कुछ फन नहीं बट फनी सॉन्ग्स डिस्कस कर रही हूँ फ्रॉम आर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री, जिनके लिरिक्स सुन के आप अचरज में पड़ गए। आपने सोचा कि भाई
3: तोड़ दो ये कलम।
0: लिरिसिस्ट की कलम को बस खत्म ही कर दिया जाए। वेल, लिस्ट में सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट द सॉन्ग दर्दे डिस्को फ्रॉम द फिल्म ओम शांति ओम। और अब नंबर दो पे बात करना चाहूंगी फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर से सॉन्ग। मतलब ये कहना क्या चाहते हैं लिरिसिस्ट सर इस के जरिए, ये आपको समझ में आ पाया है? चलो मूवी के बारे में बात करते हैं। ये रिलीज हुई थी इन द ईयर 2012, डायरेक्टेड बाय अनुराग कश्यप, जिसके एल्बम के लिए लिरिक्स दिया था वरुण ग्रोवर ने और म्यूजिक था स्नेहा खनवलकर का। और ये दोनों ही महानुभाव जो है ना, एपिटोम है अपने अपने काम में। ऑल्दो मैं इस गाने को बहुत ही ज्यादा एंजॉय करती हूँ, बट अगर आपको इसका मतलब समझ में आए तो मुझे भी बता दें यार। फिलहाल तो लिस्ट में आगे बढ़ते हैं और नंबर तीन पे बात करते हैं फिल्म दी एक्सपोज से सॉन्ग।
4: आइसक्रीम खाऊंगी कश्मीर जाऊंगी शोरों में भड़के जिया।
0: मेरे समझ से तो यहाँ पे मोहतरमा ये बोलना चाहती है कि अपने अंदर इतनी ज्यादा गर्मी हो गई है कि आइसक्रीम खानी पड़ेगी और उसके बाद कश्मीर जाना पड़ेगा, तभी ठंडक मिल पाएगी हमारे जिगर को। खैर, अगर बात करें इस मूवी की तो ये 2014 में रिलीज हुई थी, डायरेक्टेड बाय आनंद महादेवन, और लिरिक्स इस एल्बम में है शब्बीर अहमद सर के। तो शब्बीर अहमद सर, बाई चांस अगर आप मेरी आवाज सुन रहे हैं तो प्लीज हमें बताइएगा कि ये किस टाइप की गर्मी लगी।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

0: मजा और मजाक में कंफ्यूजन हो गया था शायद।
1: श्रुति श्रुति
2: मैं तो बड़ी फिल्मी हूँ।
0: बाबू मोशाय, बात हो रही है हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के कुछ ऐसे गानों की जिनको शायद लिखा गया था मजे के मद्देनजर, लेकिन उस पे तो लोगों ने मजाक ही बना दिया। खैर, आज पांच का पंच की लिस्ट के थ्रू मैं कुछ ऐसे ही फनी सॉन्ग्स को डिस्कस कर रही हूँ, जिसमें सबसे पहले वी टॉक्ड अबाउट द सॉन्ग दर्द डिस्को, दर्द डिस्को। उसके बाद टा टा टो टो टो टी टी टी टा। देन वी टॉक्ड अबाउट

मतलब है क्या ये पों पों पों पों पों? क्या आप एक ट्रम्पेट की बात करना चाहते हैं, भोंपू की बात करना चाहते हैं, क्या है भैया? शब्बीर अहमद साहब, आप ऐसे ऐसे लिरिक्स कहाँ से लाते हैं? सो ये मूवी रिलीज हुई थी इन द ईयर 2012, डायरेक्टेड बाय अश्विनी धर, जिसमें म्यूजिक था हिमेश रेशमिया का। और पर्टिकुलरली इस गाने की बात करें पों पों की, तो उसमें विकास भल्ला, अमन त्रिखा और हिमेश रेशमिया की आवाज थी। बट वॉट इज दिस पों पों पों पों पों पों पों पों पों? किसी को समझ में आए तो हमें भी जरूर बताएं। फिलहाल लिस्ट में आगे बढ़े और बात करते हैं फिल्म हेरा फेरी से। सॉन्ग मतलब क्या ऑब्सेशन है पौ पौ पौ से भाई? हेरा फेरी का ये जो पर्टिकुलर गाना है उसके लिरिक्स हैं समीर के, और ये मूवी रिलीज हुई थी इन द ईयर 2000, डायरेक्टेड बाय प्रियदर्शन। बाकी आवाज इस गाने में है कविता कृष्णमूर्ति के साथ अभिजीत भट्टाचार्य का। इस मूवी के एल्बम में म्यूजिक है

0: साथ जीतू राज only on मिर्ची इट्स हॉट।
1: हाय, माय नेम इज पीटर पार्कर।
2: Okay then, Spider-Man Brand New Day आ गई है and for God's sake please theater में जाकर ही देखो is what Jeetu Raj will tell you, क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं especially जब characters आपस में बात करते हैं तो उनकी whispers, उनका प्यार, उनका गुस्सा, वो theater में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा। and for God's sake किसी से भी story मत सुनो, don't take any spoilers। फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना सरप्राइज कर जाएंगी।
3: Spiders have three life cycles.
2: I just can't begin to tell you. I'll tell you the biggest thing, Spider-Man में विलन कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है, क्यों स्पाइडरमैन अपने आप में घुटने लगता है, ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है। I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात जेकब बैटनो, also MJ अर्थात जेंडाया एंड पीटर पार्कर यानी टॉम हॉलैंड, इन दिस फिल्म इट्स अ लिटिल डिफरेंट। इन फैक्ट आई कैन गो अहेड एंड टेल यू कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है। क्यों, क्या, कैसे, वो जाकर देखो। ऑल्सो देयर इज अ पर्टिकुलर सीन बिटवीन जॉन बर्नथॉल अर्थात फ्रैंक कैसल एके पनिशर एंड टॉम हॉलैंड अर्थात पीटर पार्कर, जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा। ऑल्सो इफ यू हैव किड्स अराउंड यू एंजॉय इट फुल्ली, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं, तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर, अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म, तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा। फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतू राज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है। ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतू राज, जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतू राज ने, वो क्या है? ओके, आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची जीतू राज। फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे। बाय द वे, कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है? फॉर गॉड सेक ब्रो, अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो। दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतू राज विद फोर मिर्चीज।
0: साथ जीतू राज, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
4: ब्रेकिंग न्यूज, मिर्ची पर आने वाला है हिट गाना।
5: Only on Radio Mirchi, New York. It's hot.

दोस्त, अगर जिंदगी के हसल के बीच आपके एंटरटेनमेंट की इंफॉर्मेशन रह जाती है पेंडिंग, देन वरी नॉट माई फ्रेंड, जरा वॉल्यूम बढ़ाओ और सुन लो। सोचा सूरज बड़जात्या का फिल्म है और उसके म्यूजिक में हिमेश रेशमिया अपना कमाल दिखा रहे हैं और ये हो रहा है फॉर दिस अपकमिंग हाईली एंटिसिपेटेड मूवी। नाम है जिसका ये प्रेम मोल लिया और इस मूवी में लीड रोल्स निभाते नजर आ रहे हैं शर्वरी वाघ एंड आयुष्मान खुराना। वैसे ये पेयरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम स्क्रीन पे नजर आने वाली है एंड जिस हिसाब के एक्टर्स हैं ये, आई एम वे टू एक्साइटेड फॉर द 27th of November जब ये फिल्म थिएटर्स में आएगी। 7 करोड़ तो अब छी लग रहा है क्योंकि 75 करोड़ लगाए हैं टी सीरीज ने रामायण के दोनों पार्ट्स के म्यूजिक राइट्स खरीदने के लिए। वेल, दिस इज एन एडवांस डील जिसके बारे में बाकी की डेट्स पता चलते ही आपको जरूर बताऊंगी। वैसे रामायण फिल्म का ट्रेलर आया है, आपने नहीं देखा देन यू आर डेफिनेटली मिसिंग आउट ऑन रियली अमेजिंग स्टफ। अक्षय कुमार की अपकमिंग अनटाइटल्ड फिल्म की बात करना चाहती हूँ जिसको डायरेक्ट कर रहे हैं अनीस बाज़मी। वेल, इस मूवी में एक गाना है जिसमें अदनान सामी ने अपनी आवाज दी है और इस चीज की अनाउंसमेंट उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे फिल्म के डायरेक्टर साहब और म्यूजिक कंपोजर आनंद राज आनंद के साथ एक फोटो डाल के की। बाकी मूवी में अक्षय कुमार के अलावा विद्या बालन, राशि खन्ना, विजय राज और सुदेश लहरी जैसे एक्टर्स भी नजर आएंगे, विच इज सेट टू हिट द थिएटर्स ऑन द 4th of December। सो यू बेटर मार्क योर कैलेंडर्स फॉर दिस वन एज वेल। मिर्ची पे मैं हूं श्रुति आपके साथ, स्टे ट्यून्ड, इट्स हॉट।

0: दोस्तों, मंडे का मूड भी ना कभी कभी बिल्कुल बॉलीवुड कैरेक्टर जैसा लगता है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी। तो जी हाँ, कभी कभी लगता है कि हम रणबीर कपूर फ्रॉम वेकअप सिड है, यानी थोड़े लॉस्ट, थोड़े स्लीपी, और कभी कभी लगता है कि कल होना हो के अमन है, फुल ऑन स्माइल के साथ, रेडी टू टेक द डे ऑन। वैसे यार, मंडे का ना रियल ट्विस्ट ये है कि आप डिसाइड करते हो कि आज का रोल क्या होगा, स्लो स्टार्ट होगा या फुल फिल्मी एनर्जी। तो आज का सीन सिंपल है, अपने आप को हीरो मोड में डालो तो बैकग्राउंड म्यूजिक अपने आप बजने लगेगा। और मुझे जरूर बताना कि आपका मंडे कौन सा बॉलीवुड कैरेक्टर जैसा होता है। टेल मी ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धी SIDDHI। और मेरा जो मंडे मोड है ना, उसके लिए जो परफेक्ट गाना है वो मैं अभी आपके लिए बजाने वाली हूँ, राइट हियर ऑन मिर्ची इट्स हॉट।
1: कौन है ये जिसने दोबारा मुड़ के मुझे नहीं देखा? Who is he?

0: are you?
1: Milchi.
2: Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burga, burga. Navid wala burga. Milchi burga.
3: हेलो हाँ जी बोलिए
4: क्या बोलूँ जी आप बोलिए
3: आप बोलिए ना
4: कॉल आपने किया आप बोलिए
3: कॉल मैंने किया है हेलो
4: अरे बोलो भाई कॉल तुमने किया बोलो क्या हुआ
3: अरे आपका दिमाग तो खराब नहीं हुआ यार मैं यहाँ सो रहा हूँ आपने मुझे कॉल कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि कॉल तूने किया है यार आपने नंबर मेरा डायल किया है मेरे घर बेल बजी है यार
4: तुम्हारे यहाँ बेल बजी तो मेरे यहाँ हो जाएगा अरे फोन मैंने नहीं किया यार
3: फोन आपने यहाँ बेल बजी यार मेरे यहाँ भी बेल बजी है
4: नींद में क्या
3: मैं नींद में ही था आपने डिस्टर्ब कर दिया मैं देख रहा हूँ नंबर
4: क्या बेल मेरे यहाँ
3: आ जाते हैं उठ के मैं तो फोन काट रहा हूँ फोन रखी चलिए हेलो हाँ बताइए
4: तेरी जेब में फोन रखा होगा वो बटन दबा होगा बार बार
3: बात करनी है तो बात कर लीजिए आप दो बार फोन कर चुके हैं आप कह नहीं रहे हैं कि यार बात करनी है आप बताइए मुझे प्लीज क्या काम है हेलो
4: फिर कोई
3: यार आपका दिमाग तो खराब नहीं है यार मैं आपसे प्यार से बात करे जा रहा हूँ तो आप उसका नजायज फायदा उठा रहे हैं
4: जी मैं आपको परेशान नहीं कर रहा मैं खुद यहाँ पे परेशान हूँ मैं गाड़ी चला रहा हूँ इस टाइम मैं फोन नहीं कर रहा
3: तो आप गाड़ी चलाइए नहीं आप अपनी गाड़ी चलाइए आप अपना काम करिए फोन मत करिए मुझे कम से कम यार फोन मत करिएगा बस यहाँ पे
4: फोन नहीं कर रहा
3: मैं देख बदतमीजी से बात मत करिए आप समझ गए मैं यहाँ से लेफ्ट चाटा मार दूंगा बता रहा हूँ मैं यहाँ से है ना मेरे चप्पल लेके आ ये मेरे हाथ में चप्पल है मैं बता रहा हूँ मैं
4: चप्पल
3: पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाए मैं सो रहा हूँ यहाँ पे फोन
4: क्यों आराम कर दिया तुम
3: जीना बता रहा हूँ यहाँ से भाग इस बार अगर कर दिया ना बता रहा हूँ दांत तोड़ दूंगा चप्पल है मेरे हाथ में
4: फोन आ रहा है मेरी फोन जो तेरे बस में हो वो तू करना चाहे तो तू कर ले
3: देखिए जो मेरे बस में था वो मैं कर चुका हूँ मेरी बात सुनिए अभिषेक मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ तुम रेडियो मिर्ची पे हो तुम्हारी आवाज़ें सारी बाहर आ रही हैं तुम मुर्गा बन गए हो ये सारी कॉल्स मैंने करी थी
5: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट मिर्ची फ्रेश माल
6: लव लॉस और होप का म्यूजिकल सफर वे जुनून

0: गाने को गाया है सुबोध शर्मा ने, म्यूजिक दिया है मिथुन ने और लिरिक्स लिखे हैं सईद कादरी ने। फिल्म आवारा पंटू से सुनते रहिए बेजुनून, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: कितने बार ऐसा होता है कि हम सिर्फ कॉफी पीने निकले थे लेकिन वापस आते आते जिंदगी के बड़े डिसीजंस भी ले लिए। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्दी और नाम सुना मुसाफिर कैफे। और मुझे लगा कि यार कैफे का असली मेन्यू कॉफी थोड़ी ना होता है, वो तो कॉन्वर्जेशंस होते हैं। जी हाँ, नेटफ्लिक्स पर आई नई सीरीज मुसाफिर कैफे, जिसमें विक्रांत मेसी, वेदिका पिंटो और महिमा मकवाना नजर आ रही है। कहानी तो वैसे कैफे से शुरू होती है लेकिन असल में बात उन लोगों की है जो जिंदगी के सफर में मिलते हैं, कुछ पल साथ रहते हैं और फिर हमारी कहानी का हिस्सा बन जाते हैं। क्योंकि यार कॉफी के कॉन्वर्जेशंस ही ऐसे होते हैं, कोई पहली बार आई लाइक यू बोलता है और कोई कभी कभार मुझे बस एक बात बतानी है से शुरू करता है। किसी टेबल पर दोस्ती शुरू होती है तो किसी दूसरे टेबल पर टेक केयर बोल के लोग अलग अलग रास्ते निकल जाते हैं। कभी किसी को नई जॉब मिलती है, कभी स्टार्टअप का आइडिया बनता है, कभी शादियां फिक्स होती है, तो कभी बस दो दोस्त 3-4 घंटे तक दुनिया भर की बातें करते रहते। लेकिन पता है सबसे मजे की बात क्या है कि सालों बाद ना कॉफी की टेस्ट याद रहे या ना रहे, लेकिन उस टेबल पर हुई हर कॉन्वर्जेशन वर्ड बाय वर्ड याद रहती है। वैसे दोस्तों आपने भी ऐसी कॉन्वर्जेशन कई बार की होगी, तो ऐसे किसी कैफे का नाम अगर आपको रखना हो तो वो क्या होगा? टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्दी SIDDHI। और मुसाफिर कैफे क्या आपने भी देखी जरूर बताना। और तब तक ऐसा बॉलीवुड का गाना सुनते हैं जो हर कॉफी डेट और हर दिल की बात को और भी खूबसूरत बना देता है, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

पहले बॉलीवुड में सिर्फ फ्राइडे का वेट होता था, लेकिन अब तो ट्रेलर रिलीज भी एक मिनी इवेंट बन चुका है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और आजकल किसी फिल्म का ट्रेलर आते ही सोशल मीडिया ना दो टीम्स में डिवाइड हो जाती है। एक टीम कहती है कि मुझे तो यार फर्स्ट डे फर्स्ट शो जाना है, और दूसरी टीम कहती है कि नहीं नहीं पहले रिव्यूज आने दो। और मुझे ना इस जनरेशन की एक बात बहुत ही इंटरेस्टिंग लगती है कि पहले हम सिर्फ फिल्म देखते थे, लेकिन आज हम ट्रेलर ब्रेकडाउन देखते हैं, फैन थियोरीज पढ़ते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक नोटिस करते हैं, और टीजर के एक फ्रेम पर भी डिस्कशन शुरू हो जाते हैं। और शायद इसीलिए बॉलीवुड सिर्फ मूवीज नहीं कॉन्वर्जेशंस भी क्रिएट करता है। वैसे आप ही बताइए दोस्तों कि आप किस कैटेगरी में आते हो, ट्रेलर देखते ही टिकट बुक करने वाले या पहले आप रिव्यू सुनते हो? डीएम मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और चलिए अब ट्रेलर से सीधा पिक्चर की दुनिया में चलते हैं एक जबरदस्त बॉलीवुड के गाने के साथ, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: साथ जीतू राज, only on Mirchi. It's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Okay then, Spider-Man brand new day आ गई है and for God's sake please theater में जाकर ही देखो is what Jeetu Raj will tell you क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं especially जब characters आपस में बात करते हैं तो उनकी whispers, उनका प्यार, उनका गुस्सा वो theater में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा and for God's sake किसी से भी story मत सुनो don't take any spoilers फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना surprise कर जाएंगी
3: spiders have free life cycle
2: I just can't begin to tell you I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में villain कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर suffocate होने लगता है? क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है? ये reason उस villain पर जाकर रुकता है। I'm not going to tell you who it is. Also तेरे में से कई लोग ये expect करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batalon, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो ऑल्सो देयर इज अ पर्टिकुलर सीन बिटवीन जॉन बर्नथॉल अर्थात फ्रैंक कैसल एके पनिशर एंड टॉम हॉलैंड अर्थात पीटर पार्कर जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा ऑल्सो इफ यू हैव किड्स अराउंड यू एंजॉय इट फुल्ली क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो हैं, वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतूराज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं जीतूराज ने वो क्या है ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची जीतूराज फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बाय द वे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है फॉर गॉड्स सेक ब्रो अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय जीतूराज विद फोर मिर्चीज
0: साथ जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट

गरबा का मूड हो या ऑफिस का बोर्डम, दीप गुजराती स्नैक्स की बीट ही काफी है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी और सूरती स्पेशल तीखा मिक्स भटानी कानी। एवरी बाइट में लगता है दैट यू आर डूइंग डांडिया एंड दैट टू विद फ्लेवर्स, स्पाइसी क्रंची और देसी फन, या जिसकी गूंज ना मिर्ची सिद्धी के स्टूडियो तक भी पहुंच जाती है। तो आज ही ट्राई कीजिए दीप गुजराती स्नैक्स, सूरत से आया फ्लेवर का फेस्टिवल, क्योंकि दीप खाओ तो जानो। तब तक के लिए सुनते रहो मिर्ची, इट्स हॉट।

कुछ फिल्मों का नाम सुनते ही उनकी कहानी नहीं उनके एहसास याद आ जाते हैं। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि और आज एक ऐसी मूवी की बात हो रही है, आवारापन। बॉलीवुड के उन फिल्म्स में से है जिसे वक्त के साथ लोगों ने और ज़्यादा प्यार दिया। डार्क इमोशंस, सोलफुल म्यूज़िक और वो इमरान हाशमी का एरा यार, जब हर फिल्म के गाने ना सीधा प्लेलिस्ट में परमानेंट जगह बना लेते थे, क्योंकि वो गाने सिर्फ हिट्स नहीं होते थे, वो लेट नाइट ड्राइव्स, हेडफोन्स और अपनी ही दुनिया का एक साउंड ट्रैक बन जाते थे। और अब जब अरिजीत सिंह की आवाज़ में ये आवारापन सुनाई देता है ना, तो लगता है कि जैसे एक नई आवाज़ उन कहानियों को फिर से महसूस करने का मौका दे रही हो। क्योंकि कुछ मेलेडीज़ की खूबसूरती ही यही होती है कि जनरेशन्स बदल जाती है लेकिन इमोशंस वही रहती है। वैसे आप भी बताइए दोस्तों कि अगर मैं आवारापन बोलूँ तो सबसे पहले आपको उस फिल्म का कौन सा गाना या मोमेंट याद आता है? टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धी SIDDHI। और चलिए, एक ऐसी आवाज़ जो पुरानी यादों को नए अंदाज में छू जाती है, अरिजीत सिंह की आवाज़ में सुनते हैं ये आवारापन। राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Iskabana, puskabana, sakabana. Gambana. Burga, burga. La virtua la burga. Mirchi, burga.
1: Hello?
2: Hi. से आपके फोन पे फ्री कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि अभी आपका बिल आधा हो जाए तो कृपया दो दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल घर पे आए तो एक दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपके बिल में कोई भी गलती ना हो तो कृपया नौ दबाइए। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि आपको बिल की पूरी पुष्टि चाहिए, समरी चाहिए, तो कृपया नौ नौ दबाइए। अगर आप चाहते हैं कि जो आपने कॉल करी है सिर्फ उसी का बिल आए तो दबाइए तीन तीन। धन्यवाद। अगर आप चाहते हैं कि दूसरा पड़ोसी कोई कॉल कर रहा है और उसकी कॉल आपके बिल में ना आए तो दबाइए छः छः। अगर आप चाहते हैं कि आपका बिल आपके ही नंबर का आना चाहिए, किसी दूसरे का नहीं आए, तो दबाइए पाँच पाँच। धन्यवाद। अगर आपको बिल पेपर पे चाहिए, पेपर बिल चाहिए, तो दबाइए सात सात। धन्यवाद। अगर आप स्कीम लेना चाहते हैं और अडॉप्ट करना चाहते हैं इस स्कीम को अगले महीने से, तो दबाइए 3,07,739।
1: हेलो।
2: हाय, ये फिर से आपके फोन पे कॉल है। अगर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में आपकी इस तरह की कॉल ना आए तो दबाइए 4,19,83,93।
3: मैं रेडियो मिर्ची से सर नवेद बोल रहा हूँ। आप क्या खेल खेले जा रहे हैं यार? अपने मोबाइल से कभी ये दबा रहे हैं, कभी वो दबा रहे हैं। आप थके नहीं हैं? आप रेडियो मिर्ची पे हैं? आपका
1: वही मैं सुन रहा था।
2: अगर आपको इस सबसे मजा आया हो तो कृपया दबाए 5,07,339। हो गया।
1: हाँ जी।
2: कुकड़ों को।
4: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ, ओनली ऑन मिर्ची। इट्स हॉट। मिर्ची फ्रेश माल।
5: इमरान हाशमी के सॉन्ग्स और प्लेलिस्ट हिट्स दोनों का रिश्ता पुराना है। उनकी अगली म्यूजिकल ऑफरिंग है ये आवारापन।

0: इस गाने को आवाज दी है अरिजीत सिंह ने, म्यूजिक दिया है अमाल मलिक ने और लिरिक्स लिखे हैं रश्मि विराग ने। आवारापन 2 से सुनते रहिए ये आवारापन, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।
1: शुक्र है, शुक्रवार आ चुका है। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और फ्राइडे ना दोस्तों सिर्फ वीक का एंड नहीं होता है, कभी कभी नए आइडियाज की बिगिनिंग भी होती है। क्योंकि जब दिमाग थोड़ा रिलैक्स हो जाता है ना, तभी हम वो सवाल पूछ पाते हैं जो बिजी वीकेंड्स में कहीं ना कहीं रह जाते हैं, कि क्या मैं सही फाइनेंशियल डिसीजन ले रहा हूँ, या क्या होम बाइंग का ये सही वक्त है, या फिर मेरे एग्जिस्टिंग मॉर्गेज के बेटर ऑप्शंस हो सकते हैं। तो अगर ये सवाल आपके भी माइंड में है तो आज का सेगमेंट बिल्कुल आपके लिए है। मेरे साथ है मेरे दोस्त बीश फ्रॉम लैंड मॉर्गेज। ओवर टू यू बीश।

0: ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज, वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला, मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: हर गाना हिट, हर दूसरा गाना सुपर हिट,
0: ओनली ऑन रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।

कुछ लोगों को देखते ही ना लगता है कि इन्हें अलग दिखने के लिए कभी एफर्ट्स ही नहीं करने पड़ते होंगे। वो कहते हैं ना, सम थिंग्स शाइन विदाउट ट्राइंग। शाम शांता लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और कभी किसी की स्माइल, कभी उनका कॉन्फिडेंस, तो कभी बस उनकी प्रेजेंस। और वही बात चीज़ों पर भी लागू होती है। मतलब कुछ चीज़ें ना ट्रेंड्स के साथ नहीं चलती, वो हर दौर में अपनी चमक खुद लेकर आती है। और शायद इसीलिए डायमंड्स को सिर्फ ज्वेलरी नहीं, टाइमलेस एलिगेंस कहा जाता है। और अगर आप भी अपनी कलेक्शन में वो हमेशा वाली चमक ऐड करना चाहते हो तो तनिष्क प्रेजेंट्स फेस्टिवल ऑफ डायमंड्स, अवेल अप टू 25% ऑन डायमंड वैल्यू एंड मेकिंग चार्जेस, और ओल्ड गोल्ड अबाव 18 कैरेट एक्सचेंज करने पर 0% डिडक्शन। टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। और दोस्तों मुझे भी बताना कि आपके हिसाब से किसी इंसान की सबसे खूबसूरत क्वालिटी क्या होती है, उनकी स्माइल, उनका कॉन्फिडेंस या उनका काइंडनेस। टेल मी ऑन इंस्टा आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और तब तक एक ऐसा गाना सुनते हैं जिसकी चमक कभी पुरानी नहीं होती। Only on Mirchi, it's hot.

0: not Jeeturaj. Jeeturaj. Only on Mirchi. It's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Okay then, Spider-Man brand new day aa gayi hai and for God's sake please theater mein jaakar hi dekho is what Jeeturaj will tell you kyunki is film mein kahin chhoti chhoti aisi cheeze hain especially jab characters aapas mein baat karte hain to unki whispers unka pyar unka gussa wo theater mein jo maza deta hai wo kahin bhi nahi dega and for God's sake kisi se bhi story mat suno don't take any spoilers film mein kahin aisi cheeze hain jo tere ko itna surprise kar jayengi
3: spiders have free life cycle
2: I just can't begin to tell you I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में villain कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर suffocate होने लगता है? क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है? ये reason उस villain पर जाकर रुकता है. I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये expect करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batno, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film, it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये film पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो ऑल्सो देयर इज अ पर्टिकुलर सीन बिटवीन जॉन बर्नथॉल अर्थात फ्रैंक कैसल एके पनिशा एंड टॉम हॉलैंड अर्थात पीटर पार्कर जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा ऑल्सो इफ यू हैव किड्स अराउंड यू एंजॉय इट फुल्ली क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से Jeeturaj टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची Jeeturaj जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं Jeeturaj ने वो क्या है ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची Jeeturaj फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बाय द वे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या Zendaya एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है फॉर गॉड सेक ब्रो अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रेकमेंडेड बाय Jeeturaj विद फोर मिर्चीज
0: साथ Jeeturaj ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट

बॉलीवुड का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा। शाम शाम का लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और आज का हंगामा आ रहा है ओमकारा मूवी का बीड़ी जलाई ले इस गाने से। वैसे तो यार स्क्रीन पर बिपाशा बासु का फुल देसी स्क्वैग और रस्टिक डांस और एकदम रॉ एनर्जी तो हमें सबको बहुत पसंद आई थी, पर पर्दे के पीछे विशाल भरद्वाज और कोरियोग्राफर गणेश आचार्य के लिए बहुत ही बड़ा चैलेंज था ऑथेंटिसिटी का, क्योंकि सेट को ना इंटेंशनली ग्लैमराइज नहीं किया गया था बल्कि धूल मिट्टी यानी रियल यूपी फील देने के लिए बहुत सारे ऐसे एडजस्टमेंट्स किए गए थे कि यार लगे कि ये यूपी का सेट है, मतलब मजा मस्ती होने वाला है। तो सोचिए दोस्तों, ये गाना पॉलिश नहीं, पर्पसफुली इम्परफेक्ट बनाया गया था ताकि रियल लगे। तो मतलब बात तो बहुत सिंपल है कि बॉलीवुड में ना कभी कभी परफेक्शन नहीं, ऑथेंटिसिटी हिट हो जाती है। तो ऐसे ही पर्दे के पीछे के किस्सों के लिए मुझे ज़रूर बताइए कि ऐसा कौन सा गाना है जिसके पर्दे के पीछे के किस्से आपको जानने। टेल मी ऑन इंस्टा RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल सुनते हैं सुनीधि चौहान की आवाज में बीड़ी जलाई ले फ्रॉम द मूवी ओमकारा राइट हियर ऑन मिर्ची। इट्स हॉट।

बॉलीवुड का ड्रामा और पर्दे के पीछे का हंगामा। शाम शानदार लाइव सुन रहे हैं आप और मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी। और आज का हंगामा आ रहा है दिल धड़कना दो मूवी के गल्ला गुड़िया गानों से। वैसे यार ये गाना स्क्रीन पर तो फुल ऑन फैमिली मस्ती लगता है, मतलब सब नाच रहे हैं, कैमरा घूम रहा है, एनर्जी नॉन स्टॉप है। पर पर्दे के पीछे असली कमाल ये था कि डायरेक्टर ज़ोया अख्तर ने इस गाने को एक टेक में शूट किया है। जी हाँ, इसके लिए हर जो एक मूवमेंट था वो प्लान था, हर कैमरा टर्न प्लान था, हर एक्टर की एंट्री एग्जिट और कोरियोग्राफी डिटेल में रिहर्स की गई थी। तो कैमरा जब चालू हुआ यानी रोलिंग जब चालू हुई, उसके बाद पूरा गाना खत्म होने के बाद ही वो रोलिंग बंद की गई थी। और ज़ोया अख्तर ने खुद कहा था कि इतनी प्लानिंग और मैनेजमेंट हुई थी तब जाके ये पॉसिबल हुआ है। तो सोचिए दोस्तों, हम तो कभी कभी ऑफिस में अपने बॉस को अगर छुट्टी मांगनी है तो एक स्ट्रेट वॉइस नोट भी एक टेक में रिकॉर्ड करके नहीं भेज पाते, लेकिन यहाँ तो पूरा का पूरा गाना, पूरा का पूरा कास्ट, मूविंग कैमरा, डांस, टाइमिंग, एक्सप्रेशन, सब कुछ एकदम सिंक में चल रहा था। मतलब यार स्क्रीन पर जो फुल चिल फैमिली वाइब लग रही थी ना, उसके पीछे स्टॉप वॉच लेवल डिसिप्लिन और टीम वर्क था। तो ये बात तो बहुत जाहिर सी है कि बॉलीवुड में ना कभी कभी सबसे नेचुरल दिखने वाली चीज उसके पीछे सबसे ज्यादा प्लानिंग होती है। तो दोस्तों आप भी मुझे बताना कैसा लगा आपको ये पर्दे के पीछे का किस्सा, और ऐसे ही गानों के पर्दे के पीछे के किस्से जानने के लिए मुझे जरूर बताना विच इज योर फेवरेट सॉन्ग। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम आरजे मिर्ची सिद्धी SIDDHI। और फिलहाल ये वन टेक का कोरियोग्राफ किया हुआ गाना सुनते हैं, गल्ला गुड़िया फ्रॉम दिल धड़कने दो, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Mirchi. Iskabana, uskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. Na vidba la burka.
1: Mirchi, burka. हेलो हेलो विनीत जी।
2: हाँ जी
1: विनीत जी नमस्कार, जनता बैंड से बोल रहा हूँ सर। क्या हाल चाल है, शादी की तैयारियाँ चल रही हैं?
2: सही है, हाँ मैं तो चल रही है।
1: हाँ तो मैं आपसे ये पूछ रहा था, बारात कितने बजे निकलेगी यहाँ से जो आदमी भेजने बैंड के लिए?
2: 7:30 बजे तक।
1: सर थोड़ी सी प्रॉब्लम ये आ गई हमारे, जो वो आपने बुक किया था ना बैंड वाले, वो बंदे कम रह गए हैं। वो बंदे राजस्थान से आने थे, वो वहाँ पे रह गए हैं
2: 9:30-10 बजे तक। ये बताओ ना बचा जाएगा?
1: सर आप चिंता ना करें, आप घोड़ी पे चढ़ेंगे, हम बैंड वाले एक है मेरे पास, वो भेज रहा हूँ सर, वही वो सब संभाल लेगा, आप फिक्र ना करें।
2: पागल हो गए हो क्या? क्या बजाएगा अकेला वो?
1: मैं आपके वही, एक सेकंड रुकिए सर। हेलो मिस्टर थॉमस। सर ये मिस्टर थॉमस को आए हैं, ये बजाते हैं और ये ना ये अच्छा अच्छा सुनाएंगे आपको, आप चिंता ना करें। और सर ये स्पेशली मैं आपको इसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज भी नहीं ले रहे, ये बाहर से आए हैं सर। सर आप बात करना चाहेंगे मिस्टर थॉमस से?
2: मैं क्या बात करूं यार, अकेला क्या बजाएगा?
1: नहीं वही मैं आपको बता रहा हूँ सर, आप मिस्टर थॉमस का एक चीज सुन लीजिए, मैं आपको कह रहा हूँ आप घोड़ी पे चढ़ेंगे आपको मजा आ जाएगा। मिस्टर थॉमस ये जरा सर के विनीत जी की शादी है, इनको बता दीजिए क्या। ये सुनिए, ये देखिए।
2: हेलो
1: हाँ विनीत जी मजा है, ये मिस्टर थॉमस ये
2: क्या बजा रहा है, ये सुना आपने?
1: सर आप समझ नहीं पा रहे हैं, ये स्पेशल बजा रहा है सर। मैं आप तो चिंता ऐसे कर रहे हैं, आपकी शादी मेरी शादी है सर, आप इस बात को समझो। घोड़ी कितने बजे चल रहे हैं सर?
2: मैं घोड़ी तो चढ़ी जाऊंगा यार।
1: अच्छा सर मैं मेरी बात सुनिए, जब आप घोड़ी चलेंगे मिस्टर थॉमस घोड़ी चलने वाले चलाएंगे?
2: हेलो हेलो
1: हाँ मेरे को पूरी उम्मीद है सर, कैसा लगा आपको?
2: ये बारात का बजा रहा है, किसी के श्राद्ध का बजा रहा है ये? है
1: विनीत जी मैं आपको ये बता रहा था, ये मिस्टर थॉमस ना पहले ये आपका ये नहीं होता है, ये कॉफिन ले जाने वाला काम करते थे, इनका काम मेरी बात सुनिए, अभी पहले कॉफिन वाला करते थे, आप बारात ज्वाइन कर लिए सर।
2: अरे कॉफिन ऑफिन करो, यहाँ क्यों लेके आए तुम?
3: विनीत मैं रेडियो मिर्ची से नवीद बोल रहा हूँ। सबसे पहले तो मुबारक हो, आपकी शादी होने वाली है, मैं भी आऊंगा और आप रेडियो मिर्ची पे हैं, आपके साथ मजाक किया है, आपका मुर्गा बन गया है सर, आप बुरा मन मानिए।
2: अच्छा भैया
4: मिर्ची मुर्गा नवीद के साथ ओनली ऑन मिर्ची।

0: शाम शानदार लाइव सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धी और स्वागत है आपका अगस्त के इस नए मंथ में। वैसे हम सब ने इस वीकेंड फ्रेंडशिप्स डे तो मनाई ही है, तो आप सबको भी हैप्पी फ्रेंडशिप्स डे। जिन्होंने भी अपने दोस्तों को यारों को कॉल किया है, उनके लिए गाने डेडिकेट किए हैं, उन सबको वंस अगेन हैप्पी फ्रेंडशिप्स डे। और फिलहाल हमारा गोल्डन आवर शुरू हो चुका है और आपको तो पता ही है कि गोल्डन आवर पे बातें होती है हमारे गोल्ड डिकोडर सीरीज में सोने की, जहां होती है थोड़ी चमक थोड़ी समझ। और पिछले दो क्वार्टर्स में गोल्ड ने काफी रोलर कोस्टर राइड दिखाई है। साल की शुरुआत रिकॉर्ड हाई से हुई थी, फिर जियोपॉलिटिक्स, इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेशंस की वजह से काफी सारे अप्स एंड डाउन्स देखने मिले हैं। लेकिन अभी कुछ हफ्तों से रेट्स कंपैरेटिवली स्टेबल है, लेकिन जब भी इतनी मार्केट में वॉलिटिलिटी होती है ना, तो हमारे जो एक्सपर्ट है बॉबी बंसल जी, वो हमें आकर सही राह दिखाई देते। तो चलिए आज बॉबी जी से ही पूछते हैं। नमस्ते बॉबी जी, पहले तो स्वागत है आपका आज के शाम शानदार में।
1: नमस्कार, हैप्पी इवनिंग टू यू सिद्धि जी एंड हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू यू एंड एवरीवन एल्स आल्सो।
0: थैंक यू सो मच बॉबी जी। और देखिए, जब भी गोल्ड की बात होती है ना, हमारे सबसे पहले दोस्त आप ही हो, क्योंकि जब कभी भी हमें क्वेश्चन आते हैं, जब कभी कोई बाइंग से रिलेटेड या फिर ईएमआई से रिलेटेड या फिर ऑफर से रिलेटेड कुछ भी पूछना होता है, हम आप ही की तरफ दौड़े चले आते हैं। तो आज का सवाल भी उसी तरह है कि ये जो मतलब फिलहाल मार्केट में पॉज है, क्या ये एक नई फेज की शुरुआत हो सकती है? क्या इसका कोई सिग्नल हो सकता है?
1: यदि जी, पहले तो मैं आपको बता दूं कि पिछले एक साल में आप रोज अपडेट करते करते खुद एक्सपर्ट हो गई हैं और आपको ट्रेंड्स का बिल्कुल एकदम करंट आइडिया लग चुका है। तो ये जिस बोलते हैं ना खामोशी, आने वाले तूफान का कहीं संकेत ना हो, क्योंकि देखिए अगर पिछले साल आज ही के दिन की बात की जाए, गोल्ड वॉज अराउंड $3,300, $3,300 पर ट्राउंस के करीब पिछले अगस्त में ट्रेड कर रहा था 2025 में। आज $4,050, $4,050 पर ट्राउंस, ऑलमोस्ट 20% की एप्रिसिएशन अभी भी है। लेकिन अगर 2026 के बिगनिंग की बात की जाए तो गोल्ड हैड गॉन अप टू $5,600 पर ट्राउंस। सो देखिए, मुझे लगता है कि करेक्शन है। ऊंचाई कहाँ होगी ये हमें नहीं पता, लेकिन जब गोल्ड पीक पे गया था तब भी यही डिस्कशन होता था कि इट हैज टू करेक्ट इटसेल्फ बिफोर इट गोज टू अनदर हायर लेवल एंड हायर लिमिट्स। सो ये अपनी ऊंचाइयां दोबारा टच करे। और दिवाली, धनतेरस, पुष्य नक्षत्र पे हमको जब गोल्ड में इन्वेस्ट करना हो, तब हम सोच रहे हो काश हमने मौके का सही फायदा लिया होता। उसके लिए राज चोल्स की फाइनेंसिंग ऑप्शन, जिसमें आप 22 कैरेट गोल्ड ज्वेलरी, 18 कैरेट कलरलेस डायमंड ज्वेलरी एंड जीआई सर्टिफाइड डायमंड, शुद्धता से भरा सोना। गोल्ड ज्वेलरी हर जगह मिलती है, लेकिन उसकी प्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कहां से किस तरह का प्रोडक्ट खरीद रहे हैं और किस तरह की फाइनेंसिंग ऑप्शन है, जिसमें आप राज ज्वेल्स के स्पेशल फाइनेंसिंग ऑप्शन, जिसमें क्रेडिट कार्ड में 0% इंटरेस्ट, 0 डाउन पेमेंट के साथ आज गोल्ड का प्राइस लॉक करते हुए अप्रूव होने पे 22 कैरेट की ज्वेलरी, कलरलेस डायमंड ज्वेलरी, जीआई सर्टिफाइड नेचुरल डायमंड प्लैटिनम की रिंग में सेट हो, किसी भी तरह का खूबसूरत सा गहना आप घर ले जाएं और 9 किस्तों में पैसे दें। कैसे? आइए rajchols.com पे विजिट करके एनीवेयर विद इन यूनाइटेड स्टेट्स टू शिप विद इजी रिटर्न्स एंड एक्सचेंज पॉलिसीज, गोल्ड में rajchols.com की टीम के साथ इन्वेस्ट करें। थैंक यू, हैप्पी इवनिंग टू ऑल।
0: थैंक यू बॉबी जी। एंड वंस अगेन, एक बात तो आपने फिर एक बार क्लियर कर दी है कि गोल्ड को समझना, गोल्ड के रेट को देखने जितना ही जरूरी है। तो हर दिन आप हमें गोल्ड का ना सिर्फ रेट ही बताते हो, बट गोल्ड को धीरे से समझने में मदद भी कर देते हो, और इससे बड़ी खूबसूरत बात क्या हो सकती है। तो इसी तरह हर दिन एक नया एंगल लेकर आएंगे दोस्तों, क्योंकि गोल्ड डिकोडर में होती है थोड़ी चमक थोड़ी समझ। और इसी के साथ आपके लिए ये अगला गाना, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: ना चुस्कियों में, ना सुस्तियों में, अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर। सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज। न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।
1: तेरा क्या होगा कालिया?
2: सरदार, मैंने आपका नमक खाया सरदार,
1: अब मिर्ची खा।
3: रेडियो मिर्ची, इट्स हॉट।
0: मिर्ची फ्रेश माल,
4: एक्सप्लोसिव वाइब और पावर पैक्ड एनर्जी का डोज तब

इस गाने को गाया है और कंपोज किया है विशाल मिश्रा ने और लिरिक्स लिखे हैं राजशेखर ने। फिल्म टॉक्सिक से सुनते रहिए तबाही, ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट। अगर सुनना है यही गाना ऑन लूप, देन कैच इट ऑन द गाना ऐप। सब्सक्राइब टू द गाना, 1 रुपी ट्रायल पैक नाउ।

कुछ ऐसे एल्बम्स जो आज भी सुपर हिट है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि। और बॉलीवुड में ना कुछ ऐसे एल्बम्स बने हैं जिसमें यार एक से एक गाना एक से बढ़कर एक है। मतलब एक 2008 में जो एल्बम आई थी जाने तू या जाने ना मूवी जो बनी थी, उसका हर एक गाना वंडरफुली था। कंपोजर AR रहमान का ऑब्वियसली कंपोज्ड म्यूजिक था, तो हर एक गाना एक से बढ़कर एक होना ही चाहिए था। लेकिन जनरली AR रहमान के जो गाने होते हैं वो बहुत ही यू नो माइल्ड टोन, अमेजिंग, सूदिंग टू हियर होते हैं। लेकिन जब उन्होंने जाने तू या जाने ना का म्यूजिक बनाया था, दैट वॉज Entirely a Gen Z theme। जी हाँ, पप्पू गान डांस वाला वन ऑफ माई फेवरेट सॉन्ग्स फ्रॉम जाने तो या जाने ना एल्बम, जो कि यार तभी ऑलरेडी Gen Z एंथम बन गया था, बिफोर Gen Z वॉज इवन अ टर्म। जी हाँ, मतलब ये जो एक गाना है वो इंस्पायर्ड था बाय एवरी गर्ल्स अनोइंग क्यूट क्रश, जो कि एकदम परफेक्ट था। मतलब मस्क्यूलर था, पॉपुलर था, बस उसको नाचना नहीं आता था। और एक्चुअली ना पप्पू ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो सच्ची में रियल लाइफ बॉलीवुड पर्सनैलिटी से इंस्पायर्ड है। आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनी नेम्स, बट अगर आप गेस कर सकते हो तो मुझे जरूर बताइए कि बॉलीवुड में पप्पू जैसा कैरेक्टर कौन है। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और चलिए सुनते हैं ये अमेजिंग सा गाना पप्पू कांट डांस फ्रॉम जाने तो या जाने ना का एल्बम, जो 2008 में बनी थी, जिसके सिंगर है बेनी दयाल और सतीश सुब्रमण्यम, कंपोजर है AR रहमान। और हाँ यार, ब्लेजी का वो रैप हम कैसे भूल सकते हैं। वैसे वो जो रैप था वो एक रात पहले ही बनाया गया था, बिफोर द फाइनल मिक्स। तो चलिए सुनते हैं दिस एवरग्रीन सॉन्ग पप्पू कांट डांस वाला, ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट।

0: Star Jeeturaj. Only on Mirchi. It's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Okay then, Spider-Man brand new day aa gayi hai and for God's sake please theater mein jaakar hi dekho is what Jeeturaj will tell you kyunki is film mein kai choti choti aisi cheeze hain especially jab characters aapas mein baat karte hain to unki whispers unka pyar unka gussa wo theater mein jo maza deta hai wo kahin bhi nahi dega and for God's sake kisi se bhi story mat suno don't take any spoilers film mein kai aisi cheeze hain jo tere ko itna surprise kar jayengi
3: spiders have three life cycles
2: I just can't begin to tell you I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में villain कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर suffocate होने लगता है? क्यों Spider-Man अपने आप में घुटने लगता है? ये reason उस villain पर जाकर रुकता है। I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये expect करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात Jacob Batchno, also MJ अर्थात Zendaya and Peter Parker यानी Tom Holland. In this film, it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो ऑल्सो देयर इज अ पर्टिकुलर सीन बिटवीन जॉन बर्नथॉल अर्थात फ्रैंक कैसल एके पनिशर एंड टॉम हॉलैंड अर्थात पीटर पार्कर जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा ऑल्सो इफ यू हैव किड्स अराउंड यू एंजॉय इट फुल्ली क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं तालियां बजाते हैं एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो हैं, वो वीडियो देखो एंड देन सी द फिल्म तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से Jeeturaj टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है ओह ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची Jeeturaj जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई हैं Jeeturaj ने वो क्या है ओके आई टोल्ड यू इंस्टाग्राम मिर्ची Jeeturaj फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे बाय द वे कई लोग पूछ रहे हैं कि क्या Zendaya एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है फॉर गॉड सेक ब्रो अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे रिकमेंडेड बाय Jeeturaj विद फोर मिर्चीज
0: साथ Jeeturaj ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट
4: ब्रेकिंग न्यूज मिर्ची बनाने वाला है हिट गाना हिट.

कुछ ऐसे एल्बम्स जिनके गाने एक से बढ़कर एक है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धि और बात हो रही है 2008 के एल्बम की जाने तू या जाने ना, जिसको कंपोज किया गया है AR रहमान ने। और दोस्तों इसके ना हर एक गाना एक से बढ़कर एक है, और पप्पू गान डांस साला तो हमारा फेवरेट है ही, बट अनादर सॉन्ग, अनादर ब्यूटिफुल सॉन्ग ऑफ दिस एल्बम इज नजरें मिलाना नजरें चुराना। जी हाँ, सिंगर्स AR रहमान, बनी दयाल, सतीश सुब्रमण्यम, अगेन कंपोज बाय AR रहमान। ये जो गाना बनाया था ना, वो बनाया गया था टू मिरर जेन वाई रिलेशनशिप, मतलब कंफ्यूजिंग, क्यूट से, कॉम्प्लिकेटेड से, और इस तरह से फिरमाया गया इस गाने को कि बस कोई कोरियोग्राफी नहीं थी, बस वाइब्स थे, ज़्यादा कुछ नहीं था, बस ऐसा लगता था कि चलो सारे दोस्त एक साथ गए हैं, म्यूज़िक इज़ ऑल्सो वेरी वेरी लाइट, और एक साथ जब हम सारे दोस्त मिलते हैं, कोई ट्रिप पर मिलते हैं, हाउस पार्टी में मिलते हैं, तो एक माहौल जो बन जाता है और गाने गाने का जो मन करता है ना, बस वही माहौल इस गाने ने बनाया था। और शायद इसीलिए ये काफी बार जब हम अपने दोस्तों के साथ ट्रिप्स पे जाते हैं तो ये गाना जरूर सुनते हैं, नजरें मिलाना नजरें चुराना, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सॉन्ग ऑफ जाने तू या जाने ना एल्बम, राइट फॉर यू हियर ओनली ऑन मिर्ची। वैसे दोस्तों आप भी मुझे बता सकते हो विच इज दैट अनादर एवरग्रीन एल्बम जिसके ऑलमोस्ट सारे गाने बहुत ही अमेजिंग है। टेल मी ऑन इंस्टा एट RJ मिर्ची सिद्धि, SIDDHI। और तब तक के लिए आपके लिए नजरें मिलाना नजरें चुराना, राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

कुछ ऐसे एल्बम्स जिसका हर एक गाना एक से बढ़कर एक है। शाम शानदार लाइफ सुन रहे आप दोस्तों, मैं हूं आपकी मिर्ची सिद्धी। और जी हाँ, बातें हो रही है कुछ ऐसे एल्बम्स के बारे में जिसका यार हर एक गाना अमेजिंग है। तो आज 2008 के जाने तो या जाने ना के बारे में बात हो रही है, जिसमें यार इतने सारे गाने हैं और हर एक गाना उतना ही एवरग्रीन है। कंपोज्ड बाय AR रहमान, और इस एल्बम के हमने पप्पू कान डांस साला, नजरे मिलाना, नजरे चुराना, इन गानों के बारे में तो बात की ही है, बट एक ऐसा गाना है जिसके वजह से अदिति नाम की लड़की फेमस हो गई। जी हाँ, कभी कभी अदिति संग बाय राशिद अली। दोस्तों यार, ये वो गाना है ना कि अपनी जो दोस्त है अदिति, अगर आपकी भी कोई दोस्त है अदिति, तो ऐसा हुआ ही नहीं होगा कि आपने कभी उसको ये गाना डेडिकेट नहीं किया है। जी हाँ, अदिति रूठ जाए, अदिति सैड हो जाए, तो बस कभी कभी अदिति बजा दिया जाए। वैसे तो यार, ये जब गाना बनाया गया था तब राशिद अली कंप्लीटली नए थे। वो बस एक लंडन बेस्ड गिटारिस्ट थे जो रहमान जी के साथ जैम किया करते थे। लेकिन तब AR रहमान ने डिसाइड किया कि इस गाने के लिए स्पेसिफिकली, क्योंकि ये गाना एक यूथफुल ट्रैक है, उनकी आवाज़ बहुत ही अमेजिंग लगेगी, एक फ्रेश वॉइस मिलेगा इस ट्रैक के लिए। तो उन्होंने डिसाइड किया कि इसी के साथ राशिद अली अपना पहला गाना गाएंगे, कभी कभी अदिति। तो चलिए सुनते हैं कभी कभी अदिति फ्रॉम द मूवी जाने तू या जाने ना। वैसे दोस्तों, आप भी मुझे बता सकते हो ऐसे कौन से एल्बम्स हैं जो आपको पसंद है, जिसका यार हर एक गाना बहुत अमेजिंग है। उस एल्बम के बारे में हम बातें करेंगे राइट हियर ऑन मिर्ची। तो जल्दी से DM कीजिए ऑन इंस्टा @RJMirchiSiddhi SIDDHI। और तब तक के लिए, जाने तू या जाने ना का ये अगला गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: Milci. Iskabana, puskabana, sakabana. Rabana. Burka, burka. Na wiatr bala burka.
1: Milci, burka.
2: हेलो हाँ जी बोलिए
1: क्या बोलूँ जी आप बोलिए
2: आप बोलिए ना
1: कॉल आपने किया आप बोलिए
2: कॉल मैंने किया है हेलो
1: अरे बोलो भाई कॉल तुमने किया बोलो क्या हुआ
2: अरे आपका दिमाग तो खराब नहीं हुआ यार मैं यहाँ सो रहा हूँ आपने मुझे कॉल कर रहे हैं आप कह रहे हैं कि कॉल तूने किया है यार आपने नंबर मेरा डायल किया है मेरे घर बेल बजी है यार
1: तुम्हारे यहाँ बेल बजी तो मेरे यहाँ हो जाएगा अरे फोन मैंने नहीं किया यार
2: फोन आपने यहाँ बेल बजी यार मेरे यहाँ भी बेल बजी है
1: नींद में क्या
2: मैं नींद में ही था आपने डिस्टर्ब कर दिया मैं देख रहा हूँ नंबर
1: क्या बेल मेरे यहाँ बजी है
2: आ जाते उठ के मैं तो फोन काट रहा हूँ फोन रखी तेरे हेलो हाँ बताइए
1: मेरी जेब में फोन रखा होगा वो बटन दबा होगा बार बार
2: बात करनी है तो बात कर लीजिए आप दो बार फोन कर चुके हैं आप कह नहीं रहे हैं कि यार बात करनी है आप बताइए मुझे प्लीज क्या काम है
1: हेलो
2: फिर कोई यार आपका दिमाग तो खराब नहीं है यार मैं आपसे प्यार से बात करने जा रहा हूँ तो आप उसका नजायज फायदा उठा रहे हैं
1: जी मैं आपको परेशान नहीं कर रहा मैं खुद यहाँ पर परेशान हूँ मैं गाड़ी चला रहा हूँ इस टाइम मैं फोन नहीं कर रहा
2: तो आप गाड़ी चलाइए नहीं आप अपनी गाड़ी चलाइए आप अपना काम करिए फोन मत करिए मुझे कम से कम यार फोन मत करिएगा बस यहाँ पे
1: फोन नहीं कर रहा अभी
2: आप देखिए बदतमीज से बात मत करिए आप समझ गए मैं यहाँ से लेफ्ट चाटा मार दूंगा बता रहा हूँ मैं यहाँ से हटा मेरे चप्पल लेके आ ये मेरे हाथ में चप्पल है मैं बता रहा हूँ मैं
1: चप्पल पता नहीं
2: कहाँ कहाँ चाहते थे मैं सो रहा हूँ यहाँ पे फोन
1: जीना आराम कर दिया तुम जैसे
2: जीना बता रहा हूँ भाग यहाँ से इस बार अगर कर दिया ना बता रहा हूँ दांत तोड़ दूंगा चप्पल है मेरे हाथ में
1: फोन आ रहा है मेरी फोन जो तेरे बस में हो वो तू करना चाहे तो तू कर ले
2: देखिए जो मेरे बस में था वो मैं कर चुका हूँ मेरी बात सुनिए अभिषेक मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ तुम रेडियो मिर्ची पे हो तुम्हारी आवाज़ें सारी बाहर आ रही हैं तुम मुर्गा बन गए हो ये सारी कॉल्स मैंने करी थी
3: मिर्ची मुर्गा नवेद के साथ ओनली ऑन मिर्ची इट्स हॉट

0: एक बात तो माननी पड़ेगी कि न्यू जर्सी की समर ना घर में बैठने के लिए बनी ही नहीं है। शमशांता लाइफ सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि। और इतनी सारी चीज़ें एक साथ चल रही होती है, फिर चाहे फार्मर्स मार्केट हो, फूड फेस्टिवल्स हो, बीच ट्रिप्स, इवनिंग वॉक्स, कॉन्सर्ट्स, काउंटी फेयर्स, या बस मौसम को देखते रहना। वैसे यार आजकल ना मन करता है कि घर थोड़ा लेट ही चलता है, क्योंकि समर की सबसे प्यारी बात ही ये होती है कि प्लान्स ना बहुत बड़े होने की ज़रूरत नहीं। कभी एक आइसक्रीम, कभी एक पार्क की वॉक, कभी बस कार की विंडोज डाउन करके बॉलीवुड सुनते हुए ड्राइव, और शाम यादगार बन ही जाती है। तो इस हफ्ते न्यू जर्सी चैलेंज ये है कि एक नई जगह ज़रूर एक्सप्लोर कीजिए, और अगर आपके पास कोई हिडन जेम हो, फिर चाहे वो कॉफ़ी शॉप, पार्क या सनसेट स्पॉट हो, तो मुझे ज़रूर बताइए। टेल मी ऑन इंस्टाग्राम RJ मिर्ची सिद्धि, SIDDHR। और चलिए न्यू जर्सी की इस खूबसूरत समर इवनिंग को बॉलीवुड के सुरों से और भी रंगीन बनाते हैं विद दिस नेक्स्ट सॉन्ग राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।
1: नमस्ते बहनों और भाइयों, बड़े ही कम शब्दों में आपको सुनाना चाहता हूँ उस साल का लोकप्रिय गीत ये। सलाम ले जाता हुआ उड़न खटोला और बीन बजाती हुई नागी।

ना चुस्कियों में ना सुस्तियों में अपनी सुबह करें स्टार्ट चुस्तियों में। क्रिकेट से लेकर सॉकर का शोर, म्यूजिक, मस्ती एंड मच मोर, सक्सेस और फाइनेंस का डोज वीकडेज 8 से 11 हर रोज, न्यूज और मस्ती का सिलसिला मिर्ची मॉर्निंग्स विद प्रिसिला।

बॉलीवुड की एक अच्छी बात यह है कि सिंगर्स का काम ना कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं होता। शाम शानदार लाइक सुन रहे हैं आप दोस्तों, मैं हूँ आपकी मिर्ची सिद्धि, और आज भी एक अच्छी आवाज सीधा दिल तक पहुंच ही जाती है, चाहे रोमांटिक हो, सुकून भरी हो या थोड़ी इंट्रोस्पेक्टिव। आज के गाने लाउड होने से भी ज्यादा लास्टिंग होने पे फोकस कर रहे हैं, और ऑनेस्टली ये फेज काफी रिफ्रेशिंग लगता है। तो आप भी बताना कि आपको बॉलीवुड सॉन्ग में सबसे ज्यादा क्या कनेक्ट करता है, लिरिक्स या वॉइस? टेल मी ऑन इंस्टा आरजे मिर्ची सिद्धि SIDDHI। और फिलहाल एक बहुत ही खूबसूरत आवाज का ये खूबसूरत सा गाना राइट हियर ऑन मिर्ची, इट्स हॉट।

0: साथ जीतू राज Only on Mirchi. It's hot.
1: Hi, my name is Peter Parker.
2: Okay then, Spider-Man brand new day आ गई है and for God's sake please theater में जाकर ही देखो is what जीतू राज will tell you क्योंकि इस फिल्म में कई छोटी छोटी ऐसी चीजें हैं especially जब characters आपस में बात करते हैं तो उनकी whispers उनका प्यार उनका गुस्सा वो theater में जो मजा देता है वो कहीं भी नहीं देगा and for God's sake किसी से भी story मत सुनो don't take any spoilers फिल्म में कई ऐसी चीजें हैं जो तेरे को इतना surprise कर जाएंगी
3: spiders have free life cycle
2: I just can't begin to tell you I'll tell you the biggest thing. Spider-Man में विलन कौन है? यानी क्यों कई बार पूरी फिल्म में पूरा का पूरा शहर सफोकेट होने लगता है? क्यों स्पाइडरमैन अपने आप में घुटने लगता है? ये रीजन उस विलन पर जाकर रुकता है। I'm not going to tell you who it is. Also, तेरे में से कई लोग ये एक्सपेक्ट करेंगे कि because it's Spider-Man brand new day and Spider-Man rests on the shoulders of Ned अर्थात जेकब बैटनो also MJ अर्थात जेंडाया and Peter Parker यानी टॉम हॉलैंड in this film it's a little different. In fact, I can go ahead and tell you कि ये फिल्म पूरी तरह से टॉम हॉलैंड के शोल्डर्स पर रेस्ट करती है क्यों क्या कैसे वो जाकर देखो Also, there's a particular scene between John Bernthal, अर्थात Frank Castle, aka Punisher, and Tom Holland, अर्थात Peter Parker, जो थिएटर से आने के बाद बहुत देर तक तेरे को याद रहेगा Also, if you have kids,

0: अराउंड यू एंजॉय इट फुली, क्योंकि कई बार बच्चे बॉलीवुड की फिल्म की तरह सीटियां मारते हैं, तालियां बजाते हैं, एंड इट्स ऑल रिक्वायर्ड इन स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे. बट आई मस्ट गिव यू अ डिस्क्लेमर, अगर तूने स्पाइडरमैन के फ्रेंचाइज की पहली फिल्में नहीं देखी हैं, तो प्लीज यूट्यूब पर जाकर कहीं पर उस फिल्म के पूरे रिकैप जो है वो वीडियो देखो, एंड देन सी द फिल्म, तेरे को कुछ एक्स्ट्रा मजा आएगा. फॉर नाउ स्पाइडरमैन की वजह से जीतूराज टॉम हॉलैंड का कुछ एक्स्ट्रा फैन हो गया है. ओ ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू कैच माई रिव्यू ऑन इंस्टाग्राम एट मिर्ची जीतूराज, जहां पर कुछ एक्स्ट्रा बातें बताई है जीतूराज ने. वो क्या है? ओके, आई टोल्ड यू, इंस्टाग्राम मिर्ची जीतूराज. फॉर नाउ स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे. बाय द वे, कई लोग पूछे हैं कि क्या जेंडाया एंड टॉम हॉलैंड के बीच में स्मूचिंग सीन है. फॉर गॉड्स सेक ब्रो, अगर स्मूचेस देखने हैं तो इमरान हाशमी की कोई फिल्म डाउनलोड करके देखो. दिस इज स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे, रेकमेंडेड बाय जीतूराज विद फोर मिर्चीज.
1: जीतूराज ओनली ऑन मिर्ची, इट्स हॉट.

मिर्ची मंडे ग्रूव ऑलरेडी लॉक और वीक का रिदम दोस्तों सेट हो चुका है विद दिस शो शाम शानदार लाइव विद योर वन एंड ओनली मिर्ची सिद्धि। तो दोस्तों अब वक्त आ चुका है कि मैं आपको टाटा बाय बाय सायोनारा कह दूं, लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, हमारी रोशनी आने वाली है लव के कुछ फंडे लेकर। क्योंकि यार अगर आज के लोकल अपडेट्स, म्यूजिक, ओटीटी पिक्स के साथ अगर आपका मूड सेट हो चुका है तो थोड़ी यार लव लाइफ पे भी ध्यान दे दो विद रोशनी के फंडे। तो कहीं ना जाइए, बने रही हमारे साथ right here on Mirchi. This is Mirchi Siddhi signing off.